0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवा कर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्त मुनि सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ रत्न मंडित होकर वहां पर पहुंचे, शोभा बढ़ाने के लिए हिमालय के घर में। अब लीना जी, और विवाह की क्या तैयारियां वहाँ चल रही थी। यह तो अद्भुत अलौकिक विवाह था जिसे देखकर देवता तो प्रसन्न होते हैं, हम तो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि हमारा तो जीवन ही सफल हो गया सुनने मात्र से। और लग रहा है कि कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अलौकिक दिव्य दृश्य रहा होगा वो जिन्होंने इसका दृश्य में शामिल हुए, जो विवाह में शामिल हुए। अब आगे किस प्रकार से यह विवाह चला और क्या तैयारियां और हुई, वह सब हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए, हमें भी।
1: बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जीवन ही सफल हो गया
0: जी।
1: तो शिव पुराण ऐसी कथा ही है, ऐसी अद्भुत कथा है जो रामायण की तरह परम पवित्र है। और हर घर में जिस तरह से घर घर में रामायण बांची जाती है, ठीक उसी तरह शिव पुराण, पुराणों में महा शिव पुराण है, जिसकी कथा को पंडितगण, जो विज्ञ जन है, विद्वान जन है, वो इसकी कथा को बताते और जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके कर्ण में कुछ ना कुछ तो जाता है, अमृत तो घुलता ही है। अगर हम अमृत की बातें सुनेंगे, अमृत रस पिएंगे, तो हमारा जीवन अमृत में क्यों नहीं बने। और यह अमृत की ही कथा है, क्योंकि भगवान शिव ने क्या किया था, सारे विष को पी लिया था। अमृत पीने के पहले का प्रकरण जो है, उस प्रकरण में यही हुआ था कि पहले समुद्र मंथन में विष निकला था और उस हलाहल को पीने के लिए कोई तैयार नहीं थे, कोई उसके योग्य नहीं थे, कोई उसके पात्र नहीं।

0: थे
1: जी।
0: और शिव जी ने उसे पी करके पूरे संसार को बता दिया कि वे हम मनुष्यों के भी मन रूपी विष को पी सकते हैं जी जी। और मन के अंदर जो विष पलता है, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन सारे विषों को अगर हम निकालना चाहें तो हमारे अकेले से संभव नहीं होगा। शिव की शरणागति से यह सब संभव है कि हमारे अंदर जो मन है, वह मन एक छोटा सा बच्चा है, वह उत्पाती भी है, वह बंदर की तरह प्रतिक्रिया क्रिया भी करता है। तो हमें अगर अपने मन को सुंदर बनाना है, समस्त दुर्गुणों से दूर करना है अपने मन को, तो भगवान शिव की शरणागति कर ले तो हमारा मन भी सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर शिव, अमृत शिव, अमृतोपम शिव, दिव्योपम शिव, दिव्यादि दिव्य शिव, तो शिव ऐसे हैं, तो उनकी कहानी तो दिव्य होगी ही, और दिव्य कहानी से हमें दिव्यता की अनुभूति होगी ही। अगर हम देवत्व को धारण करेंगे तो हम और अधिक दिव्य होते चले जाएंगे। इस शिव पुराण की महिमा यही है, इस शिव पुराण का महागुणगान यही है कि हम इसे न केवल सुने, न केवल पढ़ें, अपितु इसे आचरण भी में भी उतारें। और आचरण में जैसे जैसे शिव पुराण उतरेगा, वैसे वैसे हम शिवत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और जीवो केवला शिवा की अनुभूति भी हमें होगी कि हाँ, जन्म जन्मांतर का परिश्रम हमारा सार्थक हो जाएगा जब शिवत्व की हमें अनुभूति होगी।
1: लीना जी, मैं ये भी देख रही हूँ कि जब से हम लोग ये शिव पुराण की व्याख्या आपने शुरू की है और हमने शुरू की है सुननी और अपने श्रोताओं को भी सुनानी, तो मैं ये देख रही हूँ कि जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान शिव पुराण में ना। तो हम क्यों फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ खोज वहाँ खोज, यहाँ पूछ वहाँ पूछ, सीधे शिव की शरण में ही क्यों नहीं आ जाते जहाँ सारी ही समस्याओं का समाधान है? फिर हम परेशान क्यों होते हैं? फिर समाज में लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? तो अब आप ये इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगी?
0: बिल्कुल, अगर मन में कीचड़ होगा तो हम शिव तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि शिव कीचड़ रहित है। कीचड़ से लिपायमान हमारा मन है तो हम शिव जैसे दुधिया चंद्रमा को कैसे देख पाएंगे? शिव को अगर देखना है, शिव को अगर समझना है, तो शिवत्व को उतारना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मित्र की मित्रता कब होती है? जब दोनों के गुण समान होते हैं। तो भक्त भगवान की ओर जब अग्रसर होगा, भक्ति उसमें उतरेगी, तो शिव अपने आप उसके मन रूपी दर्पण में दिख जाएंगे। लेकिन मन रूपी दर्पण अभी मैला है, इसलिए वो दिख नहीं रहे।
1: बोलिए, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि मन में जो बैठे हुए हैं हमारे शत्रु, तो उसको तो पशुपतिनाथ ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वही जो पशु बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, तो ये जो इतने सारे पशु बैठे हुए हैं, इनको अगर हमें निकालना है तो हमें भगवान की शिव की शरण ही लेनी होगी, और कोई उपाय नहीं है।
0: क्योंकि शिव को पशुपति नाथ भी कहा गया है।
1: हाँ जी,
0: आपने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार आदि जो है, ये क्या है? ये पशु है,
1: पशु
0: हमारे मन के पशु हैं।
1: हाँ,
0: अब इन सारे पशुओं को नाथने के लिए पशुपति नाथ को तो आना ही पड़ेगा।
1: हाँ,
0: तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे अंतर की आर्त पुकार, करुण पुकार होनी चाहिए कि हे शिव, आप मुझे अपनी शरण में ले लें और हमें अपने जैसा भोला बना दें, अपने जैसा निर्मल बना दें, निष्कलंक बना दें। तो देखिए, भक्ति, भक्त और भगवान से सजी हुई ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी।
1: लीना जी, एक बड़ी प्रचंड जो समस्या आजकल समाज में देखने को मिल रही है, देख उसको सुनकर भी और देखकर भी मन बहुत दुखी होता है कि उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाते। हमारे पास इतने, जिसको कहना चाहिए कि अमूल्य धरोहर ये ग्रंथ हैं, इनमें सब कुछ है, क्यों नहीं इधर की तरफ बढ़ता है हमारा समाज कि आज भाई भाई की हत्या कर रहा है द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, बाप बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, माँ की हत्या कर रहा है। इतना तो कुंठित समाज हमारा कभी पहले था नहीं, अब क्या हो गया इस समाज को? कैसे हमारे यहाँ से ये हमारे जो विचारों की और जो संस्कारों की ये कहाँ खो गए हैं, हमने कहाँ खो दिया इनको?
0: आपके प्रश्नों में ही समाधान छुपा हुआ है।
1: चूँकि
0: हम लोग भक्ति युक्त शिव पुराण कर रहे हैं, जिस दिन मानव मात्र में भक्ति का सूर्योदय जगेगा, उस दिन सारे अंधकार अपने आप पलायित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दुम दबा करके भाग खड़े होंगे। तो जैसे अंधेरे कमरे में बहुत सालों से कमरा अंधेरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ट्यूबलाइट है पर उसे जलाना कोई नहीं जानता। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, सालों बाद मान लीजिए आप विदेश से आए हैं और उस अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, तो आपको लगेगा हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, कौन सा सामान कहाँ रखा है ये आपको पता नहीं है। लेकिन ट्यूबलाइट जलाते के साथ आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, कमरे का अंधेरा दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ठीक उसी तरह हमारे मन के अंदर जो इतने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान भक्ति है। आज के युग में, कलयुग में कहा गया है कि सबसे उत्तम अगर कोई चीज है, विधि है, तो वो है भक्ति। भक्ति से मनुष्य झुकना सीख पाता है, भक्ति के कारण मनुष्य कामी नहीं रह पाता, क्रोधी नहीं रह पाता, भक्ति के कारण उसके अंदर लोभ नहीं हो पाता। अगर लोभ है तो सिर्फ भगवान का लोभ है, अगर काम है, रति है, तो सिर्फ भगवान के चरणों से रति है, अगर ये क्रोध है तो सिर्फ उस पर कि जो समाज में विकृतियां छाई हुई हैं उस पर क्रोध है, तो भक्त बनो तो ऐसे कि प्रहलाद बन जाओ।
1: अब लीना जी, जैसे हमारे ऋषि मुनि तो अपने व्याख्यान से, धर्मोपदेश से और अपने प्रवचनों से हमारे समाज को प्रेरित कर ही रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे ही रहे हैं, समाज को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो आम आदमी का कर्तव्य है, एक आदमी, सामान्य आदमी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, अगर कि मैं कुछ ऐसा योगदान दूं, मैं भी लोगों के मन में बसी हुई वो ईर्ष्या द्वेष जो नाश कर रही है परिवारों का, उसको कैसे हटाऊं, तो अब इस विषय में एक आम इंसान अपना कैसे सहयोग दे।
0: मंजू जी, वास्तव में
1: जी
0: उस व्यक्ति को यह नहीं सोचना है कि मैं कैसे हटाऊं, वो हटाने वाला कोई नहीं होता। आप अपने चरित्र को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि मुड़ करके ये दुनिया आपको देखने लगे और आपके अनुकूल आचरण करने लगे। बुद्ध किसी को बुलाने नहीं जाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, लेकिन बुद्ध के पास सारी दुनिया जाती है। महावीर किसी को बुलाने नहीं जाते, लेकिन महावीर के पास सारी दुनिया जाती है। तो आप बुद्ध और महावीर की तरह बन जाइए, आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके आसपास का वातावरण इतना पवित्र हो जाएगा कि हर कोई कह उठेगा, देखो यह है महान आत्मा। तो क्षुद्रता से महानता की यात्रा हर मनुष्य को करनी होगी और इसके लिए ही शिव पुराण है। तो अब आगे चलते हैं इस कहानी की ओर। कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 37वें अध्याय में कि अभी तक हम लोगों ने जो वर्णन किया था, उस वर्णन में पर्वत राजों, हिमालय के जो मित्र थे, पर्वत मित्र थे, वो सब आए थे, जिसमें कि उदयाचल, अस्ताचल, मंदराचल, विंध्यगिरी, सुमेरु पर्वत, मलयगिरी पर्वत, देवालय पर्वत आदि बहुत सारे पर्वत आए, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, ये सब आए। अब नदियों की चर्चा की जा रही है, जहाँ पर्वतों की चर्चा की गई है वहाँ नदियों की चर्चा नहीं करेंगे तो ये पर्वत की चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि नदियाँ क्या है, पर्वत पुत्रियाँ हैं। नदियाँ क्या है, पर्वत से ही निकलती हैं जो सागर तक पहुँचती हैं। तो इन नदियों की चर्चा अब की जा रही है इस शिव पुराण में। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए, लेकिन उस समय नदियां भी आई और उन नदियों का नाम लेते हुए वे कहते हैं, तदा सर्वे समायाता सोनभद्रादय खलु बहु शोभा महाप्रीत्या विवाह शिवयोरिति, नद्य सर्वा समायाता नाना अलंकार संयुता दिव्य रूप धरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, गोदावरी च यमुना ब्रह्म स्त्री वेनिका तथा आययो हिमशैलम वै विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि उस समय सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव शिवा के विवाह में आई और भी सभी नदियां दिव्य रूप तथा अनेक आभूषणों को धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी, ये सभी शिव शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आई। और आगे वो कहते हैं, गंगा तु सुमहाप्रीत्या नाना अलंकार संयुता दिव्य रूपाययो प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा नदी अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। नर्मदा तु महामोदा रुद्र कन्या सरित द्वारा महाप्रीत्या आजगामासु विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि नर्मदा और महामोदा रुद्र कन्या सरित द्वारा ये सभी अलंकारों को धारण कर बड़े प्रेम से शीघ्र शिव शिवा के विवाह में आई। चारों ओर से इन निमंत्रित लोगों के आ जाने से सब प्रकार से सुशोभित हिमपुरी भर गई। चारों ओर से उत्साह युक्त वह नगरी जिसमें ध्वजा तोरण लगे हैं, तंबुओं के लग जाने से, सूर्य के प्रभाव के हट जाने से जिसकी शोभा बढ़ गई है, हिमालय ने भी घर में आए हुए उन आमंत्रित अतिथियों का आदर पूर्वक यथोचित सम्मान किया। उन सबके निवास की अलग अलग व्यवस्था की तथा अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। अब देखिए हिमालय क्या थे, पर्वतराज थे। अब पर्वतराज के पास सारे पर्वत सारी नदियां आ रही हैं। मित्र कोई मित्र के रूप में आ रहे हैं, कोई हिमपुत्री के रूप में आ रही है। तो बहुत सारी चीजें थी जो हिमालय को व्यवस्था करनी थी और उन्होंने समुचित व्यवस्था की इन लोगों की जिससे कि कोई असंतुष्ट ना हो। क्योंकि वधु पक्ष क्या करता है, हमेशा यह कोशिश करता है कि जितने भी घराती बराती जो भी आए हैं सभी का यथोचित आदर हो, यथोचित सत्कार हो और उन्हें सम्मान मिल सके जिससे कि वे निंदा के पात्र न बने। और दूसरी बात कि जो इतनी दूर से कष्ट उठा करके उनके घर आए हैं उन्हें कोई भी जो है असम्मानित न करे, अनादर न करे, वे खुश हों, प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके यहाँ से विदाई। तो अभी तक पर्वत और नदी की बात की गई है। तो अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अध्याय 38वें में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब इस 38वें अध्याय में क्या कहा जा रहा है हम देखते हैं और सुनते हैं। कहते हैं ब्रह्मोवाच अथ शैलेश्वर प्रीतो हिमवान मुनि सप्तम स्वपुरम रचयामास विचित्रम परमोत्सवम सिक्त मार्गम संस्कृतम च शोभितम परमर्धिवी द्वारी द्वारी च रंभादि मंगलम द्रव्य संयुतम प्रांगणम रचयामास रंभा तंभसम समन्वितम पट्ट सूत्रय सन्निबद्धम रसाल पल्लवान्वितम मालती माल्य संयुक्तम तोरण सुप्रभम शोभितम मंगल द्रव्य चतुर्दिक्षु स्थितय सुवह। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, उसके बाद गिरिराज हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने नगर में परम उत्सव करवाया। चारों ओर सड़कों पर पानी छिड़कवाया, दोनों ओर सड़कें सजा दी गई, प्रत्येक दरवाजों पर केले आदि के पेड़ों को लगवाकर उन्हें सुशोभित कर दिया गया। देखिए पहले क्या होता था, पहले सजावट होती थी केले के पेड़ से। आजकल केले के पेड़ बहुत कम दिखते हैं। केला क्या है, मंगलकारी है और केले का हर पूजन पाठ में केले का प्रयोग होता है। तो केले के थंब हर जगह लगाए जाते हैं। पहले भी मैंने देखा था दीपावली के समय में, आप अभी भी छोटे शहरों में जाएंगी, गांव में जाएंगी तो वहाँ केले के थंब लगाए जाते हैं और उन पर दीपक लगाया जाता है। बड़ा खूबसूरत लगता है ये दृश्य देखने में। तो आजकल तो लाइट की परंपरा है, जगह जगह लाइट लगा
1: देते थे। पहले सारा प्राकृतिक सज्जा होती थी,
0: पहले प्राकृतिक सज्जा होती थी, दीपक जलाए जाते थे। क्योंकि दीपक क्या है, वो तेल बाती उसमें जो जलता है वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो दीपकों से सजाते थे पहले। तो केले आदि के पेड़ लगाकर उन्हें सुशोभित किया गया मार्गों को और आंगन में भी केले के खंभे लगाकर उन पर रेशमी वस्त्र लपेट दिए और चारों ओर आम के पत्ते लगा दिए। मालती की मालाओं के सुंदर तोरणों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से चारों ओर सुशोभित कर दिया गया। इस प्रकार पर्वतराज ने सभी आयोजन अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए, मेरी कन्या प्रसन्न हो, क्योंकि वो कन्या साधारण थी नहीं, आदिशक्ति थी। और ऐसा हिमालय को आभास भी हुआ था, पता भी लगा था कि मेरी कन्या जो है साक्षात आदिशक्ति है और साक्षात आदिशक्ति ने उनके घर में जन्म लिया था। यही तो परम हर्ष का विषय था। सभी जगह आदिशक्ति तो जन्म लेती नहीं है। हाँ, आदिशक्ति का अवतरण अगर कहा जाए तो ये पूरा संसार आदिशक्ति का अवतरण ही है। चाहे वह चींटी से लेकर के मनुष्य हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि अवतारी पुरुष, सब में आदिशक्ति का ही अवतरण है। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते, अपने शरीर को मंदिर मान नहीं पाते। जिस दिन हम अपने शरीर को मान लेंगे कि हमारा शरीर दिव्योपम मंदिर है, ऐसा मंदिर कहीं और मिलेगा ही नहीं, तो हम सच में अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे, ना कि शरीर से गलत कार्य करेंगे, ना कि शरीर को मांस मदिरा प्रदान करेंगे। लेकिन हम मंदिर ऐसे मान नहीं
1: मानते ही नहीं है।
0: इस शरीर रूपी मंदिर में जो मूरत है वो है हमारी आत्मा, और उस आत्मा रूपी मूरत में जो हृदय है वो है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का संगम है हमारे शरीर में, ये मूर्ति रूप में हमारे अंदर स्थापित है। इनकी धड़कन हम सुन सकते हैं, इनका स्पंदन हम सुन सकते हैं, लेकिन तब जब हम इन्हें जीवंत माने, जब हम इन्हें यह माने कि हम यही है। कैसे? तत्त्वमसि, जो वह है वही हम है, सो अहम, जो वह है वही हम है।
1: अब लीना जी, वही कि यहाँ से बात सिद्ध होती है कि हमारा शरीर ही माध्यम है उस तक पहुँचने का, क्योंकि शरीर से मन में उतरने के लिए तो शरीर को भी स्वस्थ रखना होगा
0: जी।
1: तो जब शरीर को स्वस्थ रखना है तो फिर ऐसे तामसिक भोजन को तो दूर ही रखना चाहिए, उसका क्यों अपना ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका तो असर फिर तामसिक ही होगा, प्रभाव भी शरीर पर तामसिक होगा, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव तामसिक ही होगा।
0: एक बात यह मैं कहना चाहूंगी मंजू जी कि ये संसार जो रचा बसा है, जो रचाया है आदिशक्ति ने, वो तीनों गुणों के सन्निवेश से रचाया है। अगर तम गुण नहीं रहेगा तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.009 ना रहे तो सारा वातावरण ही जल जाएगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड से नियंत्रित रहता है, जो ज्वलनशील गैस हैं वो सब नियंत्रित रहते हैं। तो तमोगुण भी आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, अगर निद्रा नहीं हो तो हम सब परेशान हो जाएंगे। तो निद्रा तमोगुण में आता है, लेकिन आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक है जितना हमें चाहिए। लेकिन हम उसी में रचे बसे रहेंगे तो हम तमोगुण ही हो जाएंगे। आते हैं रजोगुण पर, रजोगुण है महत्वाकांक्षा, रजोगुण है क्रिया करने की शक्ति। अगर रजोगुण नहीं रहे तो हम क्रिया ही नहीं कर पाएंगे, हम सोचेंगे ही नहीं उस विषय पर काम करने के लिए, तो इसलिए रजोगुण भी आवश्यक है। अब आते हैं सतोगुण पर। सतोगुण क्यों आवश्यक है? क्योंकि सत्य, सत्य की पूछो, सच्चिदानंद ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं और तो हमारी गति सतोगुण की ओर होनी चाहिए। यानी कि ये सारी सीढ़ियां हैं, हम सब में ये तीनों गुण है। ऐसा नहीं है कि राम में तमोगुण नहीं है, राम में रजोगुण नहीं है, राम में सतोगुण नहीं है, ये नहीं है। लेकिन नियंत्रित अवस्था में है और वृद्धि है सतोगुण, और वो तो परमेश्वर है, तो इन तीनों गुणों से परे भी हैं वो लोग। तो अब सोचना ये है हर मनुष्य को कि अगर हमने जन्म लिया है तो तीनों गुण भले हैं, लेकिन हमें हर व्यक्ति परीक्षा पास करता है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर MBA सब करता है। तो जब ये है तो उसी तरह तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ना है उसे, और रजोगुण की ओर बढ़ने के लिए उसे सब कुछ देखना होगा कि कैसे निद्रा कम करें, आलस्य कम करें, प्रमाद कम करें, और उसके बाद महत्वाकांक्षा तो रहती है रजोगुण में, लेकिन क्रिया करने की शक्ति होती है तो वो सब करें। उसके बाद रजोगुण से सतोगुण की ओर हमको बढ़ना है। जब सतोगुण की ओर बढ़ेंगे तो वो प्रकाश का गुण है, प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए ये शिव पुराण है। प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। जैसे परीक्षा पास करने, BA की परीक्षा पास करने के लिए आप इंटर के सिलेबस पढ़ करके जाएंगे तो क्या BA की परीक्षा पास करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरह सतोगुण की भी परीक्षा है, रजोगुण की भी परीक्षा है। तो इन सारी परीक्षाओं को पास करने के लिए हमें उसी तरह की योग्यता चाहिए। तो योग्यता हासिल करते चलिए और पर पग रखते चलिए, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। कोई भी गुण खत्म नहीं होगा, लेकिन उनकी संतुलन बना रहेगा, और जिस दिन संतुलन बन जाएगा इन तीनों गुणों से हम परे भी हो जाएंगे। तो यही हमें शिव पुराण सिखाता है
1: जी।
0: तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरह से पूरे नगर को हिमालय ने सजाया, केले के थंब से भी सजाया, और उसके बाद कहता है कि उसके बाद महाप्रभावशाली गर्ग जी के सामने पूजा आदि की सामग्री प्रस्तुत की। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर विस्तृत एवं सुंदर मंडप और उसके बीच में वेदी का निर्माण कराया। वेदी का निर्माण भी बहुत आवश्यक है, और कहते हैं हे देवर्षि नारद, वह वितान 10,000 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों तथा आश्चर्य कारक दृश्यों से युक्त था। वह मंडप स्थावर जंगम सबके लिए समान रूप से मनोहर था, चारों ओर से वह सुंदर था। जो मंडप बनाया गया वो चारों ओर से सुंदर था। फिर आगे

0: आगे कह रहे हैं व्यास जी कि जंगमम विजितम तत्र स्थावरेण विशेषतः जंगमेन च तत्रासीत जीतम स्थावरम एव ही पैसा च जिता तत्र स्थल भूमि न चान्यथा जलम किम ही स्थलम किम ही न विदु के अपि को विदा क्वचित सिंहा कृत्रिमाश्च क्वचित सारस पंक्तय क्वचित शिखंडिना तत्र कृत्रिमाश्च मनोहरा। देखिए अब ये आगे बता रहे हैं प्रकृति किस तरह हास विलास से युक्त हो जाती है। जब प्रकृति और परमेश्वर की ही शादी हो रही है तो प्रकृति तो अपने ढेरों रंग दिखाएगी, इंद्रधनुषी रंग दिखाएगी। कहते हैं कि वहाँ की स्थावर रचना ने जंगम सृष्टि को और जंगम रचना ने स्थावर सृष्टि के मन को जीत लिया था, जल ने स्थल को जीत लिया था, अर्थात कहाँ जल है कहाँ स्थल है इसका निर्णय भी कोई नहीं कर पा रहे थे। कहीं बनावटी सिंह, कहीं सारसों की कतारें, कहीं मोर दर्शकों के मन को आकर्षित कर रहे थे, कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई बनावटी स्त्रियां भी देखने वालों के मन को मोहित कर रही थीं। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे के पास मनोहर द्वारपाल बने हुए थे। हाथों से धनुषों को उठाए हुए वे बनावटी द्वारपाल वास्तविक जैसे लग रहे थे। दरवाजे पर बनाई हुई महालक्ष्मी सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो साक्षात क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी ही हो। बनावटी हाथी सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ऐसे लग रहे थे मानो स्वाभाविक ही हो। इसी प्रकार घोड़े घुड़सवारों से तथा हाथी हाथी पर सवार होने वालों से सुशोभित हो रही। सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनिजनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। अब बताइए स्वयं विश्वकर्मा ने ये सब बनाया तो क्यों नहीं होगा आश्चर्यचकित। तो आजकल तो देखिए मनुष्य भी जो बना रहे हैं बहुत ही आश्चर्य करने वाली बातें हैं। पूरे आप देखेंगे कि पूरे गांव के गांव बनाए हुए हैं और लगता है कि सच में अभी बोल पड़ेंगी मूर्तियां बोल पड़ेंगी। तो आज भी वो कलाएं हैं जीवित और विश्वकर्मा तो देवताओं के जो है शिल्पी ही हैं, शिल्पकार हैं। कहा जाता है जो देवघर है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थित है बैजनाथ धाम, अच्छा वहाँ वो जो है भगवान विश्वकर्मा जो है स्वयं बनाए उस चीज को। केवल देवघर ही नहीं बहुत सारे सारे मंदिरों के भी विषय में बताया जाता है कि उन्होंने ही बनाया। तो शिव का ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ नहीं और केवल शिव ही क्यों, बहुत सारी सारे देवी देवता भी हैं जिनके मंदिर बड़े अद्भुत हैं। अब मीनाक्षी मंदिर को देख लीजिए कितना खूबसूरत है, जो
1: कलाकृति देख
0: कलाकृति है देख चोल पल्लव आदि राजाओं ने जो बनाया था मंदिर वो सच में देखने लायक। मैं तो मीनाक्षी मंदिर को देख करके हतप्रभ रह गई, क्या ऐसा भी बनाया जा सकता है,
1: इतनी कला उसमें है, इतना हाँ। बारीकी
0: है और जीवंत लगते हैं क्योंकि मूर्तियां उनमें स्थापित हैं, जीवंत मूर्तियां लगती हैं। अगर उन्हें देखने जाइए तो ऐसा लगेगा कि जीवंत है, अभी बोल पड़ेंगी। ऐसे ही अभी एक महालक्ष्मी मंदिर बनाया गया है, मैं तिरुपति गई थी, तिरुपति के पास
1: पहले ही पड़ता है
0: हाँ। तो वहाँ पूरे सोने की का मंदिर है और कमल के आकार में जो है चारों तरफ मैदान है। तो सारे को पार करके आप महालक्ष्मी मंदिर तक जाएंगे और लक्ष्मी मंदिर सच में लगता है कि महालक्ष्मी जो है पूर्ण वैभव और विलास के साथ वहाँ स्थित है। तो ये सब बहुत खूबसूरत लगता है। तो मनुष्य कृत भी बहुत सुंदर है और ईश्वर कृत तो सुंदर होंगे ही। तो अब देखिए यहाँ पर जो विश्वकर्मा की बात बताई गई है तो विश्वकर्मा के लिए कहा जाता है कि इन्होंने कैसे बनावटी चित्र बनाए कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है इसका भी पता नहीं चल रहा, इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहे थे। और कहते हैं आगे कि सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनि जनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। हे मुनि, प्रमुख द्वार पर शुद्ध स्फटिक जैसा बनावटी बनाया हुआ नंदी वास्तविक नंदी जैसा ही लग रहा था। उसके ऊपर अलौकिक रत्न जटित पुष्पक विमान था जो शुभ्र पल्लव तथा चामरों से सुशोभित था। मतलब कि हर चीज इन्होंने जो लिखा है वेदा व्यास जी ने, उन्होंने तो अपनी दूरदृष्टि से लिखा, और जो दूरदृष्टि उनकी थी वो कम नहीं थी,
1: कम नहीं थी।
0: जो महाभारत दिखा दिए संजय को, श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में, वो दिखा दिया, तो उनके विषय में क्या कहा?
1: अलौकिकता थी, अलौकिकता थी, अलौकिक शक्ति थी उनकी।
0: जी जी
1: जी। तो लीना जी, बहुत ही सुंदर ये वर्णन चल रहा है शिव पार्वती के विवाह का, लेकिन क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि चार पंक्तियाँ सुनाएं और हमारे भक्तों को शिव में बनाएं।
0: कहते हैं परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम योगी परम मनस्वी, परम योगी परम मनस्वी, परम यशस्वी परम शक्तिशाली, और कौन है? केवल शिव, केवल शिव।
1: बहुत बहुत ही महिमा युक्त आपने ये शब्द जो है रचे हैं और सुनाए हैं जो हमारे श्रोताओं को, तो आप सब सोचते ही रहेंगे और शिव में ही बने रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में पुनः हम यहीं पर मिलते हैं आपको रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई

0: स्वधर्म क्या है? आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या? कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है? शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं? क्या वो नेचर वाला, या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे, उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में

0: बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है, उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो, तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
0: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है, उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं। तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में अपनी संपूर्ण

0: स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं, और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव 107.8 FM पर। नमस्कार।

Radio Mana Vishnu 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मयाद युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्य वन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए और यक्षों से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों के तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी शादी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाए। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। पत्रिका आश्रम में भीमसेन की युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे न बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बदली काशों को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है, तो इसके आगे जाना अनुमति नहीं थी।
2: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया। वो बोला, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकस और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे। वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, है रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस से ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटे करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। इससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख कर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ अलग कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लाडली खदासी जी से। अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लाडली खदासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लाडली खदासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी, जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे, तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहाँ उन्हें राज ऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने शास्त्र में पहुंचकर परम धार्मिक राज ऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राज ऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहाँ 7 दिन रात रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंध मादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि तेरी तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत हृष्ट था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में उस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी पनव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है।

0: क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नांगकर केवल परम से दो देव ऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो इससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यही निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का पांचवा वर्ष भी बीत गया। अब हम एक प्रसंग लेते हैं, भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर गए महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था तो भी सर्प के चंगुल से फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मन और इंद्रियों को विजय प्राप्त करी
1: जी।
0: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया, मैंने मन मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही उसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, इसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी भ्रमण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, इसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार करना हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है। सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल, मैथुन, मित्रवृत्ति, जन्म मरण, ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली बात ही सुन लिया। अब तुम मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्व उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इसमें किसका महत्व अधिक है, किसका कम? सर बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दाम बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यंभावी फल को कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है। वही प्रिय योनि में जन्म लेता है, फिर सत्कर्म का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी प्रिय योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसका आधार क्या है? इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि, इंद्रिय और मन से युक्त होने को भोक्ता बताया है, वही माया अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों की ओर प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर, मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो। तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर ने कहा, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन मत हो गया था, और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब चेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब चढ़ कर आता था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था, उसमें अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी और आंख उठाकर देखता उसका तेज छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। इस अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त पालकी धो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी और तब एक क्रोध में भर कर उन्होंने कहा, अरे ओ सर तू नीचे गिर। तब मेरे राज सिंह लुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर होकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगस्त मुनि से याचना की, भगवान मैं प्रमाद व विवेक शून्य हो गया था, उससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मैं शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा। इस समय तुम्हें फिर पुण्य का फल प्राप्त होगा। महाराज तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्लोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया। दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्लोक में चले गए।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे, वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली, और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं, जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट। सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं। लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हफ्ते के सातों दिन 2 घंटे का हमारा सफर जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की। बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें यह होता है कि देखिए जैसे ये जो पानी है ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली। जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का। जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है। कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है। और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे। और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़ रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल रखने दो में आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है, हड्डियों को मजबूती जरूर देगा, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिन्स हैं तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. त्वचा को जवां और चमकदार दिखाए रखने में भी काफ़ी काम करता है, जबकि विटामिन और मिनरल्स जो हैं बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार हैं, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और. बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला ये मेरा वादा है.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की। जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं, और वो कैसे, वो होता है योग से। जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ। हफ्तों के सातों दिन मैं आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको घटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंग आसन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है और वो है सेतु बंधना आसन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंधना आसन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतु बंधना आसन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाँ, तो आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेती और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन हो जाएगा इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज सुबह, जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की। जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी। तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है, लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को, आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है। कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए। तो अगर आप, जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए। इतना ज्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में. मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है. इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है. तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा. बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों का आपको टिकाना है और बैठ जाना है. लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है. और सिर को आपको मैट पर ही लगाकर रखना है. और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है. कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन. जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है. और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है. इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है. जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है. सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है. और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है. इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए. कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए. इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का. तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी. अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ. सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमल प्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूं, कमल प्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमल प्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमल प्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया, तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमल प्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी, और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्री घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमल प्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: नौ बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी। आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आर्टिस्ट। एक्चुअली में कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए। लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की। जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही। रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला। और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी। लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा। पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए, उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी। एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया। जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं। वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला मेडल लेकर के आना है। रितु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को भारत का नाम रोशन करने में भी रितु का काफी बड़ा हाथ है इसमें। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं अगली आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी, किसकी आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी हो रही है हमारी बातें। फिलहाल आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ, कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछती हूँ, जो देता है सही सटीक रोजाना जवाब देता है। जब भी मैं पहेली पूछती हूँ, पूरे महीने जो रहता है कंसिस्टेंट, उनको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, रेडियो मैनव रचना 107.8 FM के स्टूडियो आने का और सभी आरजे से मिलने का। बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता दूं मैं अभी कि अभी बात मैं कर रही हूं बहुत सारी और आपसे पहेली पूछ रही हूं, तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। तो जो पहेली आज की है भाई, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इसका बहुत जल्दी से जवाब देना है। पहेली है, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरा ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं? मैं बी विटामिन का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया, बताओ कौन हूँ मैं? तो जल्दी से इसका झटपट से जवाब देना है। एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरो ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं? मैं विटामिन बी में का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया, बताओ कौन हूँ मैं? फटाफट से इसका जवाब आपको देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ। यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। 2 घंटे का हमारा सफर है। आपसे पहली मैंने पूछी क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूं। तो आज की हमारी पहेली है, मस्तिष्क का काम करूं आसान, न्यूरोट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूं मैं। विटामिन बी का हिस्सा हूं, बीन्स और साबुत अनाज में समाया हूं। तो चलो आपको इसका जवाब जो है वो देना था, और फटाफट से हमारे पास सबसे पहले सटीक जवाब जो है यहाँ चला है हमारी आज के लिसनर जो है आंचल की ओर से। आंचल बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और इसका जवाब है विटामिन B6 इसका जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ चलिए यहाँ पर अब पहला जवाब तो हमारे पास आ गया है। अगली एक और पहेली आपसे पूछने वाली हूँ, वो कौन सी है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ आज की हमारी पहेली, क्योंकि सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछ रही हूँ। तो आज की हमारी बड़ी आसान सी पहेली, पहली पहेली तो मैंने पूछ ली है, सेकेंड यानी कि दूसरी पहेली का वक्त जो है ये हो चला है। और पहेली है, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, बताओ कौन हूँ मैं, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान है, बताओ कौन सा वाइटमिन हूँ मेरी पहचान है। इसका फटाफट से आपको जवाब देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, ये हमारा नंबर है। एक बार फिर से मैं पहेली जो है वो दोहरा देती हूँ, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो जाए अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ कौन सा हूँ मैं वाइटमिन, क्या है मेरी पहचान। फटाफट से इसका जवाब आपको देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अब कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने वृष्णा 7.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक. मंडे टू संडे हफ्ते के 7 दिन हम आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल एक पहेली आपसे पूछी मैंने, जिसका फटाफट से जवाब आ चुका है. हमारी लिसनर ने यह जवाब दिया है. लिसनर का नाम है प्रियंका. प्रियंका मिश्रा जो है इनका नाम है. उन्होंने जवाब दिया है सेक्टर 21 से. इन्होंने मैसेज करके मुझे जवाब दिया है. आपको बता दूं, एक बार पहेली मैं फिर से दोहरा देती हूं. आंखों की रोशनी का हूं पहरेदार, रात में दिखने में करता हूं उद्धार. मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा. गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ क्या है मेरा वाइटमिन का नाम, क्या है मेरी पहचान. तो इस वाइटमिन का नाम है वाइटमिन ए. जी हाँ, और इसका सही भी अपने देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, सभी ने जवाब दिया है, लेकिन इसका सबसे सटीक और पहला जवाब जो है वो आया है हमारी लिसनर की ओर से. लिसनर का नाम जो है वो है प्रियंका मिश्रा. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का. तो आप कहीं मत जाइए, आगे और भी करती हूँ बातें. तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
1: हाँ गुरुदेव. ना

हरे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि एक पहेली आपसे पूछी है मैंने, 2 पहेलियाँ आपसे पूछी। सबसे पहले सटीक जवाब दिया है हमारी लिसनर आंचल ने, और दूसरा जवाब जो है हमें दिया है हमारी आज की लिसनर ने, और जिनका नाम है प्रियंका मिश्रा। बिल्कुल सही दोनों के ही जवाब रहे। अलग अलग मैंने आपसे जो है पहेलियाँ पूछी और आपने दोनों ही जवाब जो है दिए हैं आप दोनों ने ही। चलिए इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस, और इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, वक्त ये कहता है कि अब इजाजत तो लेनी होगी, क्योंकि ये वादा आपसे करती जाती हूँ कि कल होगी मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन आपको ना तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है बहुत। देखिए यहाँ पर बातें जो है ये तो होती रहेंगी बहुत सारी, लेकिन अब मुझे चलने का जो है वो टाइम हो चला है, यानी कि मुझे इजाजत का टाइम जो है ये हो चला है, तो अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। टाइम है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जहां हमें सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने, और हम लेकर आते हैं आपके लिए हर हफ्ते हेल्थ से जुड़ी कुछ खास बात, जहां जुड़े होते हैं हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, दिल्ली एनसीआर में वो प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ का पानी ही खराब है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के लिए तो बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन ये वाकई पानी की खराब क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है या फिर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से? क्या रीजंस हैं किडनी स्टोन्स होने के? जी हाँ, यही एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। किडनी में होने वाले स्टोन्स जो बहुत कॉमन हैं और इन्हें कॉमनली ही देखा जाता है, लेकिन क्या ये कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। सो डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा एंड थैंक यू रेडियो मानव रचना।
0: सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहले भी हम किडनी स्टोन्स के बारे में बात कर चुके हैं, किडनी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन स्टोन्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो किडनी स्टोन्स की अगर बात छिड़ती है तो कहा जाता है ये तो बहुत कॉमन है, हर दूसरे व्यक्ति को होता है, और खासतौर पर से दिल्ली एनसीआर के लोगों में ज्यादा ये धारणा होती है। सो किडनी स्टोन्स बेसिकली क्या है? ये किडनी में अचानक कहाँ से स्टोन्स बन जाते हैं, क्योंकि बॉडी तो नॉर्मल हमारी ब्लड और पानी से बनी हुई है।
1: ये दीक्षा जी एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, और ये किडनी स्टोन्स दिल्ली एनसीआर का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ बेल्ट का ही काफी प्रॉब्लम है। चाहे आप गुजरात देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, और खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा और यूपी की बेल्ट
0: जी।
1: इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किडनी हमारी बॉडी में दो होती हैं, और उनका मेन काम होता है कि हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को फिल्टर करना, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के उसको वॉश आउट करना, बॉडी के टॉक्सिन्स को वॉश आउट करना। जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या हम पानी कम पीते हैं, तो धीरे धीरे जो किडनी का जो यूरिन होता है वो भी एक कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी में जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो किडनी में डिपॉजिट होते रहते हैं। शुरू में तो वो दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो धीरे धीरे वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और वो स्टोन की फॉर्मेशन या स्टोन की शेप ले लेते हैं, तो जिससे हम किडनी स्टोन जिसको हम बोलते हैं।
0: सो मेजर रीजन इसका है कि पानी जो है वो बॉडी में अगर कम जा रहा है, 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर,
1: करेक्ट,
0: लेकिन अगर आप पी नहीं रहे हैं,
1: हाँ जी,
0: तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो जो एक कहते हैं ना कि जब आप कहीं पर पानी, किसी रोड पर पानी नहीं डाल रहे, उसको साफ नहीं करें, तो मिट्टी जमा होती रहती है।
1: ये बात किडनी के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि जब तक आप ठीक से एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहेंगे तो किडनी अपना वर्क, अपना फंक्शन अच्छे तरीके से करेगी, और उसको अपने वर्क के लिए पानी बहुत जरूरत होती है, जिससे वो बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज करता है, वॉश आउट करता है। अगर पानी कम होगा तो सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी।
0: जी, मेजर रीजन पानी की कमी। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो किडनी स्टोन होना लाजमी है। लेकिन सिर्फ क्या पानी की कमी ही वजह होती है किडनी स्टोन होने की? आखिर क्यों नॉर्थ इंडिया में इतनी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है? क्या ये प्रॉब्लम बच्चों को इफेक्ट कर सकती है? ऐसे कुछ सवाल मेरे मन में है, लेकिन अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल। अगर आप भी इनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं 8010781078 पर। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं दीक्षा आपके साथ।
2: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातचीत बहुत सारी खास आपकी हेल्थ के बारे में. किडनी स्टोन्स एक बहुत कॉमन टॉपिक जो पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं इतना कॉमनली स्प्रेड हो चुका है कि बच्चे बच्चे को पता है कि अगर स्टोन होता है तो दर्द किस तरफ होता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं. लेकिन फिर भी ये स्टोन्स इतने कॉमनली क्यों आते जा रहे हैं और क्या ये वाकई कॉमन प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन सकती. ऐसे कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन इन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. सो डॉक्टर मनोज, अभी हम किडनी स्टोन्स की बात कर रहे हैं और आपने सबसे वैलिड या फिर सबसे कॉमन जो रीजन बताया है इसके होने का वो है पानी की कमी. हम पानी नहीं पीते हैं.
1: तो
0: अमूमन हमें कितना पानी पीना चाहिए?
1: देखिए दीक्षा जी, अगर हम लोगों का लाइफ स्टाइल एक मॉडरेट लाइफ स्टाइल है और हम अपने ज़्यादा ऑफिस में बैठते हैं तो एक मेल या फीमेल को एटलीस्ट 3 to 3.5 liters ऑफ फ्लूड लेना चाहिए. फ्लूड चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे पानी की फॉर्म में हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, छाछ हो सकता है, जूस हो सकता है,
0: सारा मिला जुला के आपको
1: 3 to 3.5 liters आपको पानी लेना है. और अगर आप इतना पानी लेती हैं तो आपको अनुमान 1 to 1.5 liters ऑफ यूरिन आ जाता है जो एक अच्छा हाइड्रेशन कहलाता है और जिससे किडनी स्टोन के होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है.
0: जी, यानी 3 to 3.5 liters अगर आप लिक्विड ले रहे हैं पूरे दिन में जिसमें जूस छाछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ कोल्ड ड्रिंक और चाय नहीं हो सकती है, इसको आप बीच में से हटा दीजिएगा क्योंकि ये डिहाइड्रेशन ज्यादा.
1: ग्रीन टी आप ले सकते हैं, इसमें ग्रीन टी इंक्लूड है.
0: तो टेस्टी चीजें या फिर ऐसी चीजें जिनसे आपको एडिक्शन हो उनको इंक्लूड मत कीजिएगा. छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं जो टेस्ट में भी बेटर हैं और सेहत के लिए भी अच्छी हैं. अगर आप 3 to 3.5 liters 24 घंटे में फ्लूइड इनटेक है आपका तो किडनी स्टोन्स आपको नहीं हो सकते हैं. डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या रीजंस होते हैं? पानी की कमी तो एक मेजर रीज़न है जो जनरली लोग कहते भी हैं और आज आपने बता भी दिया है कि कितना पानी पीना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ रीजंस होते होंगे.
1: जी बिल्कुल सही कहा. जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं या एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो उनमें भी टेंडेंसीज होती हैं किडनी स्टोन्स बनने की. इसके अलावा जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या ओवर वेट पेशेंट होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, जो ओबीस होते हैं, उनमें भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसीज होती हैं. इसके अलावा कुछ चीजें जैसे हेरिडिटरी डिजीजेज हैं या जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन्स की होती है, जैसे सिस्टीन स्टोन्स होते हैं या कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, तो उन कंडीशंस में भी किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं. कुछ पेशेंट सर्टेन मेडिकेशंस लेते हैं जैसे डायूरेटिक जो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन दी जाती है, काफ़ी कॉमन है, जैसे एंटासिड्स हैं एसिडिटी के लिए जो दी जाती हैं, कुछ एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस हैं, इन सब चीज़ों में भी इन सब दवाइयों की वजह से भी किडनी स्टोन्स बढ़ सकते हैं. और एक और रिस्क होता है जो लोग ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं या ज़्यादा नमक खाते हैं, तो वो नमक क्या करता है आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स बढ़ सकते हैं. या जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन होता है किडनी स्टोन का कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स. जो लोग ऑक्सलेट रिच फूड खाते हैं जैसे स्पिनेच हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोको कोलाज हो गए या हाई रिफाइंड फूड्स हो गए, फ्राइड चिप्स हो गए, तो ये फूड्स भी किडनी स्टोन को बढ़ा सकते हैं.
0: बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि बीज वाली चीजें ना खाएं जैसे बैंगन है या खीरा है अगर आपको किडनी स्टोन्स की टेंडेंसी है, तो क्या ये एक्चुअली में सच है?
1: ये देखिए, जो भी बीज वाली चीजें हैं उसमें देखा जाता है कि उसमें ऑक्सलेट रिच फूड होते हैं, तो ये एक मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं. हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि बिल्कुल अवॉइड ना करें, मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं, एक्सेस अमाउंट में ना खाएं. जैसे स्पिनेच हो गया, नट्स हो गए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो ये सब चीजें, ब्रिंजल हो गया, टमाटर हो गए, सबसे इम्पोर्टेंट तो लोग जैसे किडनी स्टोन होता है टमाटर खाना बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. टमाटर आप मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं.
0: नहीं, नॉर्मली जैसे सब्जी दाल में खाते हैं उस तरीके से
1: खा सकते हैं. टमाटर में लाइकोपीन होता है विच इज अगेन अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. ये किडनी स्टोन नहीं करता, ये एक मिथ है.
0: जी, यानी बहुत सारी जो लोगों की धारणाएं हैं उनको भी आज हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ मिथ और फैक्ट पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो शेयर कीजिएगा 8010781107

0: की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
1: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
0: हाँ गुरुदेव, ना इज्जत।

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ में सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं।

0: गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल। नॉलेज पार्टनर है हमारे एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है बहुत सारी किडनी स्टोन्स के बारे में। सुनने में बहुत कॉमन है लेकिन ये काफी तकलीफ दे है, क्योंकि जिसको स्टोन होता है सिर्फ वो ही जानता है कि कितना दर्द होता है, और ये दर्द नॉन स्टॉप होता है जब तक दवाई ना ली जाए या जब तक ये निकल ना जाए। बहुत तकलीफ दे चीज है, क्योंकि बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी तकलीफ होती है तो वो सिर्फ वो ही जानता है जिसको वो तकलीफ होती है। और किडनी स्टोन इतने कॉमन हो चुके हैं कि इसके ट्रीटमेंट को लेकर या इसके कुछ स्पेसिफिकेशन को लेकर हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ नई सलाह देता मिल जाएगा। लेकिन हमारे साथ आज हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो आपको किडनी स्टोन से जुड़ी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि ये दिन के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ही देखते हैं। और इतने सालों के तजुर्बे के बाद एक हेल्थ एक्सपर्ट जब कोई सलाह देता है तो वो सबसे बेस्ट होती है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर कंसल्टेंट हैं, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। सो डॉक्टर मनोज, अब बात करते हैं किडनी स्टोन्स के टाइप्स की। अभी आपने बताया कि पानी पीने की कमी की वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट रिच हम जो फूड खाते हैं उसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स बनते हैं। सो टाइप्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, कितने तरीके के ये स्टोन्स हो सकते हैं?
1: दीक्षा जी, ये अमूमन 4 to 5 टाइप्स के मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन्स होते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं
0: जी,
1: और जो सेकंड कॉमन होते हैं वो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं।
0: ओके,
1: थर्ड नंबर पे आते हैं जैसे कुछ हेरिडिटी डिजीज के होते हैं, जैसे सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, या जिन लोगों में सिस्टीन यूरिया होता है तो उनमें सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं।
0: ओके,
1: और जिन लोगों में किडनी का इन्फेक्शन होता है, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको पाइलोनेफ्राइटिस होती है, तो उनको स्ट्रोवाइट स्टोन्स, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स के रिस्क होते हैं बनने की।
0: Okay.
1: तो लेकिन जो 60-70% जो एक कॉमन स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स ही होते हैं
0: जी। सो डॉक्टर साहब, ये पता कैसे लगाया जाता है कि किस चीज की वजह से ये जो स्टोन्स हैं ये बन गए हैं? जैसे आपने कहा कि कई तरीके के होते हैं, अब डायबिटिक पेशेंट है जरूरी नहीं है वो पानी भी अच्छे से पी रहा है, सारा ख्याल रख रहा है, फिर भी अगर उसको स्टोन बन गए हैं सो कैसे चेक होगा? क्या ये सर्जरी के बाद जब स्टोन बाहर आते हैं तभी चेक किया जा सकता है?
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोन के कंपोजिशन को चेक करने के लिए स्टोन एनालिसिस करवाई जाती है, उससे पता चलता है कि स्टोन कौन से टाइप का है
0: जी।
1: तो जरूरी नहीं है कि स्टोन हमें सर्जरी के बाद ही मिल पाए। कुछ लोग कभी जब अपने वॉशरूम जाते हैं तो वहां पर भी वो स्टोन पास कर देते हैं। अगर वो स्टोन वो किसी भी तरीके से या किसी भी मेथड से कलेक्ट कर लेते हैं और किसी भी अच्छी लैब में अगर वो देते हैं तो स्टोन एनालिसिस से ये आप स्टोन का कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं, और ये टेस्ट कोई महंगा भी नहीं होता। 500-700 रुपीस में ये हो भी जाता है, और इससे आपको अपने स्टोन का टाइप भी पता चल सकता है
0: जी। यानी आप स्टोन को चेक करा के ये पता लगा सकते हैं कि किस वजह से, किस चीज से ये बन रहा है, तो उस चीज को आप अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में अवॉइड कर सकते हैं ताकि वो बार बार स्टोन ना बने।
1: करेक्ट
0: डॉक्टर साहब, स्टोन के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को राइट या लेफ्ट में पेन होता है और अक्सर ये पेन थोड़ा बैक की तरफ जाता है तो उन्हें लगता है कि स्टोन है। कई बार लोगों को नहीं समझ आता जिनको पहली बार दर्द होता है, तो इसके थोड़े सिम्टम्स क्या हैं?
1: देखिए दीक्षा जी, जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन सडन भी हो सकती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कई महीनों, कई सालों से स्टोन होता है फिर भी उनको कोई सिम्टम नहीं होता। अगर किडनी स्टोन अगर किडनी तक ही रहता है तो इसके जो सिम्टम्स है, या तो बहुत डल एकिंग पेन होगा या कभी खाने का मन नहीं करेगा, तो बस यही सिम्टम्स होते हैं।
0: ओके,
1: लेकिन जब स्टोन किडनी से निकल के यूरिन पाइप में आ जाता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, तो तब उसकी प्रेजेंटेशन एक्यूट होती है।
0: ओके,
1: तब पेशेंट को अचानक से बहुत सडन सीवियर कॉलिकी पेन होता है, उसमें साथ उल्टी आ सकती है, कभी कभी यूरिन में ब्लड आ जाता है, फीवर आ जाता है, या कभी कभी किडनी में जो उसका केएफटी होता है वो भी डिरेंज हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन भी हो सकता है।
0: ओके, और ये सिर्फ स्टोन की वजह से?
1: ये सब स्टोन की वजह से होता है, क्योंकि स्टोन ने यूरिन पैसेज को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से किडनी में सूजन हो जाती है और पेन होता है।
0: जी जी, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? सर्जरी या वैसे भी निकाला जा सकता है, ड्रिप के थ्रू भी बहुत सारे रोग निकल आते हैं?
1: देखिए, जो आप ड्रिप के थ्रू कह रहे हैं उसको पहले हम हाइड्रोथेरेपी बोलते थे।
0: ओके,
1: अब ये चीज ऑब्सोलीट हो गई है। जो किडनी स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट या यूरेटरी स्टोन्स का ट्रीटमेंट उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है।
0: ओके,
1: अगर स्टोन 5 mm से कम है तो इसके 70-80% चांस होते हैं कि बॉडी में ही अपने आप निकल सकता है, अगर ठीक अमाउंट में हम वाटर लें, पानी ठीक से हाइड्रेट करें अपने आप को, या कुछ यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के थ्रू, कुछ मेडिकेशन के थ्रू ये निकल सकता है। अगर स्टोन का साइज 5-7 है तो इसके 50% चांस होते हैं निकलने के, और स्टोन अगर 7 mm से बड़ा है तो हार्डली 20% चांस होते हैं निकलने के,
0: सर्जरी करानी पड़े।
1: हाँ जी, तो आपको अगर किडनी स्टोन है तो आप लोगों की सलाह पे मत लीजिए, आप किसी भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से आप कॉन्टेक्ट करिए, उनके कंसल्टेशन में रहिए, उनकी एडवाइस फॉलो करिए और अपने किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट करवाइए। हर किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है।
0: जी बिल्कुल, यानी हर किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, लेकिन हर किडनी स्टोन जो है वो इतना ईजिली निकलता भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, बस आपको सही सलाह की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, किडनी के बारे में बात करें हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस किडनी स्टोन्स में किसको ज़्यादा रिस्क रहता है, महिलाओं को या पुरुषों को?
1: देखिए, अगर इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता, मेल्स एंड फीमेल, फीमेल्स का जो यूरिथ्रा होती है, यूरिन पाइप होता है, वो छोटा होता है, तो फीमेल्स में टेंडेंसीज होती है कि वो स्टोन स्पॉन्टेनियसली पास कर सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स।
0: ओके,
1: लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उन्हीं के परामर्श में अपना उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या बच्चों को भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं?
1: जी, आजकल जो लाइफ स्टाइल चल रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास बच्चे, जो 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 10 साल तक के बच्चे में किडनी स्टोन्स की इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, और उसका रीजन है लाइफ स्टाइल। बच्चे पानी कम पीते हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स काफी ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें, बच्चे आजकल ओबेसिटी की तरफ भी ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल्स टीवी ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज बच्चे कम करते,
0: फाइबर भी कम है, पानी भी कम है, तो ओवरऑल मिलाकर सारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बच्चों के लिए भी तकलीफदायक
1: है।
0: यानी बच्चों को भी किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, और किडनी स्टोन्स का दर्द जो होता है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी, और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है बच्चों के केस में, बुजुर्गों के केस में, या फिर क्या ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं जाननी आपके लिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ये चीजें खाइए या फिर पीजिए तो किडनी स्टोन्स निकल जाएंगे, लेकिन वो क्या चीजें हैं, कुछ आप भी जानते हैं, कुछ हम भी जानते हैं, लेकिन आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल 8010781078 पर। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, बातचीत जारी रहेगी। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम बात करें किडनी स्टोन्स के बारे में। डॉक्टर मनोज अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जाने माने यूरोलॉजिस्ट, और इनसे हम जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से किडनी स्टोन्स को रोका जाए, या फिर बॉडी में बनने से ही पहले अगर हम रोक लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, क्योंकि किडनी स्टोन्स एक ऐसी समस्या है जो बहुत कॉमन हो चुकी है, बिल्कुल सर्दी जुकाम की तरह ये घर घर में पहुंच चुकी है। लेकिन इसको रोकना और इसको कंट्रोल करना, साथ ही इसका ट्रीटमेंट करना भी बेहद जरूरी है। क्या किडनी स्टोन्स अगर लंबे समय तक हमारी किडनी में रहते हैं तो कोई नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसे सवाल और इन सवालों के बहुत सारे जवाब। डॉक्टर मनोज, अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि किडनी स्टोन्स, कई लोग कहते हैं ना अगर किडनी में है, पड़े हुए हैं तो रहने दो, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, पर क्या ये किडनी स्टोन्स एक्चुअली में नुकसान पहुंचा सकते हैं, किडनी को डैमेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में?
1: जी बिल्कुल दीक्षा जी, एक रिसर्च आई है, इसमें ये देखा गया है कि अगर किडनी स्टोन्स अगर किडनी में है तो वो धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता रहेगा और नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में उन पेशेंट्स में CKD मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी किडनी स्टोन्स हमें उसका ठीक से उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि अगर ये दर्द नहीं कर रहा तो ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही निकल जाएगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं होता, कुछ भी नहीं पता चलता, कई सालों से किडनी स्टोन्स होता है, बस वो इग्नोर करके रहते हैं तो पता चलता है वन फाइन डे कि उनकी किडनी डैमेज हो गई है। उनका जो क्रिएटिनिन होता है किडनी का, जो पैरामीटर होता है वो बढ़ गया है, GFR कम हो गया है। तो किडनी स्टोन को कभी भी इग्नोर मत करिए
0: जी। और इसके कोई ऐसे सिम्टम है कॉमनली जिसके थ्रू आप जाएं चेकअप कराएं अपना, अगर पेन वगैरह नहीं भी हो रहा तो कोई सिम्टम ऐसा है?
1: देखिए यूजुअली पेशेंट तभी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं जब उनको पेन होता है या डल एकिंग पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है या यूरिन में ब्लड आ जाता है। लेकिन एक अच्छे मतलब एक आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप 35 प्लस के हो तो आपको ईयरली एक अल्ट्रासाउंड करवाना जरूर चाहिए। उससे आप काफी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है जो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप में आता है।
0: जी जी, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे लोग आपको सलाह देते हैं कि पानी के साथ साथ एक चीज और पीजिए जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है और ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं, वो है बियर। जी हाँ, अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम। बियर पीने से किडनी स्टोन्स निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं और बहुत सारे लोग इसको सीरियसली ले भी लेते हैं। सो डॉक्टर मनोज जी, मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बियर पीने से क्या किडनी स्टोन्स निकल जाते हैं?
1: दीक्षा जी, बियर पीने वालों को बियर पीने का बहाना चाहिए, लेकिन बियर पीने का बहाना किडनी स्टोन्स नहीं होना चाहिए।
0: पार्टी कर लीजिए
1: वो एक अलग बात है, लेकिन किडनी स्टोन्स अगर हो गए हैं तो कृपया करके बियर बिल्कुल मत पीजिए। इट इज बिग नो फॉर द किडनी स्टोन्स।
0: क्या ये नुकसान पहुंचाती है?
1: यस, इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, क्योंकि जब आप बियर पीते हैं तो ये एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, मतलब बॉडी से यूरिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, ये ज्यादा यूरिन जनरेट करता है, तो जिसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन कर देता है।
0: हाँ।
1: तो किडनी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से इन पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट बियर में ऑक्सलेट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है।
0: ओके।
1: जो अगेन एक मेन कंस्टिट्यूटेड मेन कंपोजिशन है किडनी स्टोन्स का। तो बियर इज स्ट्रिक्टली नो फॉर द किडनी स्टोन्स,
0: बियर बिल्कुल ना है। तो जो लोग खुश हो रहे थे अभी तक सुनकर कि किडनी स्टोन्स हो गए हैं तो अब बियर पीने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनके परिवार वाले या उनकी कोई भी लोग उनकी जान पहचान के मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि किडनी स्टोन्स बियर पीने से बिल्कुल नहीं निकलते।
1: बियर पीने से किडनी स्टोन्स बिल्कुल नहीं निकलते, पानी ही रामबाण है, पानी ही अमृत है
0: जी।
1: यानी प्योर वाटर लीजिए या नींबू पानी लीजिए, लेकिन बियर बिल्कुल मत लीजिए।
0: जी बिल्कुल, यानी बेस्ट ड्रिंक फॉर प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज वाटर।
1: यस,
0: सबसे ज्यादा अच्छा पानी है और पानी सबसे ज्यादा अवेलेबल भी है, तो कृपया करके पानी का सेवन कीजिए, चाहे किसी भी फॉर्म में कीजिए, पर पानी ही आपको किडनी स्टोन से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज जो आप कहना चाहें कि ना खाएं, अगर ये ज्यादा खाएंगे तो किडनी स्टोन्स बन जाएंगे?
1: जी, जैसे आजकल जो कुछ लोग एनिमल प्रोटीन्स या नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाते हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन करें, पर्टिकुलरली रेड मीट को थोड़ा अवॉइड करिए।
0: ओके,
1: और आप अपने वेट को चेक करिए, आपका बीएमआई एक रेगुलर रेंज में होना चाहिए, जिसको हम 19-24 बीएमआई की रेंज में रखते हैं। आप अपने वेट को बिल्कुल एडिक्वेटली मेंटेन करिए
0: जी,
1: बैलेंस्ड डाइट खाइए, काफी सारा पानी पीजिए, 3-3.5 लीटर जैसा कि हमने पहले भी बोला है। और अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने कंसल्टेंट को बता सकते हैं कि भाई मुझे किडनी स्टोन की फॉर्मेशन के रिस्क हैं, तो हो सकता है आपके फिजिशियन या आपके डॉक्टर उस मेडिसिन को रिप्लेस करके कोई दूसरी मेडिसिन दे दे
0: जी।
1: और अगर आपको किडनी में या यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है तो आप इसको ठीक से ट्रीट करवाइए, क्योंकि जिन लोगों में बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है उनको भी किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन काफी
0: ज्यादा हो जाती है
1: जी। yes.
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि किडनी स्टोन अगर आपने एक बार सर्जरी से निकलवा लिया, किसी भी तरीके से वो निकल गए, तो वहां पर वो जगह एम्प्टी हो जाती है और वो किडनी स्टोन्स वापस बन जाते हैं, क्या ऐसा होता है?
1: देखिए दीक्षा जी, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। ये देखा गया है कि अगर किसी को किडनी स्टोन्स हो गए हैं तो डाउन द लाइन 10-15 ईयर्स में उसको 50% तक किडनी स्टोन बनने का रिस्क रहता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए प्रिवेंशन ही है, जैसे अब पानी उसको एडिक्वेट पीना पड़ेगा, नॉन वेज रिड्यूस करना पड़ेगा, सॉल्ट इनटेक कम करनी पड़ेगी, वेट मेंटेन करिए, डायबिटीज अगर है तो कंट्रोल करिए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जो एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो चीजें करनी है वो किडनी स्टोन्स के प्रिवेंशन के लिए भी सेम चीजें होती है।
0: बिल्कुल, यानी अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए, किडनी स्टोन्स अपने आप चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर्जरी के बारे में बात करते हैं, कितनी पेनफुल होती है, कितने दिनों में रिकवरी होती है, और आजकल दूरबीन के द्वारा होने लग गई है तो थोड़ा सा ईजी हो गया है सिस्टम?
1: जी बिल्कुल, जो पहले जो किडनी स्टोन की सर्जरीज होती थी वो पहले चीरे वाली सर्जरीज होती थी, आजकल लैप्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो गई है जो लेजर के थ्रू होती है। उसमें उसके क्या एडवांटेज होते हैं, उसमें कोई भी कट नहीं लगता बॉडी में, कोई स्टिच नहीं लगता, कोई बॉडी में होल नहीं होता या छेद नहीं होता, और सब ये नेचुरल ऑरिफिसेस से या यूरिन पाइप के थ्रू लेजर के थ्रू हम स्टोन तक पहुंच जाते हैं, स्टोन को लेजर से ब्रेक करके निकाल सकते हैं।
0: ओके,
1: इसमें रिकवरी अच्छी होती है, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती, और अच्छी बात यह है कि पेशेंट नेक्स्ट डे से अपना ऑफिस भी शुरू कर सकते हैं
0: सिर्फ एक दिन में।
1: यस, कुछ कुछ पेशेंट्स में हम मॉर्निंग में भी सर्जरी करके शाम तक भी डिस्चार्ज कर देते हैं।
0: ओके,
1: और इसमें अब जैसे एक सर्जरी है RIRS, जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी, बिल्कुल दिस टेक्निक हैज रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन्स, और आजकल ये काफी कॉमन है, और इसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छी रिकवरी होती है, पेन नहीं होता, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, पेशेंट नेक्स्ट डे से अपना ऑफिस भी शुरू कर सकते हैं, तो कोई वर्क लॉस भी नहीं होता।
0: जी बिल्कुल,
1: तो अगर आप लोगों को किडनी स्टोन्स हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो आप घबराइए मत, आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और उनकी कंसल्टेशन के हिसाब से आप चलिए।
0: जी बिल्कुल, यानी किडनी स्टोन्स हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना है, अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और उनके बताए हुए ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, फिर चाहे वो सर्जरी हो या फिर नॉर्मल मेडिकेशन के साथ वो स्टोन्स निकाले जाएं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, उम्मीद है जो लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं किडनी स्टोन से एटलीस्ट वो निजात पा जाएंगे और बिना किडनी स्टोन्स के अपना जीवन जो है वो बहुत अच्छे से चला पाएंगे, क्योंकि कहने के लिए कॉमन किडनी स्टोन्स बातचीत में बहुत नॉर्मल लगते हैं लेकिन एक्चुअली में काफ़ी तकलीफदेह और नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर मनोज हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू दीक्षा जी।
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, ऑल इज वेल में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ प्रोग्राम ऑल इज वेल में, जिसे सपोर्ट किया है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு ரேடியோ மாணவ் ரச்னா 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी. मानवता की राह पर आज मैं जिनके साथ चलने वाली हूँ वो हैं धीरज कुमार चौबे, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गोकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद. ये खास कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जिन्हें मैं कहती हूँ अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी. अनसंग हीरोज इसलिए क्योंकि ये हीरोज हैं, लेकिन इनकी जो कहानी है वो कोई भी नहीं गा रहा है, और इसीलिए ये बहुत खूबसूरत मानवता का काम कर रहे हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट काफी जरूरी है. सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से पूरी टीम हमारे पूरे फरीदाबाद शहर में अलग अलग एरियाज में फंक्शन कर रही है और ये क्या करते हैं. लेकिन इन सारी चीजों के लिए हम सबसे पहले स्वागत करेंगे धीरज कुमार चौबे जी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में.
1: थैंक यू सो मच मैम.
0: धीरज, आप मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के. मुझे बताइए गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब कभी भी किसी एनजीओ की शुरुआत की बात होती है तो हमेशा हमने देखा है कि उसके पीछे कोई एक कहानी जरूर होती है कि क्या चीज ऐसी आपके दिल को छुई कि आपको लगा कि आइंदा से मैं इस चीज में काम करूंगा, या मैं इस समाज के इस कुरीति को कम करूंगा, दूर करूंगा, या मैं समाज के इस वर्ग के लिए काम करूंगा.
1: सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ये जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एज ए डॉग लवर जब मैं किसी संस्था के पास जाता था स्ट्रे डॉग को ट्रीट कराने के लिए, क्योंकि जिन डॉग्स को मैं फीड कराता था और उन्हें कभी बीमार हुए तो मैं लेके जाता था
0: जी,
1: तो मैं संस्थाओं में देखता था कि जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग हैं
0: जी,
1: जो डॉग्स को जैसे तैसे करके लेकर आए अपने कन्वेंस से
0: जी,
1: उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कंटिन्यू हफ्ते 10 दिन. उन सबसे बड़ी जो समस्या आती थी मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों के लिए वो बोर्डिंग की आती थी, क्योंकि वो नॉन अफोर्डेबल थे
0: जी,
1: और संस्थाएं उनको एक्सेप्ट करने में उनको रखने में कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड नहीं थे
0: जी.
1: और मेरे सामने में कई ऐसे एनिमल्स डेथ कर गए जो डॉग लवर्स को मैं बड़ा उदास देखता था, वो रो करके भी जाते थे
0: जी.
1: तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग शुरू करें
0: जी,
1: जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 100% निःशुल्क बोर्डिंग हो, 100% उनको फ्री फूड मिले, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज मिले. इसके लिए हमने कुछ डॉग लवर से कांटेक्ट किया और कुछ महिलाओं ने तैयार हुई जो जेन्युइन डॉग लवर हैं
0: जी,
1: जो हमारी संस्था की जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर रेखा जेटली
0: जी,
1: वो एमरल कन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं
0: जी.
1: उनका और बाकी सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों ने इस शुरुआती में उसमें अपना योगदान दिया, साथ दिया. फिर हम साथ मिलकर एक संस्था बनाए जिसका नाम है गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद.
0: और धीरे जिसकी शुरुआत कौन से साल में हुई?
1: इसकी शुरुआत 2024 में हुई है
0: जी
1: जी. तो उसके बाद से कंटिन्यूस हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड और फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं
0: जी,
1: जो हमारा महीने का 70 to 110 के बीच में जो घायल बीमार डॉग्स, जो बोर्डिंग, जो नॉन अफोर्डेबल डॉग लवर्स हैं
0: जी,
1: उनके लिए हम फ्री बोर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं फ्री में. अगर मान लीजिए 10 दिन तक अगर कोई बीमार है डॉग्स
0: जी,
1: उसको अगर कंटिन्यू डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, तो हमने 2-3 फरीदाबाद के पेट जो डॉग डॉक्टर हैं उनसे हमने टाई अप किया है कि जेन्युइन रेट पे. कई सारी दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, दवाइयाँ हम खरीद के आपको देंगे, अगर आपका 500 रुपये वन टाइम विजिट पे जो चार्जेस है वो 200 रुपये हमसे लीजिए
0: जी,
1: दवाइयाँ हम खरीद के लाएंगे सस्ते पे अच्छी क्वालिटी के, और आप उसको दीजिए, ट्रीट कीजिए. तो सारे डॉक्टर तो नहीं, कुछ डॉक्टर एग्री हुए,
0: पहल में आपके साथ
1: साथ जुड़े, और वो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ. वो आज भी कभी हमसे इरिटेट नहीं हुए, कभी हमसे चिड़चिड़े नहीं होते, कभी पैसों के लिए नहीं वो क्या जब वो किया, और आज वो निरंतर साथ दे रहे हैं. अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो एक इंसानियत दिखाते हैं. मैं अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ, डॉक्टर सुनील पेडिक्योर क्लिनिक, और एक है कैपिटल वेस्ट डॉक्टर राहुल पांडे
0: जी.
1: इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, अगर आज मेरी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, या फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस और फ्री ऑफ कम से कम पैसों में ट्रीटमेंट अगर हम करा पा रहे हैं, तो इन दो डॉक्टरों का बहुत योगदान है.
0: देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूँ गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद की, सो इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि जब कभी भी हम किसी भी एनिमल के रेस्क्यू की बात करते हैं, मान लीजिए कि आप सड़क पर खड़े हैं और आपने देखा कि आपकी गली का कोई एक कुत्ता है जो कि शायद बीमार है, या कोई ऐसा जानवर है जिसे कोई परेशानी है, अब आपकी ममता जागी, आपको महसूस हुआ, आपको लगा कि मैं इंसान हूँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब मदद करने में अगर आपको कोई कहे कि जी मैं पहले आने का आपसे 2-4-5 हज़ार रुपया लूँगा और फिर उसे ठीक करने का आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भावना जागेगी कि भाई इतना पैसा मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कैसे दे सकता हूँ, या मैं अगर गरीब तबके का हूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ। सो क्या किसी भी संस्था के पास बिना पैसे दिए किसी भी प्रकार की मदद करने का प्रोविजन नहीं है? यही सोच धीरज कुमार चौबे जी को बहुत महसूस हुई और उन्होंने इस खास गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद का गठन किया। सो ये तो कहानी थी कि गठन कैसे हुआ, लेकिन अब पूरे फरीदाबाद में इतने सारे डॉग्स हैं और इन डॉग्स को वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे ये बोर्डिंग की फैसिलिटी दे पा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लेने वाले हैं छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना। आप जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गौकुटी सेवा समिति फरीदाबाद के। वैसे मुझे कहना चाहिए कि होलसोल रख रखाव का काम तो धीरज जी करते हैं, क्योंकि हर शायद एनिमल से ये प्यार बहुत करते हैं। अगर मैं पशु रक्षण की बात करूं धीरज, तो एक लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं, 2024 से तो आपने फॉर्मली एक एनजीओ बनाकर और इस तरीके का काम शुरू किया, लेकिन पशु रक्षण का काम एक लंबे समय से आप कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहूंगी।
1: देखिए, जो मेरा रख रखाव है, जो तरीका है, अभी बहुत हाईटेक तरीका तो नहीं है, बट एक सिंपल है। जैसे कोई डॉग एक्सीडेंट हुआ, उसकी कमर टूट गई या उसका पैर टूट गया, उसका हाईटेक रख रखाव तो हो नहीं सकता है। सड़क से तो बेहतर है कि उसको हम सर्जरी कराएं या पट्टी कराएं, फिर उसको एक अच्छी केयर दें, टाइम से खाना दें, टाइम से दवाइयां दें, जब तक वो रिकवर नहीं होता। क्योंकि जल्दी इसलिए भी होती है कि जल्दी से ठीक करके वापस उसके लोकेशन पे छोड़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो उनके साथ के डॉग्स ही उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अगर कोई डॉग्स को 2-3 महीने आपने अपने सेल्टर में रख लिया, आपकी कमियों की वजह से आपने टाइम से दवाई नहीं दिया, टाइम से देख रेख नहीं किया, या फिर उसकी पट्टी सर्जरी सही से नहीं हुई
0: जी,
1: तो उनके साथ वाले डॉग्स ही उनको फिर नेगलेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते
0: जी।
1: तो वहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है कि फिर अब इस डॉग को परमानेंट सेल्टर रखा जाए, और सेल्टर में जो बीमार घायल डॉग्स आते हैं उनसे इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है,
0: डर रहता है।
1: तो अभी जैसे भी हम रख रखाव जो है वो सिंपल है और बहुत अच्छा है, जितना बेहतर कर सकता हूँ मैं उतना मैं बेहतर किया हुआ है
0: जी। सो देखिए भाई, अगर आपके पास कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं या आप कहीं पर रहते हैं फरीदाबाद शहर में, और ऐसे इस हमारे शहर में कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ तो ये इतनी बार ऐसा होता है कि लोग मुझे फ़ोन करके अक्सर ये कहते हैं कि मैम यहाँ पर एक इस तरीके की पशु है या कोई डॉग है, इसे रेस्क्यू करवाना है, और मैं ऐसी शायद एक दिन में 4 या 5 कॉल्स ज़रूर लेती हूँ। इट्स वेरी ऑब्वियस, बट होता क्या है कि लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हम ऐसे में क्या करें। सो क्या करें का जवाब ये होता है कि हमारे पास अलग अलग किस्म के डॉग शेल्टर्स हैं, जो हमारे पूरे फरीदाबाद शहर में अलग अलग एनजीओस के साथ रजिस्टर्ड हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से एनजीओस के साथ ऑपरेट करने वाले डॉग शेल्टर्स जो हैं, इन शेल्टर्स या बोर्डिंग हाउसेस के एक चार्ज होता है, एक मिनिमम पैसा आपको देना पड़ता है। बट अगर आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में जुड़ना चाहते हैं, सो आप और कुछ नहीं, गौकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार के डॉग को

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गोखुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। धीरज, अब अगला सवाल आपसे ये कि हमारा रेडियो जो है ये दिल्ली NCR में सुना जाता है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कहाँ कहाँ से डॉग्स को रेस्क्यू करवा सकते हैं। सो क्या आप पूरे फरीदाबाद में ये काम करते हैं, और अगर हाँ तो प्रोसीजर क्या होता है? क्या कोई आपको फोन करे? अगर फोन करे उसके बाद वो क्या दे आपको लोकेशन डिटेल्स, किस प्रकार से कैसे रेस्क्यू करते हैं, कैसे वापस पहुंचाते हैं, और कोई मिनिमम चार्जेस नहीं है, तो ये ऑपरेशन होता कैसे है?
1: जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये मुझे लगता है ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये आम जनता का जो डॉग लवर हैं, जो नहीं भी हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है संस्थाओं की,

0: जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी संस्था जो है वो नीम का विलेज के पास है
1: जी,
0: नीम का तिगांव मास्टर रोड पे है
1: जी,
0: सेक्टर 72 पड़ेगा। हम बदरपुर से लेकर बल्लभगढ़ तक हमारा एरिया है
1: जी।
0: हम फ्री होते हैं, कहीं से भी कॉल आए
1: जी
0: हम उसको रेस्क्यू करते ही करते हैं
1: जी।
0: आपको एक चीज़ और मैं बीच में समझाना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग लवर हैं वो अफोर्डेबल हैं, और जो अफोर्डेबल डॉग लवर्स हैं वो प्राइवेट, वो दिखाते भी प्राइवेट हैं, और प्राइवेट पेड बोर्डिंग में, डे बोर्डिंग में वो रखरखाव भी करते हैं
1: जी।
0: ज़्यादातर संस्थाएं जो हैं वो ये करती हैं कि सभी जैसे एक मिडिल क्लास लोअर क्लास कोई अगर है, मान लीजिए कोई ऑफिस जा रहा है और एक जेन्युइन डॉग लवर है, इंसानियत के नाते वो कई संस्थाओं को कॉल किया, रुक करके एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है डॉग्स, तो संस्थाएं नकार देती हैं। इसका रीज़न ये है कि संस्थाओं के पास लिमिटेड स्पेस है
1: जी,
0: और चुनिंदा लोगों को आप एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों के अगर रेफरेंस से या सोर्सेज से अगर वहाँ उनके तक बात पहुँचती है
1: जी,
0: तो वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं
1: जी।
0: तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमारी जो संस्था है वो हमारे पास बिल्कुल नॉन अफोर्डेबल लोग
1: जी
0: आते हैं। इसमें फरीदाबाद की कई सारी संस्थाएं हैं जिनके पास वो ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, जब बोर्डिंग की बात आती है तो वो लोग मेरा नंबर देते हैं, और मैं वेरी हैप्पी कि वो लोग मुझे इस लायक समझते हैं। और कई बार उन संस्थाओं में सर्जरी होती है और जब तक वो ठीक होते हैं वो हमारे
1: फ्री,
0: जो रिकवरी का टाइम है उनका हमारे शेल्टर पे होता है
1: जी।
0: तो ज़्यादातर हमारे पास जो कॉल्स आते हैं वो नॉन अफोर्डेबल लोगों के आते हैं, इसलिए मैं उनका कॉल सबसे पहले प्रेफर करता हूँ, मैं उनका कॉल पहले लेता हूँ
1: जी,
0: क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग लवर हैं फरीदाबाद ही नहीं पूरे इंडिया में, वो लोग पेट जो डे बोर्डिंग है वहीं पे प्रेफर करते हैं।
1: ओब्वियसली
0: जी।
1: सो अगर देखिए आपका पेट है तो आपको किसी संस्था के पास जाने की जरूरत नहीं है,
0: नहीं मैं
1: क्योंकि वो जो संस्था है वो तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम कर रही है। अब मैं अगर स्ट्रीट डॉग की बात करती हूँ, और आप बात कर रहे हैं कि हम जब स्ट्रीट डॉग को उठाते हैं सो उसका धीरज प्रोसीजर क्या होता है। मान लीजिए आपने, आपको किसी ने कॉल किया
0: जी,
1: सो कॉल करने के बाद कितने समय में आप उस डॉग को रेस्क्यू करवा लेते हैं, और फिर कितने दिन लगते हैं, और फिर क्या डॉग को आप वापस उसी के हैबिटेट पर छोड़ते हैं?
0: जी मैम, अगर हमें कोई कॉल करता है तो सबसे पहले हम उनसे लोकेशन और एक वीडियो मांगते हैं, वीडियो नहीं है तो फोटो। रीज़न क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कुछ ऐसे भी डॉग लवर नहीं है बट उनको लगता है कि यार ये डॉग बड़ा भौंक रहा है, बड़ा काट रहा है, तो फिर इसलिए भी कॉल कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले लोकेशन और एक वीडियो चाहिए होता है ताकि हम देख भी पाते हैं कि अगर हम इमरजेंसी है, काफ़ी इमरजेंसी है, तो फटाफट क्विकली निकल जाए। अगर मान लीजिए तो किसी को मैगट्स बोंड है और वो डॉग वहीं पर रहता है, हम पूरा पता कर लेते हैं कि अगर डॉग वहीं का है वहीं रहता है, तो हम एक घंटे बाद में भी, अब जैसे मैं किसी डॉक्टर के यहाँ ट्रीट करा रहा हूँ, किसी का कॉल आया कि काफ़ी मैगट्स बोंड वाला एक डॉग है जी, ये कहीं से आ गया है, तो ऐसे केसेस में फिर हम लोकेशन लेते ही, हम वीडियो भेजे ना भेजे करंट लोकेशन मंगाते हैं और प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और ऐसे जो डॉग्स हैं, कुछ बीमारियां हैं, अब जैसे मैगट्स बोंड है, अगर छोटा मैगट्स बोंड है 15 दिन में वो हील हो जाता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहे हैं, टाइमली दवाइयाँ दे रहे हैं, तो वो 10 से 15 दिन में रिकवर हो जाता है। अगर वही कोई फ्रैक्चर है, सपोज की जो उसकी सर्जरी हुई है, तो 1 मंथ लग जाता है। अगर किसी डॉग को माइनर फ्रैक्चर है, अगर हमें पट्टी प्लास्टर या फाइबर कास्ट प्लास्टर अगर हमने कराया है, तो वो मुश्किल से 20 दिन में रिकवर हो जाता है। तो हमें भी, जो मैं पहले भी बताया आपको कि जल्दी होती है कि रिकवर होते ही इनको वापस जगह पे छोड़ें
1: जी।
0: मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी समय लग गया, मैं भी गलतियों से सीखा
1: जी,
0: कि जब भी हम स्ट्रे डॉग उठाते हैं हम डॉग को फ्रेश फूड देते हैं। डॉग्स जब बाहर, स्ट्रे डॉग जब बाहर खाता है, कई बार वो इन्फेक्टेड चीज़ें खाता है, तो उसकी डिवर्मिंग ऑटोमेटिक हो जाती है
1: जी,
0: ठीक है। जब हम डॉग्स को उठा के ले जाके एक लंबे समय तक रखते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीने, तो डॉग्स को हम डिवर्मिंग नहीं कराते हैं टाइम से
1: जी।
0: कई बार डॉग बड़ा कमज़ोर हो जाता था, तो मेरी डॉक्टर से शिकायत होती थी कि सर मैं क्या करूँ, इतना अच्छा खाना दे रहा हूँ, इतनी अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी का खाना दे रहा हूँ, अच्छा खाना प्रोवाइड करा रहा हूँ, विटामिन प्रोटीन सब इनको मिल रहा है, दवाइयाँ भी अच्छी मिल रही हैं। फिर तो बड़े एक डॉक्टर समझाए हमें कि आप इनकी डिवर्मिंग टाइम से करो, जैसे आपके आते हैं इनकी डिवर्मिंग टाइम से करो। तो कई बार ऐसे भी होता है कि संस्थाओं में हमने भेज दिया
1: जी,
0: उसकी अच्छे से केयर नहीं हो पाई, क्योंकि स्ट्रे डॉग के लिए चाहे कोई भी संस्था हो, जो संस्थाएं दावा करती हैं वो एक्चुअल में होता नहीं है धरातल पे
1: जी।
0: एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, धरातल पे, जैसे आप फरीदाबाद में रहती हैं, हर संस्थाएं एक दावा करती है कि मेरे पास 24 घंटा ओपीडी सर्विसेज हैं
1: जी,
0: लेकिन सच्चाई यह है कि 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अगर कोई कुत्ता एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, अगर आप खुद से ही हिम्मत करके अपनी गाड़ी में लेकर गए किसी संस्था के यहाँ, तो सच्चाई यह है कि उनके पास एक वेल ट्रेंड पैरावेट भी नहीं होता
1: जी।
0: ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं कागजी बात नहीं, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो बेजुबान है
1: जी।
0: वो आपसे आकर के नहीं बताएंगे कि देखो हमारे बारे में ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं
1: जी।
0: तो ऐसे में मैं फिर से उन डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो 2 बजे रात को भी हमारे लिए उठ के आ जाते हैं
1: जी।
0: उनको पता है मैं, और ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, कई बार पैसे देता भी नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब अभी लेके नहीं आया, नहीं आया, और वो अपनी इंसानियत के नाते वो आते भी हैं, उनको ट्रीट भी करते हैं। मेरा मानना है अगर महीने में अगर 10 भी ऐसे डॉग का हमने जान बचा लिया तो मेरे संस्था खोलने का या संस्था चलाने मेरा सार्थक हो गया।
1: सो भाई देखिए, अगर आप इस पूरी बातों को सुन रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये एक पूरी प्रोसेस है तो मेटिक्यूलस, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कितनी इमरजेंसी है, साथ के साथ कहाँ पहुँचना है, क्या उसके लिए हमारे पास वेट और साथ के साथ रेस्क्यू करने वाले लोग और व्हीकल अवेलेबल है या नहीं, और ये सारी चीज़ें अगर हो तो उसके बाद पहुँचने का समय। सो कई बार आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं हमने संस्था में कॉल किया लेकिन वो समय पर आए नहीं। सो ये भी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं आई एम श्योर जो कि अक्सर ये फेस करते होंगे। पूछूंगी उसके बारे में, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो मेंबर ट्रस्टी हैं गोकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद से। धीरज, अब एक बड़ा अहम सवाल हमारे, अगर हम पूरे फरीदाबाद शहर में ही देखें तो मैं ये देखूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पशुओं से प्यार है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नफरत है, उनकी गली में अगर कोई कुत्ता है या डॉग है तो वो उसको आते जाते कोशिश करेंगे कि कभी खाना दे दें। कई बार तो बहुत सारे लोग हैं जो बिस्किट्स भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, चावल ब्रेड सुबह शाम का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम इन पेट्स को रखने की या इनके रख रखाव की बात करते हैं तो अपने आप में ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई ये संस्था का काम है क्योंकि इसके लिए आपने एक जिम्मेदारी लिया, आपने एक संस्था चलाई है। सो क्या एक आम नागरिक भी इसमें कुछ मदद कर सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, क्या भूमिका निभा सकता है एक आम नागरिक?
1: जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं एक चीज बताऊं कि आजकल डॉग का जो समस्या है वो एक्चुअली समस्या है नहीं, हमें थोड़ा सा अगर हम समझदारी दिखाएं तो वो समस्या हम उसी जगह ख़त्म कर सकते हैं।
0: जी,
1: जैसे मान लीजिए किसी सोसाइटी में डॉग्स हैं, RWA बायोसेशन की गाइडलाइंस है।
0: जी,
1: RWA बायोसेशन की गाइडलाइंस है कि इन साइड सोसाइटी जितने भी डॉग्स हैं उनको टाइम से वैक्सीनेट कराना, उनके लिए हर 100 से 125 मीटर पे एक फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित करना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके उनके निगरानी में उनके साथ एक उसको वहाँ पे फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित करना ताकि कोई भी रेसिडेंट खाना उनको दे सके।
0: जी,
1: इससे ये होगा कि जो फीडर हैं कहीं भी फीड करा देते हैं, कोई अपने घर के बाहर फीड करा देता है, ये ना हो। क्योंकि कई बार जब एज ए डॉग लवर मैं भी अगर अपने घर के सामने खाना खिला रहा हूँ तो कुछ डॉग अटेंडेंसी दिखाने के चक्कर में बेशक वो बाइट करे ना करे पर बाइट करने के लिए भागता है
0: जी
1: पीछे, ये सच्चाई है। अब समझना ये पड़ेगा कि इस चीज़ को लेकर के RWA के जो मेंबर्स हैं वो नॉलेज ही नहीं है उन्हें, और अगर नॉलेज है तो करना नहीं चाहते, वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स का कारण है। दूसरी बात, अगर हम एज ए डॉग लवर एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम किसी डॉग्स का हेल्प करना चाहते हैं तो संस्था हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट्स गवर्नमेंट के तरफ से टेंडर दिया जाता है जिसको ABC यूनिट्स बोलते हैं, नसबंदी सेंटर, स्टेलाइजेशन सेंटर। तो एक प्रोसेस है उसका छोटा सा कि आप MCF में कॉल करें, वो आपको कॉल फॉरवर्ड करेंगे यहाँ, या अगर आप कोई RW दे रहा है तो एक आपको लिखित में देना पड़ेगा डिटेल्स कि इतने डॉग्स हमारे हैं, फीडर के साथ मिल करके उसको उठा करके नसबंदी करवा दिया जाए ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। और जब डॉग की सर्जरी हो जाती है तो उनका एग्रेशन कम हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि सोसाइटियों में या कहीं भी कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, 4-6 कुत्ते लग गए पीछे, कई बार बाइट भी कर लिया, कई बार वो गिर भी जाते हैं, कई बार बड़ी हादसाएँ भी हुई हैं। बजाय इसके सॉल्यूशन के हम लड़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और माफ़ कीजिएगा कुछ लोग मेरे बात से नाराज़ होंगे, कुछ डॉग्स लवर जो हैं वो सेल्फ एजुकेट नहीं है।
0: जी,
1: उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं गए गाली का जो बदला है वो गाली से निकल जाएगा, किसी ने डॉग्स को हिट किया है तो हम भी उसको फिजिकली असॉल्ट कर दें, हिट कर दें तो जस्टिस मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप जब काफ़ी डीपली जाएंगी तो देखेंगे कि अगर किसी को आप जा करके कोई डॉग किसी के घर के में बच्चे को डॉग बाइट कर लिया, आप जाकर उसको समझाने के बजाय उसको ये चीज़ें बताने के बजाय एज ए संस्था एज ए डॉग लवर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है, एक इंसानियत के नाते भी, एक संस्था चलाने के नाते भी, कि हम उन्हें चीज़ समझाएँ कि इस किसी न किसी कमी की वजह से काटा है, हो सकता है कि आपके बच्चे उसे छेड़े हों या ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के डेट में लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल का कैमरा।
0: जी,
1: क्योंकि कैमरा ऑन होते ही लोग अपना आपा खो देते हैं, उनको ये समझ ही नहीं है कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, हमारे सामने कितने उम्र के लोग खड़े हैं। ठीक है, देखो अगर कोई एक कुत्ते को हिट करेगा वापस तो हम नहीं ला सकते ना, पर बजाय उसको समझाने के, बजाय उसके समस्या के समाधान के, हम अगर वहाँ लड़ाई कर लें तो जरा इमेजिन कीजिए कि वहाँ अगर 25 लोग या 50 लोग हों तो वो तो एक हेटर बन गए ना। लेकिन वैसे ही अगर आप जा करके आप अगर उनको समझाते हैं, वो चीज़ बताते हैं, और एज ए संस्था के संचालक आप पूरे फरीदाबाद में, मैं आपके तो पूरे दिल्ली एनसीआर में सुना जाता है, मेरे पास 28 ऐसे डॉग थे, अभी 14 डॉग मेरे पास हैं जो सोसाइटियों के डॉग्स हैं, जो डॉग सच में वो काटते हैं,
0: बाकी
1: दौड़ते हैं और वो कई बच्चों को काट चुके हैं। मैं प्रूफ उनसे लेता हूं पहले और उन बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने संस्था में 1 महीने 2 महीने रखता हूं। और मैं ट्रेंड कैसे कराता हूं भावना जी, आपको बड़ी हैरानी होगी, मेरी 3 बेटियां हैं, जो मेरी बड़ी बेटी है 7 साल की है, मैं उन 3 बच्चों से फीड करवाता हूं उसे
0: जी।
1: और मैं इतना फ्रेंडली करके भेजता हूं कि अगली बार मैं जाऊं तो जिसने मेरे को भेजा है ना, वो ये ना बोले कि इसे रिलोकेट कर दो, बल्कि उसे देखे और खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। तो होता क्या है कि जब आप कुछ अच्छी पहल नहीं करोगे आप, तो जो डॉग हेटर हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और आज के डेट में सबसे बड़ा कारण है डॉग लवर का ये इस तरह की हरकतें।
0: जी
1: जी।
0: सो दोस्तों देखिए भाई, एक तरफ तो मैं कहती हूँ कि कठिन क्यों है इन सबको संभालना, अपने आप में देखिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एक और बड़ी समस्या है, और वो समस्या है कि आजकल 2 पार्टियां बढ़ गई हैं, एक पार्टी है डॉग लवर्स की और दूसरी पार्टी हो गई है डॉग हेटर्स की। अब हेटर्स के बिल्कुल जायज बात है भाई, उनके परिवार के सदस्यों को या उनके परिवार के बच्चों को या किसी को भी अगर कोई खुदा ना खासा डॉग काट लेता है तो उनका नाराज होना जायज है। और जिस तरीके से हम बहुत सारी आजकल इंसिडेंट्स देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे कुत्ते मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं, सो ऐसी वीडियोज देखकर ऑटोमेटिकली बिल्कुल वाजिब है कि आपको भी ऐसा महसूस हो। लेकिन इस सब के पीछे फिर वही बात कि हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सो शायद कई बार ऐसा जरूरी है कि आम नागरिक के रूप में हमें बेसिक प्रॉब्लम के पीछे की जानकारी लेना जरूरी है और सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, ना कि सिर्फ 2 कैटेगरीज में बट के झगड़ा करना। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। धीरज जी, आप मुझे ये बताइए, आपने जब से इस एनजीओ का गठन किया और जब से आप बहुत सारे डॉग्स को इस तरीके से प्यार करते आए हैं, ट्रीट करते आए हैं, चैलेंज क्या आता है, क्या लगता है, क्या परेशानी है, क्या आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लगता है एक्सेप्टेंस की कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि अब आज का जो समाज है उसमें हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को प्यार भी कर रहे हैं, जानवरों को प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं। अब आप देखिए ना, सड़क पर आप जा रहे हैं, आप बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और सडनली अगर आपकी गाड़ी के सामने से कोई एक डॉग निकल कर आता है और कहीं क्रॉस करता है तो आपको स्वाभाविक है आपको नाराजगी होगी, आप ब्रेक लगाएंगे। कई बार आपकी गाड़ी में आपको ऐसा भी होता है कि आप पीछे वाली गाड़ी आकर आपसे टकरा जाती है, सो बहुत सारी चीजें हैं
1: जी। मुझे लगता है अब तक का ये सबसे अच्छा सवाल है
0: जी।
1: देखिए, चैलेंजेस कुछ नहीं आती हैं
0: जी।
1: एक तो सबसे बड़ा है, आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है,
0: और
1: किसी भी समस्या का जो समाधान है
0: जी,
1: वो अगर आप सरल तरीके से करने चलें तो बहुत आसान है
0: जी।
1: मैं आपको बताऊं, पूरे फरीदाबाद में आप शायद पता है नहीं, मुझे नहीं पता, डॉग से की 3 बीमारियां जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं, जिसमें 2 बीमारियां, एक तो इंसानों के लिए जानलेवा है जिसको हम रेबीज बोलते हैं
0: जी,
1: जो रेबीज वाले डॉग हैं वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनका सलाइवा से लेकर के। किसी भी संस्था के पास 10x10 के एक कमरे तक नहीं है, क्योंकि रेबीज हुआ तो मरना ही मरना है, लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज ही नहीं है उसका। तो हर संस्था को चाहिए कि एक हम कमरा ऐसा बना के रखें कि कहीं भी रेबीज का डॉग हो उसको इमीजिएटली उठा करके उसको आइसोलेट किया जाए, ताकि इंसान और कुत्तों के साथ साथ इंसानों को भी हार्म न पहुंचे। दूसरा, कभी भी हम डॉग्स के लिए जाते हैं कहीं किसी भी तरह की हेल्प करने, तो डॉग लवर से मेरी व्यक्तिगत उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने एग्रेशन को कम करके जाएं, सद्बुद्धि का प्रयोग करें, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि गाली का समाधान गाली नहीं हो सकता,
0: ठीक है।
1: और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है जो हेटर की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो एबीसी प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट ने जो टेंडर देता है और जो भी प्राइवेट संस्थाएं लेती हैं
0: जी,
1: वो अपना काम ठीक से नहीं करती हैं। हर 5-3 साल पे टेंडर बदल जाता है, नए लोग आ जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहता है, 500 किया, 5000 बताया, दिखाया। तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि आपके पास डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है, आपके पास हर वो सुविधाएं हैं, आपके पास CSR है, प्राइवेट बड़े अच्छे अच्छे डोनर्स हैं, आपको अपनी इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए और उसी को दिखाते हुए कम से कम अच्छा काम करना चाहिए, ताकि एक शहर में आप मिसाल बन सकें। ये मेरा उन सभी संस्थाओं से रिक्वेस्ट है जो अभी हैं और जिन्हें आगे भी टेंडर मिलने वाला है, अगर वो आपके माध्यम से ये मेरी बात सुने तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे ये आग्रह करूँगा कि इस प्रोग्राम को आप ईमानदारी से कीजिए। मुझे लगता है 50% पूरे फरीदाबाद की समस्या यहीं पर समाधान है।
0: धीरज जी, वाकई सही कहा आपने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं, और अगर हम सॉल्यूशंस पर काम करें तो डेफिनेटली हम ये अचीव कर सकते हैं कि ये जितनी प्रॉब्लम्स हमको सड़कों पर नजर आती हैं ये काफी हद तक कम हो जाएगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद से। धीरज जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं यही आपसे, आपके माध्यम से फरीदाबाद वालों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं भी आप बीमार घायल ऐसा कोई जानवर देखते हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर, कई बार शॉर्ट सर्किट भी लग जाता है बंदरों को, तो मेरे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल बोर्डिंग है
0: जी।
1: आप रेस्क्यू करा सकते हैं। आप अगर अफोर्डेबल है, अपने आपका कोई डॉक्टर है, आप वहाँ ट्रीट कराकर भी हमारे यहाँ फ्री में रखाव है, खाना उनका है, लाना ले जाना है, कोई चार्ज ना आज तक हमने किसी से किया है, ना मांगा है, ना परमात्मा करेगी आगे हम मांगे किसी से
0: जी।
1: मेरी यही सेवा है। और अभी एक हमने नया प्रोग्राम शुरू किया है टेको वेदांता ग्रुप से
0: जी,
1: जो फ्री ऑफ कॉस्ट एस्टरलाइजेशन का। अगर आपके गलियों में, आपके सोसाइटीज़ में डॉग हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हेल्प कीजिए उनको रेस्क्यू कराने में। हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टरलाइज कराकर वापस ठीक होने के बाद आपके यहाँ लोकेशन पे छोड़ देंगे।
0: क्या बात है। सो भाई देखिए दोस्तों, अगर आपको आज तक लगता था कि कौन सी ऐसी संस्था है जो आपकी गली के जितने भी डॉग्स हैं उन्हें स्टरलाइज कर देगी समय पर, अगर मान लीजिए कि उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उन्हें ठीक करके वापस आपके ही लोकेशन पर छोड़ देगी, तो अब आपके पास एक ऐसी संस्था है जो ये सारा काम करती है, और वो है गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद। धीरज जी से आज बहुत सारी बात हुई, तहे दिल से धन्यवाद धीरज जी, आज आप आए और आपने अपनी इतनी बेहतरीन बातें और जानकारी गौ कुटीर सेवा समिति के बारे में हमसे साझा की।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगे आपके साथ, और मानवता की राह पर हम चलेंगे एक और ऐसी ही मानवता भरे काम करने वाली संस्था के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: मैं जिंदगी

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna, 107.8 FM. Feel good, feel
1: like. Hello, friends, and welcome to Radio Manav Rachna, 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना. Radio Manav Rachna, 107.8 FM पर ये जो सुहानी सी शाम होती है ना, ये शाम वक्त होता है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट का. आप सभी को पता है एक लंबे समय से आरजे भावना आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आती है और इसमें आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती है जो सशक्त हैं, जो सशक्तिकरण फैला रही हैं और जिन्हें मैं ये कहती हूँ सशक्तिकरण का अथक एग्जाम्पल. आज इस कड़ी में हम जिनसे मिलने वाले हैं वो ना सिर्फ एक सीजन्ड प्रोफेशनल है लेकिन एक ऐसी महिला है जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है. क्योंकि हम आज के जमाने में ऐसे लोग ढूंढते हैं जिन्हें हम कहते हैं बैलेंस्ड, जो पुरानी पीढ़ी को साथ लेकर चल रहे हों और इस पीढ़ी में जीते हुए आने वाली पीढ़ी को गाइडेंस दे रहे हों. तृप्ति सिंह जी इसका अथक एग्जाम्पल है. तृप्ति सिंह जी फाउंडर है गठजोड़ की, साथ के साथ एक बहुत ही जानी मानी टेडेक्स स्पीकर है, इवेंट क्यूरेटर है और इनका एक बहुत ही खास ग्रुप है. और मुझे नहीं पता अगर आप इस ग्रुप के अंदर एक हिस्सा रखते हैं या आप इस ग्रुप का हिस्सा है. ग्रुप है फाउंडर ऑफ गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन. भाई ये एक फेसबुक का ग्रुप है लेकिन बहुत ही फेमस ग्रुप है. सो अलग अलग किस्म की चीजें ये करती हैं लेकिन इनकी एक खास खूबी है कि ये पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में बड़ी खूबसूरती से लेकर चल रही हैं. तृप्ति जी आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में.
2: थैंक यू सो मच भावना एंड थैंक यू टू ऑल दी लिसनर्स. एंड भावना आपने मुझे समय दिया आपके इस शो में हिस्सा बनने के लिए एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट.
1: तृप्ति जी इस कार्यक्रम का नाम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट और वी से मेरा हमेशा से मतलब होता है महिलाएं एक साथ आ जाएं एज वी. सो मैं हर महिला से एक सवाल पूछती हूँ और वो सवाल होता है कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट क्या है. सो क्या कहेंगे आप?
2: मेरे हिसाब से जब आपके शब्दों को इम्पोर्टेंस मिलती है, सपोज आप एक कमरे में हैं और आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपके शब्दों को सुनने के लिए लोग वेट करें, उसको महत्व दें और उसको वैल्यू करें कि आप बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा, वो वुमेन एम्पावरमेंट है मेरे लिए. देखिए सब आजकल कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो जरूरी भी है बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के साथ साथ में आप जब बोल रहे हैं तो आपकी उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए, आपके शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए. मेरे लिए वो शब्द अगर वैल्यूबल है तो आप एम्पावर्ड हैं.
1: वाकई देखिए महिला सशक्तिकरण की जो डेफिनेशन है ना वो हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है. सो शायद जैसे तृप्ति जी ने कहा किसी के लिए ये पैसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए ये शायद सिर्फ फ्रीडम है बट बहुत सारे लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन अलग मायने रखती है. सो आप क्या सोचती हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में मुझे जरूर बता सकती हैं 8010781078 पर. फिलहाल वक्त है एक प्यारे से गाने का. आप जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो 107.8 FM के साथ. फील गुड फील लाइक.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं तृप्ति सिंह जी से, जो फाउंडर हैं गठजोड़ की, टेडेक स्पीकर हैं, इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, अब अगला सवाल, आज के जमाने की मैं अगर बात करूं तो महिलाएं काफी बदल रही हैं, और धीरे धीरे अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति लोगों का माइंडसेट थोड़ा थोड़ा तो बदल रहा है, पर अगर मैं बात करूं इसके कंप्लीट बदलाव की, सो महिलाओं को अगर सशक्तिकरण पाना है समाज में तो उसके लिए क्या एक ऐसी चीज है जो उन्हें बदलने की जरूरत है?
1: देखो, जैसे एक इंग्लिश में कहावत है ना, द चेंज बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हम घर में अपने महिलाओं की वैल्यू करना शुरू करेंगे और घर में अपने घर की बहन बेटियों को, बहुओं को ऐसा मौका देंगे कि एक रोल जो होता है ना, रोल प्ले जैसे करते हैं, उनको वो जिम्मेदारी देंगे और भरोसा रखेंगे कि वो जिम्मेदारी निभा सकती है, वो विश्वास, तो उनको वो कॉन्फिडेंस घर से ही आना शुरू होगा। ठीक है, बाहर आउटर वर्ल्ड में वो तभी चीजें फेस कर पाएंगी जब घर पे हम उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेके और उनको ये महत्व जो है उनकी लाइफ का उनको समझाएं, तो आई एम श्योर whenever they'll face the outer world, they'll position themselves in a manner के वो चीजें कर सकती है, वो कॉन्फिडेंस है कि वो दुनिया को भी एक अलग तरह से फेस कर सकती है। तो कॉन्फिडेंस तो घर से देना ही शुरू करना पड़ेगा, और बदलाव जैसे मैंने बोला घर से ही शुरू होता है। चाहे आप अपने आप से शुरू करेंगे तभी आप आसपास के लोगों को बदलाव में लाना शुरू कर सकते हैं।
0: वाकई दोस्तों, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक सशक्त समाज हो, हम चाहते हैं कि सशक्तिकरण हर महिला का अधिकार बने, तो उसके लिए शायद शुरुआत हमारे घर से हो रही है। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी

0: यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं तृप्ति सिंह जी से। तृप्ति जी जो कि फाउंडर हैं गठजोड़ की, एक टेडेक्स स्पीकर हैं, की इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल और वो आपके गठजोड़ से है। आज भी आप अगर देखा जाए तो पूरे समाज को अपने कल्चर्स ट्रेडिशंस की बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश भी कर रही हैं और कुछ ऐसे रिवाज हैं जिन्हें आप संजोने की कोशिश कर रही हैं। सो किस प्रकार कर रही हैं ये काम?
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो रीति रिवाज हमको हमारे पूर्वजों ने दिए, हमारे माँ बाप ने, उनको उनके पेरेंट्स ने दिए, सो वी आर जस्ट द कस्टोडियन ऑफ दोज रिचुअल्स। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमें मिला है उनको एज सेव करके हम नेक्स्ट जनरेशन को दें। अगर हम उसको नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देंगे तो हम अपना रोल ढंग से नहीं प्ले कर रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा रिचुअल हो, चाहे आपके घर का कोई मेंबर घर से बाहर जा रहा हो कोई शुभ काम के लिए, तो उनको गुड़ और दही का एक निवाला देना जाने से पहले, सिंपल सा एग्जांपल है, चाहे वो हो, चाहे कोई बड़ा काम आप शुरू कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करनी हो या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी पूजा करनी हो। और ये हर फैमिली का, हर कम्युनिटी के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो जैसे शादी ब्याह के कोई रिचुअल्स हैं, तो हर रिचुअल के पीछे जो कहानी होती है, अगर हम उस कहानी को जान सकें, उसको शेयर कर सकें दूसरी जनरेशन के साथ में, आने वाली पीढ़ी के साथ में, तो उनको समझ में आएगा कि इस रिचुअल का मतलब क्यों है और ये क्यों किया जाता है। ऐसे ही तो कोई रिचुअल नहीं आ गया है, हर रिचुअल के पीछे कहानी है। तो उसको जब तक हम साझा नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ी के साथ में, वो कैसे सीखेंगे? क्योंकि देखिए, टीवी से, डॉक्यूमेंट्री से, वो अपनी अपना कल्चर सिखा रहे हैं, टीवी डॉक्यूमेंट्री अगर हम बात करें तो। बट आपके खुद के परिवार की जो हिस्ट्री है और हर कम्युनिटी का जो रिचुअल है, जब तक हम नई पीढ़ी को नहीं सिखाएंगे, हम शायद उनको किसी ना किसी चीज से वंचित रख रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बहुत जरूरी है आपको अपना कल्चर अपने बच्चों के साथ में साझा करना।
0: वाकई ये बात तो मैं हमेशा मानती हूँ, एंड इनफैक्ट आई ऑलवेज एंडोर्स ऑल्सो कि ना, अगर हम अपनी सोसाइटी को और हमारे ही रिवाजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाज के जो फ्रेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें तो हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन जो हमारे रिवाज हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको कहीं सिखाने में हम पीछे रह जाते हैं। इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक अहम कारण मुझे ऐसा लगता है भागती हुई जिंदगी, जहां पर कि किसी के पास भी ठहर कर पलट कर शायद इतना समय ही नहीं है कि वो इन सारी चीजों को महसूस कर सकें और आने वाली पीढ़ी को समझा सकें।
1: Yes. आपने पूछा कि आप इसमें कैसे साझा कर रहे हैं
0: जी।
1: तो मैंने छोटे छोटे रिचुअल्स को लिखना शुरू किया
0: जी।
1: अपने अकाउंट पे उसको डिटेल में शेयर करना शुरू किया। लिखने से पहले अब जैसे हर, अगर आप स्टेट की बात करें, हर स्टेट में हम लोगों के, जैसे अगर मैं स्पेशली राजस्थान की बात करूं, तो एक कहावत है कि हर 30 कोस में बोली भी बदलती है, रीति रिवाज भी बदलता है और कहीं कहीं पहनावा भी बदलता है। तो रिवाज बदलते हैं हर 30 कोस में। सो बिफोर राइटिंग एनी रिचुअल आई स्पीक टू मल्टीपल लेडीज, ओल्ड लेडीज, टू अंडरस्टैंड कि उनकी जगह में ये रिचुअल है कि नहीं, और अगर है तो इसको कैसे आप थोड़ा सा बदलाव लाके और करते हैं। सो बिफोर राइटिंग आई टेक देयर नोट्स, सबके नोट्स इकट्ठे करके देन आई राइट द बेस्ट इजिएस्ट वे सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। एंड उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमने जब जब उसको साझा किया है, और लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया है। और मुझे खुशी होती है कि ये सिर्फ राजस्थान के लोग नहीं, राजस्थान के बाहर के लोग भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे यहाँ पे भी ये हम फॉलो करते हैं, ऐसा होता है। और बहुत बड़े लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ होता है पर हमें इसके पीछे का मतलब नहीं पता। तो जैसे मैंने बोला, हर रिचुअल के पीछे मतलब छिपा होता है, अगर उस मतलब को हम नहीं साझा करेंगे तो हमारे रिवाज विलुप्त होते जाएंगे।
0: तो भाई, इन विलुप्त होते हुए समाज के रिवाजों को अगर आप संजोना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक नहीं बहुत सारी तृप्ति सिंह की ज़रूरत है, जो समाज में इन रिवाजों को जिंदा रखें, आने वाली पीढ़ी को समझाएं, और साथ के साथ हर घर में हमें ज़रूरत है कि हम इन रिवाजों को भूलें नहीं। मॉडर्न और ग्लोबल दोनों ही आउटलुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने रिवाजों का या अपने ट्रेडिशंस का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आऊंगी, करेंगे ढेर सारी बातें। बहुत ही खास आज हमारी गेस्ट है तृप्ति सिंह जी के साथ, बट आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की रिवाजों की, पर चलिए भाई अब तृप्ति सिंह जी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये खुद एक सशक्त महिला है, बट हम सब महिलाएं जिंदगी में कोई ना कोई एक सशक्तिकरण भरा एक ऐसा डिसीजन जरूर लेती हैं। सो तृप्ति जी, अगर मैं आपकी सशक्तिकरण की जर्नी के बारे में बात करूं, सो क्या आप जिंदगी में पलट कर एक बार देखना चाहें और याद करना चाहें कोई एक ऐसा डिसीजन जो आपने लिया, आपको महसूस हुआ दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, लेकिन उसके बाद आपने कभी रिग्रेट नहीं किया, उसे लेकर खुशी हुई?
1: भावना, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करती हूँ, आई कम फ्रॉम राजपूत कम्युनिटी, और उसको करते हुए मेरे को 1.5 दशक से भी ज्यादा हो गया है। और मैंने बहुत 1.5 दशक में मैंने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एंड प्लस आई डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर माई वर्क। ठीक है, बहुत दिमाग में जब होता है कि जब आप अपने समय का खुद वैल्यू नहीं करोगे तो लोग आपके समय की वैल्यू नहीं करेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इवन इफ आई चार्ज अ लिटिल पेनी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड टाइम इज मनी एंड टाइम इज वैल्यूबल। ठीक है, जिस दिन मैंने ये शुरू किया मुझे खुद के मन में एक संतुष्टि हुई कि चाहे मैं 5 मिनट अपने काम के लिए किसी के साथ में साझा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप हर 5 मिनट के चार्ज करते हो, बट एक एग्जांपल है कि व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग एंड इफ यू आर चार्जिंग दैट, यू विल नॉट ओनली वैल्यू योर टाइम, द अदर पर्सन विल वैल्यू योर टाइम मोर एंड विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योर टाइम एंड प्रायोरिटाइज योर टाइम, बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं यू आर मेकिंग श्योर कि आपका घर भी आप देख रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, आप अपना बाकी काम को भी संभाल रहे हैं, बट इसके साथ साथ में आप अपने आप को उस पोजिशन पे रख रहे हैं कि नोबडी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड, नोबडी टेक्स योर टाइम फॉर ग्रांटेड। एंड आई हैव नो रिग्रेट द डे आई started saying that I will charge for my work because I've done enough of social work. That doesn't mean I don't do it for free anymore. I do, but at the same time I put myself in a position that now if you need my help you need to pay for my time.
0: Wow, मतलब ये तो वाकई एक बड़ा सशक्तिकरण भरा डिसीजन था, वेर आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग वेरी सैटिस्फाइड नाउ कि लोग न सिर्फ आपके समय की लेकिन अब हर किसी के समय की वैल्यू करने लग जाएंगे।
1: बिल्कुल, और उसमें क्या गिल्ट भी नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि बहुत बार सामने वाले को गिल्ट होता है कि वी आर टेकिंग योर टाइम एंड हेल्प एंड यू आर नॉट चार्जिंग, एंड आई यूज्ड टू से कि नहीं, आई डोंट वांट टू चार्ज फॉर माय वर्क एंड इट्स ओके, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई सॉ दैट पीपल हैव started misusing my time, so मुझे कहीं ना कहीं guilt होता था कि नहीं I can do better, चाहे वो काम 10 जगहों की जगह सिर्फ 5 जनों के लिए मैं करूं, but they should also feel comfortable taking my time, you know, and if they are paying, they have the excess of my time, जो चाहे limited हो, they have the excess, so it's a win-win situation for both, you know, so I felt happy after deciding that and God has been kind for that.
0: सो भाई, ये तो तृप्ति सिंह जी हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे तो लोग और समय दोनों ही आपकी कीमत को नहीं समझेंगे, और मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ा ही सही मैसेज है जो मुझे लगता है आज के समाज में बहुत जरूरी है। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, वापस लौट कर आऊंगी आपके पास। टिल देन फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आई नो ये जो सैटरडे की शाम है ना, ये बड़ी खास होती है। आप लोग अपने चाय कॉफी लेकर रेडी हो जाते हैं कि आज एक सशक्तिकरण की कहानी सुनने को मिलेगी। आई एम श्योर कितने सारे मैसेजेस आप डिराइव करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता होगा कि आप अपनी ही जिंदगी की कहानी सुन रहे हैं। कई बार बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है और कई बार सुकून मिलता है कि हम ना सही, कोई और महिला है जो वो सपने पूरे कर रही है जो शायद आप करना चाहते हैं, ना। सो अगर आपकी भी ऐसी कहानी है तो मुझे जरूर बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल आज के इस खास एपिसोड में बहुत ही खास गेस्ट है मेरी, तृप्ति सिंह जी। ये फाउंडर है गठजोड़ की, टेडएक्स स्पीकर है, इवेंट क्यूरेटर है, फाउंडर है गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप, पर मैं इन्हें सशक्त महिला कहती हूँ। जिस ढंग से ये अपना जीवन जी रही हैं और आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत सा मैसेज दे रही हैं, वो वाकई मिसाल है, वाकई काबिले तारीफ है। तृप्ति जी, अब एक अहम सवाल। अगर आज के जमाने को मैं कहूँ तो मैं मॉडर्न जमाना कहूंगी, और आप भी जानती हैं कि आज की जो महिला है उसके लिए दो चीजें बड़ी मुश्किल हैं, अपने कल्चर्स और ट्रेडिशंस को जिंदा रखना और अपनी फास्ट और बिजी लाइफ को जीना। अगर आज देखें तो बहुत सारी जगह चीजें बदल रही हैं, और ऐसे में अगर मैं आज की महिलाओं के लिए आपसे चाहूं तो आप कैसे इनकरेज करेंगे उन्हें कि वो अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करें, कल्चर्स को भी फॉलो करें, लेकिन साथ के साथ अपनी वर्किंग जिंदगी है, फास्ट लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको भी बैलेंस करें।
1: सो भावना, जहाँ रिचुअल्स की बात होती है, सिर्फ महिलाएं नहीं घर के बच्चों को, बॉय एंड गर्ल दोनों को जरूरी है अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का एंड ग्रैंड पेरेंट्स का है कि अपने घर के रिचुअल्स घर के लड़का और लड़की दोनों को इक्वली सिखाएं, कि हर त्योहार का, हर ओकेशन का जो रिचुअल है दोनों को इक्वली आना चाहिए और इक्वली समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या मतलब है। क्योंकि जब उनकी शादियां होगी, उनके स्पाउसेस होंगे, तो वो दोनों अपने स्पाउसेस को बता सकेंगे कि हमारी फैमिली में ऐसे होता है और ऐसे हम उसको, अब सपोज किसी का और स्पाउस साथ में जुड़ता है तो वो बता सकता है कि दोनों जने अपने अपने रिचुअल शेयर कर सकते हैं। पर अगर वो नहीं साझा करेंगे हम घर के बेटा और बेटी दोनों को, तो वो रिचुअल आगे कैसे बढ़ेगा। तो मदर एंड फादर बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जब आप रिचुअल कर रहे हैं तो बच्चों को साथ में जोड़ें और उनको रिचुअल कराने का हिस्सा बनाएं। सिंपल लॉजिक है, सिंपल एक्ट है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं उनको भी साथ साथ में पूजा की विधि समझाएं कि ये विधि है, इसको ऐसे करते हैं। उसके अलावा जैसे अगर राखी का आप त्योहार बना रहे हैं तो राखी सिर्फ राखी बांधना नहीं है, राखी बांधने के साथ साथ में वो क्यों बांधी जाती है, उसके पीछे की कहानी क्या है, बहुत सुंदर सी स्टोरीज होती है, उनको साझा करें। और जैसे मैंने बोला कि हर रिचुअल के पीछे बहुत सुंदर कहानियां हैं जो फोक टेल्स हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो फोक टेल्स उनके लिए भी एक कहते ना एक खजाना होगा। जब आप आज अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे उनके लिए एक खजाना होगा आगे अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए कि ये हमने सीखा है, ये हम तुमको आगे दे रहे हैं ताकि इसको तुम संजो के रखो। तो ये जरूरी है कि बच्चों को हर रिचुअल का पार्ट बनाए लड़का लड़की दोनों को, ताकि वो उसको बढ़ा सके रिचुअल को आगे और उसको सेलिब्रेट कर सके एक फेस्टिवल की तरह। फेस्टिवल जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फेस्टिवल के लिए वेट करें। काफी बार रिचुअल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप फेस्टिवल बना के आप एक गेट टुगेदर कर सकते हो, तो वो सिखाना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है
0: भाई। वाकई चाहे हमारे त्योहार हो या हमारे रिवाज, इन सबको थोड़ा सा समय निकालकर आने वाली पीढ़ी के लिए पहले सीखना और फिर सिखाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं ना बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो ये कहते हैं हमें तो खुद ही नहीं पता है कि हमारे रिवाज क्या है, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे। सो इसके लिए जरूरी ये है कि जब आपके घर में रीति रिवाज किए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं, सो हम उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। मोबाइल फोन में घुसकर बाहर की जिंदगी को देखने से ज्यादा जरूरी ये होगा कि हम उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, जिससे हम अपनी संस्कृति पे गर्व कर सकें और हमें ये पता हो कि हमारी संस्कृति ऐसी क्यों है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सिकड़ी और उतनी ही खूबसूरत तृप्ति सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो कि फाउंडर हैं गठजोड़ की, टेडेक्स स्पीकर हैं, इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, ढेर सारी बातें की आपसे, लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन जाने से पहले क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को?
1: स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज आपको खुद को नहीं पता है कि आप कितने यूनिक हैं और कितना कुछ आप बदल सकते हैं इस दुनिया में। पर वो बदलाव आपसे आएगा। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप एक मिस एडवेंचर पे जाएं, बट उसका मतलब ये है कि आप जो सीख रही हैं वो आसपास में साझा करें, आसपास में हैप्पीनेस फैलाएं और देखें कितनी खुशियां होती है, ना सिर्फ आपकी लाइफ में बट आसपास में बहुत से सुंदर चेंज आएंगे।
0: सो भाई, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी इस मैसेज को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, इसे अप्लाई करिएगा अपने जीवन में और आप खुद ही देखेंगी कि लाइफ हैज़ चेंज्ड। और ये क्या छोटे छोटे बदलाव ना, एक बहुत बड़े बदलाव, एक बहुत बड़े समाज के बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। बट ये शुरुआत होनी चाहिए हमारे अपने जीवन से और हमारे अपने घरों से। तहे दिल से धन्यवाद तृप्ति जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और हमारे लिसनर्स बहुत ही खुश हैं जो आपने उनसे इतनी बेहतरीन जानकारी साझा की।
1: थैंक यू सो मच भावना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू सच वंडरफुल पीपल।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए मैं आपसे वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मेरी और आपकी होगी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइक।

पुरस्कार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें। और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने जानने सुनने को मिलेगा। ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी, चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको। इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता, लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाते हैं, और वो गाना होता है मेरी पसंद का। तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078। तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना। मैं हूं प्रियंका आपके साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं. साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. और इनका बहुत बहुत स्वागत. और ये तो सिर्फ चंद चीजें मैंने आपको बताई है, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है. इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो यू नो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे. सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं
0: जी
1: बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया. और सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी. यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ कर दिखाने का.
0: जी, समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा

0: साथ देगा या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे, ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है। लेकिन ये चीज शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में है। शेफाली जी, अब तक का सफर आपका कैसा रहा यह तो मैं जरूर जानूंगी, लेकिन यहां तक आप पहुंची इसके लिए एक सोच जरूरी होती है, वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है, आई गेस आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा। तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया, बताइए इसके बारे में।
1: मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, इस जीने की जरूरत है।
0: करेक्ट,
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर एनजीओ जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, वो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं, और मैं ब्यूटी पेजेंट ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट की संस्था है
0: जी।
1: उसमें मैं जुड़ी रही हूँ फॉर 7 ईयर्स
0: जी,
1: एंड आर एन टॉक्स के जुड़ी रही हूँ। ईयर टू ईयर में आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, एवीएम में टीचर्स ट्रेनर क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले, टीआईएम में कंटेंट राइटर हूँ, मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। यूएलबी में स्टूडेंट काउंसलर हूँ जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ, मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कैनेडा, और बहुत सारे अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट या आप कह सकते हैं जैन जी के साथ जुड़ना मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनसे बात करके नई चीजें सीखने मिलती हैं, और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने पीएचडी किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है। सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, न्यूज एक्स में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वॉज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल। सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी, हम दो सिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं। आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में हैं, जगह जगह पोस्टिंग रही हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहां हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं। सो उनसे हमने बहुत सीखा, सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं। हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे, आजकल लैपटॉप आ गया है, आपका इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी। आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है, जो हूँ आज मैं वो उनकी वजह से, माय सिस्टर, माय पेरेंट्स, हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, ऑल आर एट द बैक ऑफ मी।
0: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं, और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं। कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहले आपके दिमाग में?
1: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है। जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन. ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट. सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी and many more things to my army fraternity. My thanks to my juniors and seniors. I learnt a lot from them. बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे. और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं. I have already done almost more than 2000 stage shows. I have compared a lot, more than 4000, 5000 shows there. So एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं. सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ. माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो. जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ.
0: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ. और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से. इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुननी चाहिए. मैम से ज़रूर बात करेंगे. डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में. प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांगाम के साथ.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव योजना 107.8 FM पर. मैं हूं प्रांक आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज़ को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में जाते हैं, हम कुछ सुनते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं घर आकर, ऐसे ही हमारी बॉडी एक हमारा पार्ट है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है. वो बेबी की तरह है, उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है. आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, योगा करना चाहते हैं योगा करिए, निकालिए अपने लिए टाइम. ब्यूटीफुल सुंदर वर्ल्ड है, कितनी सुंदर दुनिया है वहां, सुबह की ऑक्सीजन मिलती है सीधा. अपनी बॉडी के लिए जो सुबह काम कर सकते हैं आप, एक घंटा नहीं, एक घंटा शुरुआत होती है, आप 5 मिनट से तो करिए. स्टार्ट विद 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बढ़ाइए, नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स बढ़ाइए. कुछ चंद लम्हे उस इंसान को दीजिए जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं और वो आप हैं. लुक एट द मिरर एंड से यस, दिस इज मी, टुडे इज गोइंग टू बी माई डे. आज मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेकर आऊंगी. शाहरुख खान ने भी बोला है ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ देती है. तो यही अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयर करना सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे. और शायद मैंने प्रियंका बताया था आपको, आजकल बटरफ्लाई हग बहुत चल रहा है. दैट इज, यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर एंड से दिस इज मी, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ. सो ये जो बटरफ्लाई हग है ये एक मैजिकल हग होता है. आप शीशे में उस इंसान को जिसको आप 24 आवर्स चलाते हैं किसी दुनिया में बाहर की, उसमें थोड़ा सा टाइम देके देखिए, देखिए ये मैजिक दिखेगा आपको. दिखना शुरू विद इन सेकंड शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये अफर्मेशंस हैं. इनको
0: सच्चे दिल से करना है,
1: सच्चे दिल से करना है. अफर्मेशंस होते हैं ना, दिस इज मी, आई इट, द डे इज बाउंड टू बी माई डे टुडे एंड इट विल हैपन. यू आर गिविंग द यूनिवर्स ऑल दीज, यू नो, ऑरा, योर ऑरा इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो आपकी चीजें अच्छी होंगी.
0: बिल्कुल,
1: सोच पे निर्भर करता है. मैं कहती हूँ आजकल की जितनी नारी हैं उनको यही बोलती हूँ कि आपके पास वो पावर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें डीपी लगाते हैं. मैं उसको बोलती हूँ डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आप क्यों पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. आपका आधा 50% काम उस पॉजिटिव सोच रखने से खत्म हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है, तो आपका आधा काम तो हो गया, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा आगे करना है. तो सभी नारियों से मेरी यही एक एक मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपनी इस खूबसूरत इंसान को जिसको आप शीशे में देखते हैं, उसे टाइम दीजिए, उसको ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए.
0: बिल्कुल,
1: तो आप अंदर से मन खुश होगा तो आप बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे.
0: जी, तो जादू की झप्पी बहुत जरूरी है, ये मैम भी कह रही हैं. तो अपने आप को पहले जादू की झप्पी देना शुरू कीजिए और अपने लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए. और ये ना मैं बहुत मानती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है ना, और उसके बाद दिमाग में वही चीजें चलती रहती है और आप जैसा फिर सोचते हो ना वैसा ही आप रिएक्ट करने लगते हो. आप कि जो एक्शंस है ना वो भी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं. अगर आप अग्रेसिव कुछ सोच रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो एक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं. तो इसीलिए इसके उलट आप सोचिए. आपको हमेशा अपने मन में प्यार रखना है, अच्छापन रखना है. अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस चीज को बस अब आपको उस शैडो से निकल करके सामने लाना है. फिर आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी, आपने खुद भी कभी यकीन नहीं किया होगा, और ये खुद मैम कह रही है, और इतना एक्सपीरियंस अभी हम और बहुत सारी बातें हम मैम से जानेंगे. साथ के साथ मैं सुना रही हूँ गाना, तो इस वाली बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांगा आपके साथ.

0: गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078, रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ ही के रिलेशनशिप कोच हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लगता है जो ये कर रही हैं उनसे अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहली चीज़ जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और कहीं ना एक ये सवाल सबके जहन में रहता है कि मुश्किल होता होगा ना, ऐसे कि एक डर रहता है हमेशा, राइट? एक मन में हमेशा डर बना रहता है, साथ में बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज, मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, कैसे आप मैनेज कर पाती हैं इतना सब कुछ और कैसे उस डर से आप बाहर निकल पाती
1: हैं? कहते हैं खुदा ने शायद हम लोगों को चुना है इतने सारे लोगों में जो स्ट्रांग लेडीज हैं कि हम इस डर से ऊपर निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आर्मी ऑफिसर्स की पत्नी के लिए चुना है शायद, क्योंकि हमारा जो डर है वही हमारी ताकत है।
0: करेक्ट।
1: हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे यूनिट है, ब्रिगेड है या कोई भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी में, वो सब इतना साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम अकेले हैं या डर हमें कभी साथ लेगा। जैसे हम सिस्टर्स आपस में एक घर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो कभी अकेलापन नहीं लगता। इट्स अ बिगर लार्जर ब्यूटिफुल फैमिली विच वी कैरी विद अस, सो डर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा डर हमें इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे हस्बैंड एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व से सर ऊंचा करने वाली बात है, देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, गरिमा के लिए। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ ये कहते हुए कि बाकी सब चीजों से ऊपर जो मेरी आज पहचान है वो यही है कि मैं आर्मी ऑफिसर की पत्नी पहले हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं वो केयर, वो प्यार, वो भी कहीं की आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। वही एक सपोर्ट और होता है जो हमारे लाइफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो अपने परिवार वाले होते हैं, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं मुझे बताना अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है अपने किसी लव्ड वन का, लेकिन इनका सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में और जितना आपने अचीव किया है इसमें अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सही कहा। हाँ,
0: जी,
1: इस सपोर्ट के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ता।
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: मेरे फादर हमेशा कहते हैं हमारे पास कुछ सर्कल्स होते हैं, हमारा जो इनर सर्कल है उसमें सिर्फ हम है, इट्स मी आई, जिसके ऊपर सारे लोग टिके हुए हैं। सेकंड सर्कल में आपके हस्बैंड और बच्चे आते हैं जो आपकी फैमिली बनते हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत सारी निर्भरता रहती है, उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है बच्चों को आपको, तो हस्बैंड और वाइफ मिलकर ये चीजें आगे प्लान करते हैं।
0: जी।
1: अब बच्चों का साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा बच्चे रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, सो ये सपोर्ट हमारे सेकंड सर्कल का है। थर्ड सर्कल में हमारे आते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स और गर्ल के पेरेंट्स, सो इन चारों भी हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम ये इनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी लुक आफ्टर करना होता है उनका, उनकी आज की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। और दो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और सब हैं जो अपने आप में खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो कर लेते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केयर के लिए भी हमें मिल जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा आउटर सर्किल आता है जहां हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी जिंदगी हैं। आजकल की दुनिया में फ्रेंड्स होना और फ्रेंडशिप खत्म होना मैंने बहुत यंग बच्चों में देखा है। आप लोग फ्रेंडशिप को सिर्फ वहां तक देखते हैं जहां आप एंजॉयमेंट देखते हैं, आप वहां तक फ्रेंडशिप को देखते हैं जहां आप ये चाहते हैं कि अच्छा आज हम यहाँ चलेंगे, आज हम यहाँ खाना खाएंगे, आज हम मूवी साथ में देखेंगे, पर फ्रेंडशिप इससे ऊपर है। ये फ्रेंडशिप आपकी जो बनती है आपके इस सर्किल में ये आपके फैमिली बन जाती है। कुछ टाइम के बाद आपका फैमिली फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रेंड्स फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं. आप देखिएगा 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ लाइन ही फ्रेंडशिप फ्रेंड्स होते हैं.
0: जी.
1: वो लुक फॉरवर्ड करते हैं आज सुबह आज कहाँ जाएंगे, आज हमारी किटी पार्टी, स्पेशली लेडीज का, इवन जेंट्स का भी स्टैग पार्टीज होती है. सो उनके लिए फ्रेंड्स उनकी जान है हम लोगों के लिए, जिनसे हम सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सुख दुख को आपस में करते हैं. तो कहा भी ये गया है, एवरी मोमेंट हैज लव इन इट, एवरी आवर हैज हैप्पीनेस इन इट, इफ यू लूज इट इट बिकम्स मेमोरी एंड इफ यू लिव इट इट बिकम्स लाइफ एंड आवर लाइफ इज आवर फ्रेंड्स. सो ये सारी सर्कल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके बाद हमारा मिला के जो बनता है दैट इज हमारा राष्ट्र निर्माण, जहां हम अपनी फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: हमने जितना सीखा बचपन से आज तक, क्या हम उसका 1% भी अपनी सोसाइटी में गिव बैक कर पाए हैं. आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा. कई बार होता है हम डोनेशन के लिए जाते हैं, कहीं ओल्ड एज होम में जाते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं. बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं, स्पेशल नीड्स के हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं. इतनी सारी चीजें अगर हम करते हैं ये आपके दिल को सुकून देती हैं. ये सारी चीजें आपके लिए खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हमें इतना कैपेबल आज समाज ने बनाया है कि हम उसका बहुत आभारी है कि हम उसको वापस भी ये करेंगे. दुनिया बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी है, इसी में हमारी जिंदगी एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ निकल जाती है. सो मैं हमेशा एक मेरा बहुत मंत्र है मेरा प्रियंका, वो शेयर करती हूँ श्रोताओं के साथ आपके साथ. मैं अपना GPS खुद लेकर चलती हूँ. आप मोबाइल उठाते हैं, आप GPS लगाते हैं, मेरा GPS मेरे साथ रहता है. जी इज फॉर ग्रेटिट्यूड, पी इज फॉर पॉजिटिविटी एंड एस इज फॉर स्ट्रेंथ, नो योर स्ट्रेंथ. बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वो कंपटीशन में आ जाते हैं.
0: जी, जी, जी.
1: पर उनको अगर अपनी स्ट्रेंथ आज पता चल जाए, आज लाइनें खुली हुई हैं बच्चों के लिए करियर में. आप म्यूजिक में अच्छे हैं, ड्रम बजाने में अच्छे हैं, आप पहले टाइम में होता था डॉक्टर, इंजीनियर और IAS और यही सब चलता था. आज तो लाइन्स ही लाइन्स हैं, जहां आप जाएंगे वहां जा सकते हैं. सो आई कैरी माई GPS विद माईसेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट आपके सारे श्रोताओं से अपने GPS को अपनी एक कीवर्ड बना लीजिए और दुनिया देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत हो जाएगी.
0: वाओ, अगर थॉट चेंज हो जाए तो सब कुछ हम ही है. ये थॉट ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन जिनके अंदर होता है ना उनके बात करने का तरीका, उनका उनकी प्रेजेंस ही बहुत स्ट्रांग होती है. या आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने लिए जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि अच्छे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा, और ये हर कोई डिजर्व करता है. हम जो हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं हम सब अच्छा डिजर्व करते हैं, राइट. आप जो भी कर रहे हैं आप उसको प्रेज करें, राइट. और कभी भी ग्रैटिट्यूड मत भूलिए, उसको हमेशा रखिए. तो ये छोटी सी चीज़ जो समझ लेता है वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है. रेडियो वाणा वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरे लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रागा और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. शेफाली, बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं. अच्छा, कभी एक ऐसा पल आया जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ना कभी ये आता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे. तो ये वाली चीजें ना सभी की लाइफ में होती है, है ना. कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है, और आई एम श्योर मुझे पता है आपके पास भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा. तो बताइए कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है इंटरेस्टिंग.
1: बिल्कुल, इंटरेस्टिंग तो कई बार हुआ है
0: जी.
1: पर अब मुझे उन लोगों पे बहुत दया आती है, तरस आता है कि कैसी सोच है.
0: और यहाँ पता मैं क्या कहती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता.
1: बिल्कुल, मैं अपनी फेवरेट हूँ. कुछ लोगों की सोच वहाँ वहीं तक सीमित होती है.
0: करेक्ट.
1: और मैंने अपनी आउटर लेयर इतनी स्ट्रांग की हुई है कि मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ा. कुछ सोच थी, पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, उसके बाद आर्मी ऑफिसर से मैरिज हुई, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर जैसे जैसे मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई, बहुत काम किया है. आई हैव डन ऑन फील्ड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम किया है मैंने, और अभी भी मैं करती रही हूँ. पर कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गए, इनमें तो शायद ये खूबी थी ही नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक है. सो आने वाले टाइम में, पिछला टाइम, अभी का टाइम, अब ये नहीं मैटर करता मेरे लिए, बिल्कुल नहीं मैटर करता है, क्योंकि वो उनका ब्रॉटअप है, उनकी सोच है, और वो वहीं तक है. मैं कहां से कहां पहुंच गई, बट वो वहीं की वहीं है. सो दैट वे आई डोंट इवन कंपेयर विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. मैं कर रही हूँ, मेरा सोल सेटिस्फेक्शन है, मेरा अपना जिंदगी है, और मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी को डील करती हूँ.
0: अगर कोई फेस कर रहा है अभी ये करंट और हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, बड़ा परेशान के चार लोगों ने दिखते नहीं है लेकिन परेशान कर रखा है, और वो उभर ही नहीं पा रहे इस चीज से, और इस वक्त वो हमें सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ऑलवेज रिमेम्बर, आई एम द बेस्ट.
0: नोबडी
1: इज बेस्ट देन यू. यू नो, हमें जब मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल टाइम में, मुझे याद है मेरे फादर बोलते थे आप शीशे में देखकर अपनी प्रैक्टिस करो. तो मैं हमेशा शीशे में देख के वर्बेटम पूरा प्रैक्टिस करती थी. आई ऑलवेज यूज टू स्टूड फर्स्ट देयर. सो मैं एक ही चीज उनकी याद रखती हूँ, बोलते हैं जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये सोचो दूसरे को किसी को कुछ नहीं आता. बस. सो आई एम द बेस्ट. रिमेम्बर दिस थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. जिस तरह से आपको एक यूनिक इंसान भगवान ने बनाया है, कि हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मैच होते आपस में. सो हाउ कैन वी से कि चार लोग क्या कहेंगे, सोचना ही नहीं है. हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, मीन्स हम यूनिक है, हमसे आगे कोई नहीं है दुनिया में. सो ऑलवेज रिमेम्बर, हम एक ब्यूटीफुल सोल है, बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा काम दुनिया के लिए करके जाएंगे, कुछ नाम कमा के जाएंगे, कुछ यादें छोड़ कर जाएंगे.
0: आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, रिलेशनशिप की जब बात आती है आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
1: कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, हमने एक सर्वे भी किया था इस बारे में. सो रिलेशनशिप को लोग आजकल सीरियसली नहीं ले रहे हैं. उनके मन में कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज्यादा है. बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ईच अदर. अगर आप जिंदगी को हल्का फुल्का ले लेते हैं तो क्या चला जाएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर. एंड हमने देखा होगा हमारे पुराने टाइम में लोग ये सब सोचते ही नहीं थे. किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे बार में सॉरी बोल दिया, बात आगे चली गई. अभी वो थोड़ा सा भी अगर कोई बोलते हैं सॉरी तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है. सो मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, होता है, साइंटिफिकली इट इज प्रेजेंट, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, कितना डीपली आप अपने अंदर उसको ले रहे हैं, और उसकी भी टेक्निक्स हैं. सो मैं ये बोलूंगी रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा. एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए. आपने शायद, मेरे ख्याल से शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें था कि कभी भी वो अपनी फ्रेंड से भी तू करके बात नहीं करते हैं. इवन काजोल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, बट वो कभी भी तू करके बात नहीं करते, हमेशा आप करके बात करते हैं, या शाम को यार आ जाओ, शाम को चाय पीते हैं, उन्होंने कभी यार नहीं बोला. ये ऑलवेज इज आज शाम को टाइम है तो आ जाना, साथ में बैठते हैं. यूज अ रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज विद ईच अदर, एक दूसरे को आप सम्मान देंगे तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, जहां आप एक दूसरे को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं. एक लड़की है जिसने अपनी जिंदगी पूरा टाइम पेरेंट्स के पास दी है, उसके बाद वो आपके पास आई है. एक बॉय है जिसने पूरा टाइम अपने पेरेंट्स का साथ दिया है, वो आपके साथ रहने के लिए आया है. सो ये दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप साथ में है. इस बीच में ये नहीं आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, या मेरे घर में ऐसा हुआ, आपके घर में ये हुआ. दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का स्टडी मटेरियल अलग है, जहाँ आप पढ़े हैं, हो सकता है साथ में पढ़े हो. सो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी टंग से क्या बाहर जा रहा है, या इन अ वे हेल्दी के लिए अंदर क्या जा रहा है, दोनों चीजों का डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पार्टनर को ये नहीं आता, आपने उसको जज किया. जजमेंट खत्म कर दीजिए, जहाँ जजमेंट खत्म हो गया वहीं आपको ले गए, तो बहुत सुंदर इंसान है. correct. और जिससे आपने मैरिज किया वो कैसे गलत हो सकता है. हमारे यहाँ डिवोर्स वर्ड नहीं होता काउंसलिंग में, रिलेशनशिप में. हम चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा उन्होंने कम्प्रोमाइज किया, थोड़ा इधर से कम्प्रोमाइज हुआ, थोड़ा वो हैप्पी हो गए, थोड़ा हम हैप्पी हो गए. ऐसे करते करते लाइफ कब में निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद सारे रिश्तों से ऊपर है.
0: करेक्ट, करेक्ट.
1: सही. तो मेरे हिसाब से आपको पहले रिलेशनशिप में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता। डॉक्टर शेफाली, हेल्दी रिलेशनशिप को अगर रन करना है तो उसकी की क्या है?
1: हेल्दी रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छी की है कि खुश रहिए, क्योंकि आजकल की जिंदगी में सबसे एक्सपेंसिव चीज खुशी है।
0: करेक्ट,
1: जिसका कोई मूल नहीं है। और आपके पास तो भगवान ने फ्री में स्माइल दी है। कुछ भी कोई बोलता है, छोटी सी स्माइल देके प्यार से बात कर लो,
0: करेक्ट,
1: चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाना खत्म कर दीजिए, चीजें आपको लगेगा बहुत सिंपल हो गई है। किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो जस्ट ब्लेस देम, एक दूसरे को छोटी छोटी चीजों में। आज मैंने देखा था, आई थिंक 2 दिन पहले किसी एक कपल के बीच में लड़ाई हुई, इतना गुस्सा आ गया, इतना एंगर हो गया उसमें कि उन्होंने उसको थप्पड़ी मार दिया, तो वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया। सो इतनी सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर क्यों जाने दें हम इन

0: वुमन है, वर्किंग मैन है. सो ये जो ईगो आ जाती है ना 30 years के बाद, ईगो से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. इन सबको साइड में रख के अच्छी जिंदगी बिताइए. एंड दिस इज द की.
1: करेक्ट. एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है एक दूसरे को स्पेस देना, राइट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि आप अकेले बैठो. बहुत सारे सवाल जो हम अकेले में ही उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ये चीज ना समझ में नहीं आती है आज के टाइम पर. और एक चीज जो मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप में ये हो जाए तो एक बेहतर रिलेशन चलेगा, वो ये है कि जो अच्छी चीज़ है ना हमेशा उस पर ध्यान दें. हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ें हम याद रखते हैं, जहन में अपने रखते हैं, इसके बाद जब थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो वो सारी बुरी चीज़ें फिर वो सामने आती है.
0: इनका ये साइंटिफिकली ह्यूमन नेचर है.
1: यस,
0: इट्स अ ह्यूमन नेचर, नॉट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओनली. ये हम कहीं भी देखेंगे तो हमारा नजर सबसे पहले उस पर ही जाती है कि नेगेटिव क्या है. सपोज समबडी इज वेरी वेल ड्रेस्ड, सो आप कॉम्प्लीमेंट करते करते ही आपको पता चलेगा इसमें क्या कमी है.
1: राइट.
0: तो ये एक ह्यूमन नेचर है जिसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल.
1: बिल्कुल. और इसे बिल्कुल चेंज किया जा सकता है. लाइफ बहुत अलग कहे कि 360 के एंगल पे चेंज हो जाएगी अच्छे वे में. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका, आपके साथ हर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर। मैं हूं ब्रांका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता। डॉक्टर शेफाली, आपने नेशनल इंटरनेशनल कई सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आप स्पीकर रही हैं, है ना? तो आज का जो यूथ है, आप उनको क्या कहना चाहेंगी और क्या आप अपने सेमिनार्स में यूथ को बताती हैं, क्या उनको आगे के लिए करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए?
1: हमने सब जगह ये सुना भी है, पढ़ा भी है और ये सच है कि आज का यूथ देश का निर्माण करता है, देश का भविष्य बनाता है। हमारे हर सेक्टर में जहाँ जहाँ आज यूथ है, कुछ कॉलेजेस में है, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बटरफ्लाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, अलग अलग ओहदे पर हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं। सो मैं यूथ से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। और मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंस के जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हम सभी जानते हैं। इस पर अमल करिए। ईच मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन। पिछला कल क्या था उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेवलपमेंट में, हमेशा लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। इवन आप अगर रोड पर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको एकदम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको लगता है ये तो ठीक ही नहीं है। सो हर जगह से आपकी लर्निंग होती है, हर जगह से। आप अपने पर विश्वास रखें, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेंटल हेल्थ पर, माइंडफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, योगा है, मेडिटेशन है, और बहुत सारी अलग तरह की कलाएं हैं, पेंटिंग है, गो इन द गार्डन। आजकल तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं हैदराबाद जैसी जगह में, जहां आपको एक प्लेस अलॉट कर दी जाती है, वहां पर आप जाकर मेडिटेट करके वापस आ सकते हैं। ये ऑफिसेज में भी उन्होंने शुरू कर दिया है, छोटा सा जंगल टाइप बना दिया, वहां पर आप एक राउंड लेकर भी वापस आ सकते हैं। तो इस तरह की स्पेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है बिग सिटीज में। इसी तरह आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। जहां आप रुक गए वहां आपको लगेगा अब बस हो गया।
0: करेक्ट।
1: तो यहां से निकलना हमारे हाथ में है, ये पावर सिर्फ हमारे हाथ में है, अपने आप को, खुद को मोटिवेट रखने की।
0: और सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप लर्निंग जारी रखिए, क्योंकि एक बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, राइट? तो बातें बहुत सारी हैं, और आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते मैम से, तो नंबर है हमारा 8010781078।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वरिष्ठ 107.8 एफएम पर. मैं हूं ब्रांका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. आपने एनजीओ के बारे में भी बात की कि आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तो ये एनजीओ क्या करता है और इसके बारे में कुछ बताइए.
1: मैं काफ़ी सारी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ. एक एनजीओ है एयर टू एयर जिसमें वो सिर्फ मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं.
0: ओके.
1: लोगों से सुनते हैं, लोगों को आजकल लिसनर्स चाहिए तो लोग उनसे अपनी प्रॉब्लम को जस्ट

0: डिस्कस करते हैं, कोई जजमेंट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, दे जस्ट गिव देयर टाइम.
1: और ये एंड कोई भी जाकर
0: कर सकता है. देन दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू अ पर्सन कि आप आइए, अपनी शर्म को साइड में रखकर आप ओपन अप होइए, बी कॉन्फिडेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. सो इट्स ईयर टू हियर. एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कार्या केयर. वहां पर मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आप सबसे श्रोताओं से आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी. आगरा में इनका एक अवार्ड फंक्शन था. सो ये मेरे कजिन का है, मेरे हस्बैंड के कजिन है, उन्होंने किया है. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ हम एक पुअर बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, उन्हें दुनिया दिखाते हैं. सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो वहाँ उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाइए उधर और जाकर आप अवार्ड फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट रहिएगा. सो मैंने उसको अटेंड किया. इतना मुझे सुकून मिला वहाँ जाकर क्योंकि वो सारे बच्चे ऑलमोस्ट उस टाइम में वो 150 से ज्यादा बच्चे थे
1: जी.
0: उनको ताज में बैठाया, ताज होटल में आगरा. उनको वही प्रोग्राम, उन्हीं से प्रोग्राम भी कराया, उनको एज अ सेलिब्रिटी फील कराया. खाना खिलाना, उनको रूम्स दिखाना, उनको ताज के अंदर की सारी चीजें विजिट कराना
1: जी.
0: मुझे इतना अच्छा लगा. उसमें से एक बच्चा था जो मे बी शायद 18 ईयर्स का था वो. उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ इस ताज के सामने दूसरी साइड बैठकर मैं भीख मांगा करता था, लेकिन मुझे किसी ने इस एनजीओ के बारे में बताया, यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया. आज मुझे ताज के अंदर आके लग रहा है कि मैंने सपना जो देखा वो पूरा होता हुआ लग रहा है. अब मैं कुछ बनूंगा आगे और मैं यहाँ आऊंगा बनने के बाद अपने बलबूते पर. तो मतलब उन्होंने उन 150 बच्चों को सपने दिखाए कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, अच्छी जिंदगी को जीजिए. उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मजदूरों के बच्चे थे, बहुत सारे थे जो स्लम एरिया से आए हुए थे कुछ. सो आगरा में सीमित थे वो सारे. मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों से बात करके. एक ऐसा इनिशिएटिव जो शायद हमें करते रहना चाहिए. एक और यहाँ पर एक है जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करने में आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है.
1: अच्छा, एक के सोचने वाली स्थिति भी है कि किसी टाइम पर लोग बातें किया करते थे, सुना करते थे, लेकिन आज के टाइम पर कितनी कमी हो गई है कि हमें अपनी बात शेयर करने के लिए कोई हमें सुने, उसके लिए हमें जाना पड़ रहा है. जबकि एक टाइम पर लोग आसपास होते थे, अपने अपने परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी, सभी जो मिलकर एक
0: इसमें प्रियंका न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई ना.
1: बिल्कुल,
0: उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है.
1: यस यस यस. तो ये एक चीज. लेकिन हाँ, कभी कोई आपके आसपास ऐसा हो जो हमेशा चुप रहता है और ज्यादा बात नहीं करता है, कभी भी उससे कुछ ऐसी बात ना कहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मन के अंदर होता है. और कभी बैठ करके सिर्फ उसकी बात सुनिएगा. ऐसे भी हम कहते हैं ना कि हम कैसे हेल्प करें, आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं. बहुत अच्छी चीज़ जो बहुत बढ़िया होगी उसके लिए भी और आपके लिए भी. रेडियो माना वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्राग आपके साथ.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस वक्त काफी सारी बातें हम डॉक्टर शेफाली गुप्ता से कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ में है ये और ये जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करते हैं. आप सोचिए कि कितना सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है और उसी एक्सपीरियंस से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है. और जब भी हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना, समाज में कैसे अपने आप को वो दर्जा देना है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं ना. तो आप क्या कहेंगी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: बहुत सारे श्रोताओं को मैं यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे पर उनसे भागना नहीं है, एक तो उनका सामना करना है, दूसरा उन चैलेंजेस को ब्रेक करिए. अगर आप एक ही बार में वो चैलेंज फेस करते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इसे कैसे पार हो पाएंगे. लेकिन उस चैलेंज को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लेते जाएंगे तो आपका चैलेंज नीचे नीचे ही सुधरता जाएगा. अगर आप उसको ओवरलोड करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हीप बन जाता है उसका.
0: करेक्ट.
1: तो आप हमेशा ब्रेक करिए, अपने दिन को प्लान करिए. अगर चैलेंज आता है आपके पास कि चलो आज हमें ये चैलेंज आया, इसको किस समय पूरा करना है, तो आपका माइंड उसमें उलझ गया. उसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी क्योंकि आप चैलेंज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो तो नहीं निकलना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा. पर अगर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो चैलेंज और बड़ा हो जाएगा. इसको सबसे पहले छोटे छोटे उसमें ब्रेक करिए, पार्ट्स में एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए. एक प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिनरी प्लान बनाइए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे. उस बीच में थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए एंड देन अगेन कम ऑन टू दैट चैलेंज. ये हर फील्ड में होता है, कोई ऐसी फील्ड दुनिया में बनी ही नहीं है जो चैलेंज के बिना प्रोग्रेस नहीं हो.
0: करेक्ट.
1: आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है, सीईओ बैठकर कहीं मीटिंग दे रहा है वो भी एक चैलेंज है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए. आप एज अ मीडिया पर्सनैलिटी है, आपका कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, यू नेवर नो.
0: बिल्कुल.
1: सो इस तरह से हर फील्ड के चैलेंजेस हैं, उनका सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है. चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसके सॉल्यूशन के साथ उसको देखना है. प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बड़ा लगेगा. इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके प्लान बना के सॉल्व कर सकते हैं. और अगर जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां अपने सीनियर्स की मदद लीजिए. बिल्कुल. अगर आपके लाइफ में हर तरह से हमारे पास काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर हैं, और भी आगे आप जाना चाहते हैं, आपके हो सकता है बॉस बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आप अकेले नहीं है. चैलेंजेस में अकेला मत समझिए अपने आप को, आपके सराउंडिंग, आपका समाज, सब आपके साथ है.
0: जी, तो ढेर सारी बातें आज हमने डॉक्टर शेफाली गुप्ता से की. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी.
1: थैंक यू.
0: चलते चलते सभी लोगों का
1: प्लेजर एंड ऑनर. थैंक यू.
0: तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा उन सबके लिए?
1: आई ऑलवेज से कैरी योर जीपीएस ऑलवेज विद यू, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी एंड नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन इट. सो कैरी योर जीपीएस एंड डिस्प्ले पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. योर सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी लीड अ हैप्पी लाइफ. दिस लाइफ इज ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत जिंदगी है. जितना हैप्पीनेस के साथ आप जिएंगे उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत खूबसूरत जिंदगी है. जितना हैप्पीनेस के साथ आप जिएंगे उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे.
0: जी, इस प्यारे से मैसेज के साथ में चलिए, मेरे चलने का भी वक्त हो गया है तो मुझे दीजिए इजाजत. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM. दीजिए इजाजत. बाय.

0: चलिया।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया था, ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दयाशंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझ में कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठ कर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: क्या
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस वक्त काफ़ी सारी बातें हम डॉक्टर शेफाली गुप्ता से कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ में हैं ये और ये जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करते हैं। आप सोचिए कि कितना सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है और उसी एक्सपीरियंस से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है। और जब भी हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना, समाज में कैसे अपने आप को वो दर्जा देना है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं ना। तो आप क्या कहेंगी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: बहुत सारे श्रोताओं को मैं यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे पर उनसे भागना नहीं है, एक तो उनका सामना करना है, दूसरा उन चैलेंजेस को ब्रेक करिए। अगर आप एक ही बार में वो चैलेंज फेस करते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इसे कैसे पार हो पाएंगे, लेकिन उस चैलेंज को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लेते जाएंगे तो आपका चैलेंज नीचे नीचे ही सुधरता जाएगा। अगर आप उसको ओवरलोड करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हीप बन जाता है उसका।
0: करेक्ट।
1: तो आप हमेशा ब्रेक करिए, अपने दिन को प्लान करिए। अगर चैलेंज आता है आपके पास कि चलो आज हमें ये चैलेंज आया, इसको किस समय पूरा करना है, तो आपके माइंड उसमें उलझ गया, उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी क्योंकि आप चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो तो नहीं निकलना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। पर अगर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो चैलेंज और बड़ा हो जाएगा। इसको सबसे पहले छोटे छोटे उसमें ब्रेक करिए, पार्ट्स में एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिनरी प्लान बनाइए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे। उस बीच में थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए एंड देन अगेन कम ऑन टू दैट चैलेंज। ये हर फील्ड में होता है, कोई ऐसी फील्ड दुनिया में बनी ही नहीं है जो चैलेंज के बिना प्रोग्रेस नहीं हो।
0: करेक्ट।
1: आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है, सीईओ बैठकर कहीं मीटिंग दे रहा है वो भी एक चैलेंज है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए। आप एज अ मीडिया पर्सनैलिटी है, आपका कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, यू नेवर नो।
0: बिल्कुल।
1: सो इस तरह से हर फील्ड के चैलेंजेस हैं, उनका सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसके सॉल्यूशन के साथ उसको देखना है। प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बड़ा लगेगा। इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके प्लान बना के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां अपने सीनियर्स की मदद लीजिए। बिल्कुल। अगर आपके लाइफ में हर तरह से हमारे पास काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर हैं, और भी आगे आप जाना चाहते हैं, आपके हो सकता है बॉस बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं। चैलेंजेस में अकेला मत समझिए अपने आप को, आपकी सराउंडिंग, आपका समाज, सब आपके साथ हैं।
0: जी, तो ढेर सारी बातें आज हमने डॉक्टर शेफाली गुप्ता से की। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी।
1: थैंक यू।
0: चलते चलते सभी लोगों का
1: प्लेजर एंड ऑनर। थैंक यू।
0: तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा उन सबके लिए?
1: आई ऑलवेज से कैरी योर जीपीएस ऑलवेज विद यू, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी एंड नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन इट। सो कैरी योर जीपीएस एंड डिस्प्ले पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। योर सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी लीड अ हैप्पी लाइफ। दिस लाइफ इज ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत जिंदगी है। जितना हैप्पीनेस के साथ आप जिएंगे उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे।
0: जी, इस प्यारे से मैसेज के साथ में चलिए, मेरे चलने का भी वक्त हो गया है तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM। दीजिए इजाजत, बाय।

0: चलिया।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का और जीवन का जा भी सिखाया था। ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दयाशंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझ में कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठ कर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था, वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओश के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ। कवि सम्मेलन की बात बनी, तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला, बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में चार चांद लगा दिए। दो दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही थी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन, जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ मैं साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें। तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी, और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है फसल के भंडारण की, यानी कटाई के बाद फसल का भंडारण कैसे किया जाए। तो जो बातें आपके साथ में साझा करूंगा, उनको जरा ध्यान से सुनना। भाई देखिए, फसल की कटाई के बाद आप लोगों के द्वारा कुछ फसल को बीज के लिए और कुछ फसल को अपने उपयोग के लिए स्टोर कर लिया जाता है। किसान भाइयों, आपके द्वारा जो फसल अपने लिए रखी जाती है,

उसका भंडारण वो ड्रम या अन्य किसी बंद मुंह वाले कंटेनर में किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपभोग किया जा सके। लेकिन फसल का भंडारण करते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बीज के लिए जो भंडारण किया जाता है उसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, ताकि उसे आगे की बुवाई के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ज्यादातर किसानों द्वारा फसल का भंडारण जूट के थैलों में या फिर बोरियों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपके भंडारण से संबंधित, वो सारी बातें करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदा।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज बात हो रही है फसल के भंडारण के बारे में। भंडारण से पहले फसल को सूरज की रोशनी में सुखाना बहुत जरूरी होता है। फसल की कटाई का जो काम है ना, वो ज्यादातर मशीनों के जरिए किया जाता है, जिसकी वजह से फसल में नमी होती है। अगर इसी तरह से फसल का भंडारण किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है तो फसल के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए फसल की कटाई के बाद कुछ दिनों के लिए फसल को सूरज की रोशनी में सूखने दें, ताकि उसमें नमी ना रहे, और इसी के साथ साथ अनाज को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। होता क्या है, फसल की कटाई के वक्त बहुत सारे जो दाने होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, या उसमें धूल मिट्टी हो सकती है, और जो कुछ तिनके हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो तिनके भी आ जाते हैं, जो कि फसल की रौनक को कम कर देते हैं। फसल को स्टोर करने से पहले उसकी अच्छे से सफाई जरूर करनी चाहिए, ताकि फसल को फफूंद जैसी समस्याओं से बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जब भी फसल को लगती हैं, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। करेंगे कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे फसल का स्टॉक कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, बात हो रही है आज फसल के भंडारण के बारे में। आपकी फसल पककर के तैयार हो जाती है और जब उसकी कटाई हो जाती है, फिर बात आती है कि इस फसल को हम कहां पर स्टोर करें। तो इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं, वही बातें आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। कभी भी जो फसल का भंडारण है ना, पुराने और पहले से इस्तेमाल किए गए बोरों में बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, फसल के खराब होने की और उनमें और भी ज्यादा रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसान भाइयों द्वारा पुराने बोरों का उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि फसल में कोई भी रोग ना लग पाए। और इस बात का भी ध्यान रखें, स्टॉक की गई फसल के बोरों को दीवार से बिल्कुल सटा कर ना रखें। किसान भाइयों, आप लोगों के जरिए फसल का भंडारण जिन बोरों में किया जाता है ना, उन्हें दीवार से सटाकर रखने से आपकी फसल में नमी आ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में दीवारों पर सीलन या नमी बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब इसके बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी सुन लीजिए। नीम के पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी स्टॉक की गई फसल में घुन जैसे कीट लग जाते हैं जो फसल को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन कीटों से बचने के लिए नीम से बने पाउडर का इस्तेमाल भी किसानों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे स्टॉक की गई फसल को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप अपनी फसल को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इन बातों का ख्याल रख करके। करूंगा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपकी फसल के स्टोर के बारे में, वो सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, बात हो रही है भंडारण के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, फसल का स्टॉक बोरों में किया जाता है। तो नीचे फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछा दें या फिर चटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फसल सुरक्षित रह सके। और वो जो आपकी जगह है जहां पर आप भंडारण करेंगे, उस जगह को हम कह सकते हैं भंडार गृह। भंडार गृह को मेलाथियान के घोल से अच्छे से धो लेना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है। फसल का भंडारण करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें, फसल को साफ जगह पर ही स्टोर करें। और जो आपका भंडार गृह है वो जितना साफ होगा उतनी ही आपकी फसल सुरक्षित होगी, इसलिए सफाई का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल का स्टॉक करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फसलों को सुरक्षित भंडारण के लिए बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जाती हैं। इन तकनीकों की वजह से फसल में जो फफूंद लग जाती है, इस फफूंद से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को भंडारण की पूरी तरह से जानकारी ना होने की वजह से आधी से ज्यादा फसल का नुकसान हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह का नुकसान हो किसान भाइयों, इसीलिए हर बार मैं आपसे जो बात करता हूँ आपके फायदे की करता हूँ। वैसे तो आपको बातें मालूम है, लेकिन समय बदला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो शायद आप तक नहीं पहुँच पाई हैं, वो सारी बातें आप तक पहुँचाता हूँ जिससे कि आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सके और आपको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, भंडारण के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने की हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि फसल को जितना हो सके नमी से दूर रखना, कीड़ों से दूर रखना, चूहों से दूर रखना। फसल में अगर ज्यादा नमी होती है ना, तो ये सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देती है। इसी वजह से भंडारण करना बहुत जरूरी बताया जाता है, ताकि फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण किया जाता है। छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसानों के द्वारा सिर्फ अपने उपभोग के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडारण किया जाता है। फसलों का भंडारण ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी किया जाता है, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस समय में ये भंडारण हमारे बहुत काम आता है। फसलों के भंडारण के लिए सही स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारण करते समय ये ध्यान रहे, फसल में नमी बिल्कुल ना हो। नमी की वजह से पूरी फसल खराब हो सकती है। मैं बार बार आपको नमी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि नमी आपकी फसल के लिए एक तरह से जहर है। आपसे कुछ और भी बातें करूंगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: देखिए किसान भाइयों, बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं भंडारण के बारे में, और भंडारण का काम इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ बातें होती हैं ज़रूरी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब भाई आपको सावधानी बरतनी है, जितनी सावधानी बरतेंगे आपकी फसल जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जिसका भंडारण करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, और जब भी आपको लगे कि इस फसल का हमें उपयोग करना है तो आप उपयोग कर सकते हैं, और बिना किसी खराबी के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के, बिना किसी कीट के, यानी कि आपकी सावधानी से आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आपको इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। दाम अच्छा मिलेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी। अब इसी मुस्कान के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। बहुत ही खास शो है, एजुकेशनल शो है, आपको अवेयर करता है, साथ साथ प्रोसेस के बारे में आपको बताता है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर जान रहे होते हैं। बात करेंगे एक और कंपनी की, आज बात करेंगे एक और इंडस्ट्री की, आज समझाएंगे आपको पूरा प्रोसेस, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम फिर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फाउंडर के बारे में, कंपनी के प्रोसेस के बारे में, सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, 100

$50 billion तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीद

खरीदनी हो या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, यूपीआई हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 यूपीआई ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली यूपीआई के थ्रू की है। यूपीआई जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, यूएई ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और यू नो इतना स्मूथली ट्रांजेक्शंस हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो यूपीआई एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक यूपीआई यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट यू नो अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इसे एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज यूपीआई। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ आरबीआई की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, आईआरडी की तरफ से बनाई गई हैं, एनपीसीआई की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मींस हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शन होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

0: Dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim
1: tanana dir tanum welcome back. मैं हूं सागर. शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की. आप जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ. फील गुड, फील लाइव. हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है. अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे. तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी. ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए. थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं. तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली. अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस यूएस एंड यूके से पीछे हैं. इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है. वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है. और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना. देन उसके बाद हम बात करें अगर यूपीआई मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं यूके में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में. और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, यूएई में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है. तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन. टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स. वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा. बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है. फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा. क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया यूपीआई जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है. उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से. लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं. उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की. तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव.

आद्य सागर शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर। और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसिस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री को आप अच्छे से समझ पाए हैं। फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। सो फिनटेक में डील करने वाली हमारी आज की कंपनी है कैशी। कैश प्लस ई, सिंपल। कैशी एक इंडियन फिनटेक कंपनी है, ठीक है, जो डिजिटल लैंडिंग स्पेस में ऑपरेट करती है। प्राइमरली जो ये कंपनी है वो फोकस करती है इंस्टेंट पर्सनल लोन्स के ऊपर, क्रेडिट लाइंस के ऊपर, बीएनपीएल के ऊपर, यानी कि बाय नाउ पे लेटर, ऐसी सर्विसेज जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिलती है। 2016 में कंपनी स्टार्ट हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। टारगेट ऑडियंस है यंग सैलरीड मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी। कोर ऑफरिंग है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स वाया एप्लीकेशन। इन सिंपल टर्म्स कैशी जो है इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पीपल हु अर्न मनी बट स्टिल डोंट गेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स। बैंक्स के क्राइटेरियाज हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो यहां पर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है प्रोसेस। हालांकि बैंक्स ने भी अपनी चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, बट स्टिल नॉट मोर सिंपल देन द स्टार्टअप्स द वे हाउ दे आर ऑपरेटिंग। तो कैशी 2016 में लॉन्च हुई। इसके जो फाउंडर हैं वी रमन कुमार, उनका एक बहुत स्पेसिफिक मिशन था यंग इंडियंस को जो है क्रेडिट मिलना चाहिए, क्रेडिट का एक्सेस मिलना चाहिए। बैंक्स जो है वो रिलाई करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री, बोले तो सिबिल स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा, जबकि मिलियंस ऑफ यंग प्रोफेशनल्स जो है उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई लोन हिस्ट्री नहीं है, तो बैंक उनको बाय डिफॉल्ट भाई रिजेक्ट कर देते हैं। यहां पर आता है कैशी जो बहुत बड़े इस गैप को फिक्स करता है और उनको लोन्स ऑफर करता है। सो या That is our today's company, Cashy, 2016 में स्टार्ट हुई। और इतना बता चुका हूँ कि exactly किन लोगों को ये cater करता है। There was a huge gap at that time, back then, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो चीजें काफी चेंज हो गई हैं क्योंकि काफी स्टार्टअप आ गए हैं, बट उस टाइम पर था ये बहुत बड़ा गैप। और ये तो खैर हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया भी होगा, स्पेशली मिलेनियल्स, कि हम बैंक गए हैं लोन नहीं मिल रहा है, क्यों, सिविल हिस्ट्री खराब है, क्योंकि पहले कभी लोन नहीं लिया है, लाइक दिस। सो या दैट इज अ थिंग। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। कैश ही हमारी आज की कंपनी है। आइडिया क्या है इसके पीछे? सो द कोर आइडिया, बहुत ब्रूटल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में, ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस इज नॉट इक्वल्स टू ओनली पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री। मतलब कि अगर आपकी कोई पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री है, ये डिफाइन नहीं करती है कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए और ना ही करना चाहिए। तो कैशी ने एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो है बिल्ड किया, एआई का इस्तेमाल किया, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया, ठीक है। एनालाइज किया मोबाइल बिहेवियर को, सोशल डाटा को, स्पेंडिंग पैटर्न्स को। दिस लेड टू देयर प्रोप्राइटरी मॉडल, ठीक है, SLQ, सोशल लोन क्वेश्चन, एक नए तरीके का क्रेडिट स्कोर। इसमें क्या होगा ना कि कंपनी ने आपका सिबिल स्कोर चेक नहीं किया, बल्कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को चेक किया, आपके पैटर्न्स को चेक किया, और वहां पर ये देखा कि ये आदमी स्पेंड कितना करता है। मतलब बैंक का क्या फंडामेंटल है, बैंक को फर्क नहीं पड़ता ना कि आप कैसे स्पेंड कर रहे हो। बैंक का सिंपल है, आपने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, वहां से आपका सिबिल जो है वो डिसाइड किया जाता है, और उसी को फिर ध्यान में रखते हुए आपको लोन जो है डिस्पर्स किया जाता है। लेकिन यहां पर इस कंपनी ने थोड़ा सा स्क्रिप्ट को फ्लिप किया। तो यहां पर क्या हुआ कि लोन्स जो है फास्ट अप्रूव होने लगे, ठीक है, उन लोगों को ही सर्व करने लगे जिनको बैंक्स ने इग्नोर किया। जो क्रेडिट स्कोर्स ट्रेडिशनली हुआ करते थे, उनके ऊपर की डिपेंडेंसी को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। दैट्स हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन दिस सेगमेंट एंड दे आर एक्चुअली डूइंग रियली वेल, क्योंकि उस तरह की वो जो गैप हुआ करता है ट्रेडिशनली, जिस एक पैटर्न को फॉलो किया जाता था, जिन लोगों को लोन नहीं मिलता था, उनकी यहां पर बात हो रही है। तो उनकी प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। स्पेंड तो मैं करता हूँ, UPI से करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या मुझे लोन नहीं मिलेगा? बैंक की माने तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं जो बोलते हैं नहीं बॉस, आपको लोन जरूर मिलेगा। सो या दिस इज द थिंग, दिस इज द प्राइम थिंग जो ये कंपनी जो है केटर कर रही है। आई होप यहां तक जितनी जानकारी आपको दी आपको समझ आई है। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवष्टम 107.8 एफएम के साथ। आइए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स की। सो द फाउंडर इज वी रमन कुमार, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, फॉर्मरली एक कंपनी के सीईओ रह चुके हैं जो कि NASDAQ लिस्टेड कंपनी है। बैकग्राउंड है इनका टेक प्लस फाइनेंस प्लस प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनकी वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो बिलियंस में रह चुकी है, उनको बनाया है, बेचा है, लाइक दिस ही हैज डेल्ट इन दिस डोमेन लाइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एजुकेशन इनकी बहुत पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट बहुत स्ट्रांग इनकी टेक्निकल और बिजनेस एक्सपोजर स्किल्स जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड मॉडल्स इन्होंने बिल्ड किए हैं एंड बिलियन डॉलर पे जाकर के एक कंपनी को ले जा करके वहां से एग्जिट लिया है, तो अच्छा खासा नाम है। एंटरप्रेन्योर्स की जब बात होती है तो यहाँ पर वी रमन कुमार जी का नाम जरूर लिया जाता है। हैविंग अ गुड बैकग्राउंड इन बिल्डिंग बिजनेसेस, स्केलिंग बिजनेसेस एंड देन सेलिंग बिजनेसेस एंड देन स्टार्टिंग समथिंग न्यू, जो उनको किक देता है डेफिनेटली, ठीक है। डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, स्केलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन दिखाई दी ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, उसी लिमिटेशन को इस्तेमाल करके अपनी बहुत बड़ी USP बनाई और वहां से एक कंपनी खड़ी कर दी कैश ई। तो इन्होंने रैंडमली कोई फिनटेक कंपनी स्टार्ट नहीं करी, इन्होंने एक ब्रोकन सिस्टम को पहले समझा, उसमें ये देखा कि मैं क्या ऐड कर सकता हूं, फिर वहां पर टेक का इस्तेमाल करके उसको रीबिल्ड किया। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, दैट्स हाउ स्टार्टअप्स वर्क। सेकंड नेम इज यशोराज त्यागी, CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। इनकी लीडरशिप में बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का एक्सपीरियंस कंबाइन कर दें, दोनों का अगर जो ये एक्सपीरियंस लेकर के आए और जो इनके मेंटर्स इनको मिला है, सारा एक्सपीरियंस आता है वर्थ 100+ years इन द सेम इंडस्ट्री। ऐसे करके एक कंबाइंड एक्सपीरियंस से इन्होंने कंपनी खड़ी करी है। हालांकि लिटरली मतलब दोनों का ऐसा नहीं है 100 100

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक। मैं सागर, सोशल रहा आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कैशी हमारी आज की कंपनी है। आइए बात करते हैं कंपनी की यूएसपी की। यूएसपी कंपनी की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, फर्स्ट इज ऑल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, सिविल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दी, आपके बिहेवियर को जो है वहां पर आइडेंटिफाई किया और उसी डेटा का इस्तेमाल करके यहां पर अपना एक एआई सिस्टम बना दिया जो आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा, रीड करेगा एंड देन उसके आधार पर लोन अप्रूव करेगा। इंस्टेंट लोन डिसबर्सल, फुल्ली डिजिटल, नो पेपर वर्क। फोकस करते हैं ऑन अनडिजर्व्ड सेगमेंट, फर्स्ट टाइम बोरोवर्स, यंग सैलरीड प्रोफेशनल्स, इन लोगों को जो है फोकस किया जाता है एंड दैट्स हाउ दे आर केटरिंग अ ग्रुप जो लिटरली आप बोल सकते हैं कि क्रीम है या जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। तो अगर उसको, अगर आपने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया तो वो ग्रुप आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है और वही इस कंपनी को समझ में आया और वहीं से इन्होंने काम करना शुरू किया। AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, फास्टर अप्रूवल्स हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर कैशी जो है वो लोन देता है उन लोगों को जिनको बैंक इग्नोर कर देते हैं। Now let's talk about key drivers of growth. First is financial inclusion gap. Simple सी बात है, huge population को भाई यहाँ पर पैसे तो कमा रहे थे वो लोग, लेकिन credit access नहीं था, loan नहीं मिलता, सिबिल नहीं है अच्छा, credit card use नहीं किया, loan नहीं लिया कभी, तो उनको इन्होंने cater किया। Second, smartphone penetration. बहुत important है बस, tech की जब बात होती है, किसी भी tech की, InsurTech, FinTech, MedTech, BeautyTech, FashionTech या कोई और technology की आपको अगर industry समझ में आती है, smartphone penetration की वजह से सारा tech grow कर रहा है और उसका एक एडवांटेज हर कंपनी को मिला है, नॉट जस्ट दिस कंपनी, बट हाँ इन्होंने टाइमली मैनर में एक पर्टिकुलर ग्रुप को केटर करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। थर्ड इज AI प्लस डेटा एडवांटेज, बेटर रिस्क प्रिडिक्शन है देन ट्रेडिशनल सिस्टम, जो ट्रेडिशनली बैंक्स ऑपरेट करते हैं उनसे ज्यादा अच्छा रिस्क प्रिडिक्शन इस कंपनी के पास है। नेक्स्ट आता है कस्टमर एक्सपीरियंस फोकस, फास्ट अप्रूवल, किसी को नहीं पसंद भाई कि तुम लंबा घसीटो उसको, मैं हर बार चक्कर लगाऊं, हर बार एक नया फॉर्म भरूं तब जाके तुम पैसे दोगे, कंपनी ने फास्ट कर दिया उसको। सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, कस्टमर खुश, ग्रोथ अच्छी होगी, कंपनी खुश, फाउंडर्स खुश, सॉर्टेड। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रोडक्ट एक्सपेंशन, पर्सनल लोन्स देते हैं, क्रेडिट लाइंस देते हैं, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है ये भी ये ऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं कंपनी के पास जो इसको आप कह सकते हैं कि ड्राइव करा रहे हैं, जो इसकी ग्रोथ करा रहे हैं। सो या दैट इज द थिंग जो इस कंपनी की हेल्प कर रही है। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आया। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे। तो कैशी बस कोई एक लोन एप्लीकेशन नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट। शिफ्ट कौन सा? वहां से जहां पर केवल ये था कि अमीर लोगों को लोन मिल सकता है या जिनका क्रेडिट प्रूवन है उनको लोन मिल सकता है, वहां से शिफ्ट हुआ टू एनीवन हु इज डिजर्विंग कैन एक्सेस क्रेडिट यूजिंग डेटा। सिंपल इजी लोन, बहुत जल्दी से प्रोसेस हुआ, सिविल स्कोर नहीं चाहिए, आप पैसे कमा रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, डन सीन है, आपको लोन मिल जाएगा। तो कैशी ने सिर्फ लोन्स नहीं दिए, उन्होंने एक नया तरीका दिया जहां इंसान की वैल्यू उनके पास से नहीं उनकी पोटेंशियल से जज होती है। दैट्स हाउ दिस कंपनी हैज ग्रोन सो फार। सो यहां पर हमारी केस स्टडी आज की खत्म होती है। आपको शो कैसा लगा बताइए मुझे 8010078107। फिलहाल इसी नोट पर वक्त है अपने शो को यहां पर हॉल्ट देने का। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग सुनते रहिए रेडियो मानवश्रम 107.2 FM। नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइन।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
3: Well hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ जो बहुत स्पेशल है। उसकी बहुत सारी वजह भी है कि यहाँ पर ये शो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। आई मीन हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं। यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है, एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे, दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो, और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन। सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो, और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेठिया का। यतिन, स्वागत है हमारे शो में।
4: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैन भी, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ, और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है, मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर्स के लिए रील्स बनाता था, मैं उनके शूट करता था, और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है, और अभी आगे बहुत चलेगी। तो ये है यतिन यार।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है, एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं, 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर, एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो इन्होंने रन किया यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी, क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए?
4: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था, तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की, तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा, मैं तब मजे में कर रहा था। बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया। फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी। तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना। मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइजेस, और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर, सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में, इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने अपनी वॉइस पर बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा। इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया, और अब अच्छा कर रहा हूँ ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने फिर शुरू किया।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप में चीजों को सीखना एक हुनर होता है सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं। इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करेंगे, डोमेन के बारे में जाना है, आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे आगे, कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: Welcome back. I just hope you're loving the vibes of this show. You're loving the vibe of this musical break. And agar aapke paas koi feedback hai, mere liye, Yatin ke liye, koi bhi cheez hai jo aapke zehen mein hai aur hum tak pahunchani hai, do make sure 8010781078 is number tak aap pahuncha chuke ho. Filhal apne show ko aage badhayenge. Yatin, mera next question aapse rahega content creation ke bare mein. When you think about a content, a piece of content, to usko kaise aap sochte ho and what is the process? Kya jata hai uske piche?
1: प्रोसेस ये है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं, मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट भी कुछ शॉट लेना हो तो वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया, और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले, सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीरो टू वन जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियोस कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो. आप अपने आप को देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ. और ये है सबसे पहले, आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा. सबसे मेन चीज है शुरू करना. और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीर? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक विगनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए. जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं, जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड. तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कॉन्टेंट क्रिएशन में. वो जितनी अच्छी होगी, लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे. तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है. धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पर काम करना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें. तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर,
1: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा, एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतिन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। बहुत ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। अब जस्ट नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे ध्यान में जो हम पूछेंगे, बट ये हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: Once again, I'm hoping ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह है, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो एक बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को, डालेंगे स्नैपचैट पे, डालेंगे यूट्यूब पे, डालेंगे फेसबुक पे, डालेंगे। तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है, मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है इन प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उमदा बात उमदा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे 1 पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो इस साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा, आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: Alright, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, कि किसी चीज का शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यतिन से बात करी है, यतिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यतिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100 के से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कॉन्टेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों अभी के साथ वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसी नोट पर चलते हैं अपने शो को यहाँ पर साइन ऑफ करते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही हमारे साथ, मैं हूँ आरजे सागर, शो है ये वॉइस ऑफ यूथ, यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद और शोज हैं, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज मैं जिनके साथ चलने वाली हूं वो हैं धीरज कुमार चौबे, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गोकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद। ये खास कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जिन्हें मैं कहती हूँ अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी। अनसंग हीरोज इसलिए क्योंकि ये हीरोज हैं, लेकिन इनकी जो कहानी है वो कोई भी नहीं गा रहा है, और इसीलिए ये बहुत खूबसूरत मानवता का काम कर रहे हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट काफी जरूरी है। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से पूरी टीम हमारे पूरे फरीदाबाद शहर में अलग अलग एरियाज में फंक्शन कर रही है और ये क्या करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए हम सबसे पहले स्वागत करेंगे धीरज कुमार चौबे जी का रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: धीरज, आप मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। मुझे बताइए गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब कभी भी किसी एनजीओ की शुरुआत की बात होती है तो हमेशा हमने देखा है कि उसके पीछे कोई एक कहानी जरूर होती है कि क्या चीज ऐसी आपके दिल को छुई कि आपको लगा कि आइंदा से मैं इस चीज में काम करूंगा, या मैं इस समाज के इस कुरीति को कम करूंगा, दूर करूंगा, या मैं समाज के इस वर्ग के लिए काम करूंगा।
1: सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एज ए डॉग लवर जब मैं किसी संस्था के पास जाता था स्ट्रे डॉग को ट्रीट कराने के लिए, क्योंकि जिन डॉग्स को मैं फीड कराता था और उन्हें कभी बीमार हुए तो मैं लेके जाता था
0: जी,
1: तो मैं संस्थाओं में देखता था कि जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग हैं
0: जी,
1: जो डॉग्स को जैसे तैसे करके लेकर आए अपने कन्वेंस से
0: जी,
1: उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कंटिन्यू हफ्ते 10 दिन। उन सबसे बड़ी जो समस्या आती थी मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों के लिए वो बोर्डिंग की आती थी, क्योंकि वो नॉन अफोर्डेबल थे
0: जी,
1: और संस्थाएं उनको एक्सेप्ट करने में उनको रखने में कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड नहीं थे
0: जी।
1: और मेरे सामने में कई ऐसे एनिमल्स डेथ कर गए जो डॉग लवर्स को मैं बड़ा उदास देखता था, वो रो करके भी जाते थे
0: जी।
1: तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग शुरू करें
0: जी,
1: जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 100% निःशुल्क बोर्डिंग हो, 100% उनको फ्री फूड मिले, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज मिले। इसके लिए हमने कुछ डॉग लवर से कांटेक्ट किया और
0: जी,
1: कुछ महिलाओं ने तैयार हुई जो जेन्युइन डॉग लवर हैं
0: जी,
1: जो हमारी संस्था के जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर रेखा जेटली
0: जी,
1: वो एमरल्ड कन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं
0: जी।
1: उनका और बाकी सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों ने इस शुरुआती में उसमें अपना योगदान दिया, साथ दिया, फिर हम साथ मिलकर एक संस्था बनाए जिसका नाम है गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद।
0: और धीरे जिसकी शुरुआत कौन से साल में हुई?
1: इसकी शुरुआत 2024 में हुई है
0: जी
1: जी। तो उसके बाद से कंटिन्यूस हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड और फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं
0: जी,
1: जो हमारा महीने का 70 to 110 के बीच में जो घायल बीमार डॉग्स, जो बोर्डिंग, जो नॉन अफोर्डेबल डॉग लवर्स हैं उनके लिए हम फ्री बोर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। अगर मान लीजिए 10 दिन तक अगर कोई बीमार है डॉग्स
0: जी,
1: उसको अगर कंटिन्यू डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, तो हमने 2-3 फरीदाबाद के पेट जो डॉग डॉक्टर हैं उनसे हमने टाई अप किया है कि जेन्युइन रेट पे, कई सारी दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, दवाइयाँ हम खरीद के आपको देंगे, अगर आपका 500 रुपये वन टाइम विजिट पे जो चार्जेस है वो 200 रुपये हमसे लीजिए
0: जी,
1: दवाइयाँ हम खरीद के लाएंगे सस्ते पे अच्छी क्वालिटी के, और आप उसको दीजिए, ट्रीट कीजिए। तो सारे डॉक्टर तो नहीं, कुछ डॉक्टर एग्री हुए,
0: पहल में आपके साथ
1: जुड़े, और वो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो आज भी कभी हमसे इरिटेट नहीं हुए, कभी हमसे चिड़चिड़े नहीं होते, कभी पैसों के लिए नहीं वो क्या जब वो किया, और आज वो निरंतर साथ दे रहे हैं, अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो एक इंसानियत दिखाते हैं। मैं अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ, डॉक्टर सुनील पेडिक्योर क्लिनिक, और एक है कैपिटल वेस्ट डॉक्टर राहुल पांडे
0: जी,
1: इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। अगर आज मेरी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, या फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस और फ्री ऑफ कम से कम पैसों में ट्रीटमेंट अगर हम करा पा रहे हैं, तो इन दो डॉक्टरों का बहुत योगदान है।
0: देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूँ गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद की, सो इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि जब कभी भी हम किसी भी एनिमल के रेस्क्यू की बात करते हैं, मान लीजिए कि आप सड़क पर खड़े हैं और आपने देखा कि आपकी गली का कोई एक कुत्ता है जो कि शायद बीमार है, या कोई ऐसा जानवर है जिसे कोई परेशानी है, अब आपकी ममता जागी, आपको महसूस हुआ, आपको लगा कि मैं इंसान हूँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब मदद करने में अगर आपको कोई कहे कि जी मैं पहले आने का आपसे 2-4-5 हज़ार रुपया लूँगा और फिर उसे ठीक करने का आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भावना जागेगी कि भाई इतना पैसा मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कैसे दे सकता हूँ, या मैं अगर गरीब तबके का हूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ। सो क्या किसी भी संस्था के पास बिना पैसे दिए किसी भी प्रकार की मदद करने का प्रोविजन नहीं है? यही सोच धीरज कुमार चौबे जी को बहुत महसूस हुई और उन्होंने इस खास गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद का गठन किया। सो ये तो कहानी थी कि गठन कैसे हुआ, लेकिन अब पूरे फरीदाबाद में इतने सारे डॉग्स हैं और इन डॉग्स को वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे ये बोर्डिंग की फैसिलिटी दे पा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लेने वाले हैं छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना। आप जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गौकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। वैसे मुझे कहना चाहिए कि होलसोल रखरखाव का काम तो धीरज जी करते हैं, क्योंकि हर शायद एनिमल से ये प्यार बहुत करते हैं। अगर मैं पशु रक्षण की बात करूं धीरज, तो एक लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं, 2024 से तो आपने फॉर्मली एक एनजीओ बनाकर और इस तरीके का काम शुरू किया, लेकिन पशु रक्षण का काम एक लंबे समय से आप कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहूंगी।
1: देखिए, जो मेरा रख रखाव है, जो तरीका है, अभी बहुत हाईटेक तरीका तो नहीं है, बट एक सिंपल है। जैसे कोई डॉग एक्सीडेंट हुआ, उसकी कमर टूट गई या उसका पैर टूट गया, उसका हाईटेक रख रखाव तो हो नहीं सकता है। सड़क से तो बेहतर है कि उसको हम सर्जरी कराएं या पट्टी कराएं, फिर उसको एक अच्छी केयर दें, टाइम से खाना दें, टाइम से दवाइयां दें, जब तक वो रिकवर नहीं होता
0: जी।
1: क्योंकि जल्दी इसलिए भी होती है कि जल्दी से ठीक करके वापस उसके लोकेशन पे छोड़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो उनके साथ के डॉग्स ही उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अगर कोई डॉग्स को 2-3 महीने आपने अपने शेल्टर में रख लिया, आपकी कमियों की वजह से आपने टाइम से दवाई नहीं दिया, टाइम से देख रेख नहीं किया, या फिर उसकी पट्टी सर्जरी सही से नहीं हुई
0: जी,
1: तो उनके साथ वाले डॉग्स ही उनको फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते
0: जी।
1: तो वहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है कि फिर अब इस डॉग को परमानेंट शेल्टर रखा जाए, और शेल्टर में जो बीमार घायल डॉग्स आते हैं उनसे इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता
0: डर रहता है।
1: तो अभी जैसे भी हम रख रखाव जो है वो सिंपल है और बहुत अच्छा है, जितना बेहतर कर सकता हूँ मैं उतना मैं बेहतर किया हुआ है
0: जी। तो देखिए भाई, अगर आपके पास कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं या आप कहीं पर रहते हैं फरीदाबाद शहर में, और ऐसे इस हमारे शहर में कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ तो ये इतनी बार ऐसा होता है कि लोग मुझे फ़ोन करके अक्सर ये कहते हैं कि मैम यहाँ पर एक इस तरीके की पशु है या कोई डॉग है, इसे रेस्क्यू करवाना है, और मैं ऐसी शायद एक दिन में 4 या 5 कॉल्स ज़रूर लेती हूँ। इट्स वेरी ओबियस, बट होता क्या है कि लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हम ऐसे में क्या करें। सो क्या करें का जवाब ये होता है कि हमारे पास अलग अलग किस्म के डॉग शेल्टर्स हैं, जो हमारे पूरे फरीदाबाद शहर में अलग अलग एनजीओस के साथ रजिस्टर्ड हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से एनजीओस के साथ ऑपरेट करने वाले डॉग शेल्टर्स जो हैं, इन शेल्टर्स या बोर्डिंग हाउसेस के एक चार्ज होता है, एक मिनिमम पैसा आपको देना पड़ता है। बट अगर आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में जुड़ना चाहते हैं, सो आप और कुछ नहीं, गौकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार के डॉग को अगर रेफर करना चाहते हैं या रेस्क्यू करवाना चाहते हैं, सो कुछ समय के लिए वो वहां पर रह सकता है। सो ये प्रोविजन है कि किस प्रकार से गौकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद फंक्शन करती है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, एक बेहतरीन सा गाना और वापस लौट कर यहीं आना। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गोखुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। धीरज, अब अगला सवाल आपसे ये कि हमारा रेडियो जो है ये दिल्ली NCR में सुना जाता है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कहां कहां से डॉग्स को रेस्क्यू करवा सकते हैं। सो क्या आप पूरे फरीदाबाद में ये काम करते हैं, और अगर हाँ तो प्रोसीजर क्या होता है? क्या कोई आपको फोन करे? अगर फोन करे उसके बाद वो क्या दे आपको लोकेशन डिटेल, किस प्रकार से कैसे रेस्क्यू करते हैं, कैसे वापस पहुंचाते हैं, और कोई मिनिमम चार्जेस नहीं है, तो ये ऑपरेशन होता कैसे है?
1: जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये मुझे लगता है ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये आम जन तक जो डॉग लवर हैं, जो नहीं भी हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है संस्थाओं की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी संस्था जो है वो नीमका विलेज के पास है
0: जी,
1: नीमका तिगांव मास्टर रोड पे है
0: जी,
1: सेक्टर 72 पड़ेगा। हम बदरपुर से लेकर बल्लभगढ़ तक हमारा एरिया है
0: जी।
1: हम फ्री होते हैं, कहीं से भी कॉल आए
0: जी
1: हम उसको रेस्क्यू करते ही करते हैं
0: जी।
1: आपको एक चीज़ और मैं बीच में समझाना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग लवर हैं वो अफोर्डेबल हैं, और जो अफोर्डेबल डॉग लवर्स हैं वो प्राइवेट, वो दिखाते भी प्राइवेट हैं, और प्राइवेट पेड बोर्डिंग में, डे बोर्डिंग में वो रख रखाव भी करते हैं
0: जी।
1: ज़्यादातर संस्थाएँ जो हैं वो ये करती हैं कि सभी, जैसे एक मिडिल क्लास लोअर क्लास कोई अगर है, मान लीजिए कोई ऑफिस जा रहा है और एक जेन्युइन डॉग लवर है, इंसानियत के नाते वो कई संस्थाओं को कॉल किया, रुक करके एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है डॉग्स, तो संस्थाएं नकार देती हैं। इसका रीज़न ये है कि संस्थाओं के पास लिमिटेड स्पेस है
0: जी,
1: और चुनिंदा लोगों को आप एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों के अगर रेफरेंस से या सोर्सेज से अगर वहाँ उनके तक बात पहुँचती है
0: जी,
1: तो वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं
0: जी।
1: तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमारी जो संस्था है वो हमारे पास बिल्कुल नॉन अफोर्डेबल लोग
0: जी
1: आते हैं। इसमें फरीदाबाद की कई सारी संस्थाएं हैं जिनके पास वो ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, जब बोर्डिंग की बात आती है तो वो लोग मेरा नंबर देते हैं, और मैं वेरी हैप्पी कि वो लोग मुझे इस लायक समझते हैं। और कई बार उन संस्थाओं में सर्जरी होती है, और जब तक वो ठीक होते हैं वो हमारे जो रिकवरी का टाइम है उनका हमारे शेल्टर पे होता है
0: जी।
1: तो ज़्यादातर हमारे पास जो कॉल्स आते हैं वो नॉन अफोर्डेबल लोगों के आते हैं, इसलिए मैं उनका कॉल सबसे पहले प्रेफर करता हूँ, मैं उनका कॉल पहले लेता हूँ
0: जी।
1: क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग लवर हैं फरीदाबाद ही नहीं पूरे इंडिया में, वो लोग पेट जो डे बोर्डिंग है वहीं पे प्रेफर करते हैं।
0: ओब्वियसली
1: जी।
0: सो अगर देखिए आपका पेट है तो आपको किसी संस्था के पास जाने की जरूरत नहीं है,
1: नहीं, मैं
0: क्योंकि वो जो संस्था है वो तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम कर रही है। अब मैं अगर स्ट्रीट डॉग की बात करती हूँ, और आप बात कर रहे हैं कि हम जब स्ट्रीट डॉग को उठाते हैं, सो उसका धीरज प्रोसीजर क्या होता है? मान लीजिए आपने, आपको किसी ने कॉल किया
1: जी,
0: सो कॉल करने के बाद कितने समय में आप उस डॉग को रेस्क्यू करवा लेते हैं, और फिर कितने दिन लगते हैं, और फिर क्या डॉग को आप वापस उसी के हैबिटेट पर छोड़ते हैं?
1: जी मैम, अगर हमें कोई कॉल करता है तो सबसे पहले हम उनसे लोकेशन और एक वीडियो मांगते हैं, वीडियो नहीं है तो फोटो। रीज़न, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कुछ ऐसे भी डॉग लवर नहीं है, बट उनको लगता है कि यार ये डॉग बड़ा भौंक रहा है, बड़ा काट रहा है, तो फिर इसलिए भी कॉल कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले लोकेशन और एक वीडियो चाहिए होता है, ताकि हम देख भी पाते हैं कि अगर हम इमरजेंसी है, काफ़ी इमरजेंसी है, तो फटाफट क्विकली निकल जाए। अगर मान लीजिए तो किसी को मैगट्स बोंड है और वो डॉग वहीं पर रहता है, हम पूरा पता कर लेते हैं कि अगर डॉग वहीं का है, वहीं रहता है, तो हम एक घंटे बाद में भी, अब जैसे मैं किसी डॉक्टर के यहाँ ट्रीट करा रहा हूँ, किसी का कॉल आया कि काफ़ी मैगट्स बोंड वाला एक डॉग है जी, ये कहीं से आ गया है, तो ऐसे केसेस में फिर हम लोकेशन लेते ही, हम वीडियो भेजें ना भेजें, करंट लोकेशन मंगाते हैं और प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और ऐसे जो डॉग्स हैं, कुछ बीमारियां हैं, अब जैसे मैगट्स बोंड है, अगर छोटा मैगट्स बोंड है 15 दिन में वो हील हो जाता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहे हैं, टाइमली दवाइयाँ दे रहे हैं, तो वो 10 से 15 दिन में रिकवर हो जाता है। अगर वही कोई फ्रैक्चर है, सपोज कीजिए उसकी सर्जरी हुई है, तो 1 मंथ लग जाता है। अगर किसी डॉग को माइनर फ्रैक्चर है, अगर हमें पट्टी प्लास्टर या फाइबर कास्ट प्लास्टर अगर हमने कराया है, तो वो मुश्किल से 20 दिन में रिकवर हो जाता है। तो हमें भी, जो मैं पहले ही बताया आपको कि जल्दी होती है कि रिकवर होते ही इनको वापस जगह पे छोड़ें
0: जी।
1: मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी समय लग गया मैं भी गलतियों से सीखा
0: जी,
1: कि जब भी हम स्ट्रे डॉग उठाते हैं हम डॉग को फ्रेश फूड देते हैं। डॉग्स जब बाहर, स्ट्रे डॉग जब बाहर खाता है, कई बार वो इन्फेक्टेड चीज़ें खाता है, तो उसकी डिवॉर्मिंग ऑटोमेटिक हो जाती है
0: जी।
1: ठीक है, जब हम डॉग्स को उठा के ले जाके एक लंबे समय तक रखते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीने, तो डॉग्स को हम डीवर्मिंग नहीं कराते हैं टाइम से
0: जी।
1: कई बार डॉग बड़ा कमज़ोर हो जाता था, तो मेरी डॉक्टर से शिकायत होती थी कि सर मैं क्या करूँ, इतना अच्छा खाना दे रहा हूँ, इतनी अच्छी मतलब अच्छे क्वालिटी का खाना दे रहा हूँ, अच्छा खाना प्रोवाइड करा रहा हूँ, विटामिन प्रोटीन सब इनको मिल रहा है, दवाइयाँ भी अच्छी मिल रही हैं। फिर तो बड़े एक डॉक्टर समझाए हमें कि आप इनकी डीवर्मिंग टाइम से करो, जैसे आपके आते हैं इनकी डीवर्मिंग टाइम से करो। तो कई बार ऐसे भी होता है कि संस्थाओं में हमने भेज दिया
0: जी,
1: उसकी अच्छे से केयर नहीं हो पाई, क्योंकि स्ट्रे डॉग के लिए चाहे कोई भी संस्था हो, जो संस्थाएं दावा करती हैं वो एक्चुअल में होता नहीं है धरातल पे
0: जी।
1: एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, धरातल पर जैसे आप फरीदाबाद में रहती हैं, हर संस्थाएं एक दावा करती है कि मेरे पास 24 घंटा ओपीडी सर्विसेज हैं
0: जी,
1: लेकिन सच्चाई यह है कि 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद अगर कोई कुत्ता एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, अगर आप खुद से ही हिम्मत करके अपनी गाड़ी में लेकर गए किसी संस्था के यहाँ, तो सच्चाई यह है कि उनके पास एक वेल ट्रेंड पैरावेट भी नहीं होता
0: जी।
1: ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं कागजी बात नहीं, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो बेजुबान है
0: जी।
1: वो आपसे आकर के नहीं बताएंगे कि देखो हमारे बारे में ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं
0: जी।
1: तो ऐसे में मैं फिर से उन डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो 2 बजे रात को भी हमारे लिए उठ के आ जाते हैं
0: जी।
1: उनको पता है मैं, और ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, कई बार पैसे देता भी नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब अभी लेके नहीं आया, नहीं आया, और वो अपनी इंसानियत के नाते वो आते भी हैं, उनको ट्रीट भी करते हैं। मेरा मानना है अगर महीने में अगर 10 भी ऐसे डॉग का हमने जान बचा लिया, तो मेरे संस्था खोलने का या संस्था चलाने मेरा सार्थक हो गया।
0: सो भाई देखिए, अगर आप इस पूरी बातों को सुन रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये एक पूरी प्रोसेस है तो मेटिक्यूलस, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कितनी इमरजेंसी है, साथ के साथ कहाँ पहुँचना है, क्या उसके लिए हमारे पास वेट और साथ के साथ रेस्क्यू करने वाले लोग और व्हीकल अवेलेबल है या नहीं, और ये सारी चीज़ें अगर हो तो उसके बाद पहुँचने का समय। सो कई बार आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं हमने संस्था में कॉल किया लेकिन वो समय पर आए नहीं। सो ये भी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं आई एम श्योर जो कि अक्सर ये फेस करते होंगे। पूछूंगी उसके बारे में, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो मेंबर ट्रस्टी हैं गोकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद से। धीरज, अब एक बड़ा अहम सवाल हमारे, अगर हम पूरे फरीदाबाद शहर में ही देखें, सो मैं ये देखूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पशुओं से प्यार है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नफरत है, उनकी गली में अगर कोई कुत्ता है या डॉग है तो वो उसको आते जाते कोशिश करेंगे कि कभी खाना दे दें। कई बार तो बहुत सारे लोग हैं जो बिस्किट्स भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, चावल ब्रेड सुबह शाम का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम इन पेट्स को रखने की या इनके रखरखाव की बात करते हैं तो अपने आप में ये बड़ा कठिन होता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई ये संस्था का काम है, क्योंकि इसके लिए आपने एक जिम्मेदारी लिया, आपने एक संस्था चलाई है। सो क्या एक आम नागरिक भी इसमें कुछ मदद कर सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, क्या भूमिका निभा सकता है एक आम नागरिक?
1: जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं एक चीज बताऊं कि आजकल डॉग का जो समस्या है वो एक्चुअली समस्या है नहीं, हमें थोड़ा सा अगर हम समझदारी दिखाएं तो वो समस्या हम उसी जगह खत्म कर सकते हैं।
0: जी,
1: जैसे मान लीजिए किसी सोसाइटी में डॉग्स हैं, RWA बार एसोसिएशन की गाइडलाइंस है।
0: जी,
1: RWA बार एसोसिएशन की गाइडलाइंस है कि इनसाइड सोसाइटी जितने भी डॉग्स हैं उनको टाइम से वैक्सीनेट कराना, उनके लिए हर 100 से 125 मीटर पे एक फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित करना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके उनकी निगरानी में उनके साथ एक उसको वहाँ पे फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित करना, ताकि कोई भी रेसिडेंट्स खाना उनको दे सके।
0: जी,
1: इससे ये होगा कि जो फीडर हैं कहीं भी फीड करा देते हैं, कोई अपने घर के बाहर फीड करा देता है, ये ना हो। क्योंकि कई बार जब एज ए डॉग लवर मैं भी अगर अपने घर के सामने खाना खिला रहा हूँ तो कुछ डॉग अटेंडेंसी दिखाने के चक्कर में बेशक को बाइट करे ना करे पर बाइट करने के लिए भागता है
0: जी
1: पीछे, ये सच्चाई है। अब समझना ये पड़ेगा कि इस चीज़ को लेकर के RWA के जो मेंबर्स हैं वो नॉलेज ही नहीं है उन्हें, और अगर नॉलेज है तो करना नहीं चाहते, वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स का कारण है। दूसरी बात, अगर हम एज ए डॉग लवर, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम किसी डॉग्स का हेल्प करना चाहते हैं तो संस्था हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट्स

0: गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर दिया जाता है जिसको ABC यूनिट्स बोलते हैं, नसबंदी सेंटर, स्टेलाइजेशन सेंटर। तो एक प्रोसेस है उसका छोटा सा कि आप MCF में कॉल करें, वो आपको कॉल फॉरवर्ड करेंगे यहाँ, या अगर आप कोई RW दे रहा है तो एक आपको लिखित में देना पड़ेगा डिटेल्स कि इतने डॉग्स हमारे हैं, फीडर के साथ मिल करके उसको उठा करके नसबंदी करवा दिया जाए ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। और जब डॉग की सर्जरी हो जाती है तो उनका एग्रेशन कम हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि सोसाइटियों में या कहीं भी कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, 4-6 कुत्ते लग गए पीछे, कई बार बाइक बाइट भी कर लिया, कई बार वो गिर भी जाते हैं, कई बार बड़ी हादसाएँ भी हुई हैं।
1: जी,
0: बजाय इसके सॉल्यूशन के हम लड़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग मेरे बात से नाराज़ होंगे, कुछ डॉग लवर जो हैं वो सेल्फ एजुकेट नहीं है।
1: जी,
0: उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं गए, गाली का जो बदला है वो गाली से निकल जाएगा, किसी ने डॉग्स को हिट किया है तो हम भी उसको फिजिकली असॉल्ट कर दें, हिट कर दें तो जस्टिस मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप जब काफ़ी डीपली जाएंगी तो देखेंगी कि अगर किसी को आप जा करके कोई डॉग किसी के घर के में बच्चे को डॉग बाइट कर लिया, आप जाकर उसको समझाने के बजाय, उसको ये चीज़ें बताने के बजाय, एज ए संस्था, एज ए डॉग लवर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है, एक इंसानियत के नाते भी, एक संस्था चलाने के नाते भी, कि हम उन्हें चीज़ समझाएँ कि इस किसी न किसी कमी की वजह से काटा है, हो सकता है कि आपके बच्चे उसे छेड़े हों या ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के डेट में लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल का कैमरा।
1: जी,
0: क्योंकि कैमरा ऑन होते ही लोग अपना आपा खो देते हैं, उनको ये समझ ही नहीं है कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, हमारे सामने कितने उम्र के लोग खड़े हैं। ठीक है, देखो अगर कोई एक कुत्ते को हिट करेगा वापस तो हम नहीं ला सकते ना, पर बजाय उसको समझाने के, बजाय उसके समस्या उसके समाधान के, हम अगर वहाँ लड़ाई कर लें तो जरा इमेजिन कीजिए कि वहाँ अगर 25 लोग या 50 लोग हों तो वो तो एक हेटर बन गए ना। लेकिन वैसे ही अगर आप जा करके आप अगर उनको समझाते हैं, वो चीज़ बताते हैं, और एज ए संस्था के संचालक आप पूरे फरीदाबाद में, मैं आपके तो पूरे दिल्ली NCR में सुना जाता है, मेरे पास 28 ऐसे डॉग थे, अभी 14 डॉग मेरे पास हैं जो सोसाइटियों के डॉग्स हैं, जो डॉग सच में वो काटते हैं,
1: बाकी
0: दौड़ते हैं, और वो कई बच्चों को काट चुके हैं। मैं प्रूफ उनसे लेता हूं पहले, और उन बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने संस्था में 1-2 महीने रखता हूं, और मैं ट्रेंड कैसे कराता हूं, भावना जी आपको बड़ी हैरानी होगी, मेरी 3 बेटियां हैं, जो मेरी बड़ी बेटी है 7 साल की है, मैं उन तीनों बच्चों से फीड करवाता हूं उसे, और मैं इतना फ्रेंडली करके भेजता हूं कि अगली बार मैं जाऊं तो जिसने मेरे को भेजा है ना, वो ये ना बोले कि इसे रिलोकेट कर दो, बल्कि उसे देखे और खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। तो होता क्या है कि जब आप कुछ अच्छी पहल नहीं करोगे आप, तो जो डॉग हेटर हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और आज के डेट में सबसे बड़ा कारण है डॉग लवर का ये इस तरह की हरकतें।
1: जी
0: जी,
1: सो दोस्तों देखिए भाई, एक तरफ तो मैं कहती हूँ कि कठिन क्यों है इन सबको संभालना, अपने आप में देखिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एक और बड़ी समस्या है, और वो समस्या है कि आजकल दो पार्टियां बढ़ गई हैं, एक पार्टी है डॉग लवर्स की और दूसरी पार्टी हो गई है डॉग हेटर्स की। अब हेटर्स के बिल्कुल जायज बात है भाई, उनके परिवार के सदस्यों को या उनके परिवार के बच्चों को या किसी को भी अगर कोई खुदा ना खासा डॉग काट लेता है तो उनका नाराज होना जायज है। और जिस तरीके से हम बहुत सारी आजकल इंसिडेंट्स देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे कुत्ते मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं, सो ऐसी वीडियोस देखकर ऑटोमेटिकली बिल्कुल वाजिब है कि आपको भी ऐसा महसूस हो। लेकिन इस सब के पीछे फिर वही बात कि हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सो शायद कई बार ऐसा जरूरी है कि आम नागरिक के रूप में हमें बेसिक प्रॉब्लम के पीछे की जानकारी लेना जरूरी है और सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, ना कि सिर्फ दो कैटेगरीज में बटके झगड़ा करना। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। धीरज जी, आप मुझे ये बताइए, आपने जब से इस एनजीओ का गठन किया और जब से आप बहुत सारे डॉग्स को इस तरीके से प्यार करते आए हैं, ट्रीट करते आए हैं, चैलेंज क्या आता है, क्या लगता है, क्या परेशानी है, क्या आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लगता है एक्सेप्टेंस की कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि अब आज का जो समाज है उसमें हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को प्यार भी कर रहे हैं, जानवरों को प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं। अब आप देखिए ना, सड़क पर आप जा रहे हैं, आप बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और सडनली अगर आपकी गाड़ी के सामने से कोई एक डॉग निकल कर आता है और कहीं क्रॉस करता है, तो आपको स्वाभाविक है आपको नाराजगी होगी, आप ब्रेक लगाएंगे। कई बार आपकी गाड़ी में आपको ऐसा भी होता है कि आप पीछे वाली गाड़ी आकर आपसे टकरा जाती है, सो बहुत सारी चीजें हैं
1: जी। मुझे लगता है अब तक का ये सबसे अच्छा सवाल है
0: जी।
1: देखिए, चैलेंजेस कुछ नहीं आती हैं
0: जी।
1: एक तो सबसे बड़ा है, आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है,
0: और
1: किसी भी समस्या का जो समाधान है
0: जी,
1: वो अगर आप सरल तरीके से करने चलें तो बहुत आसान है
0: जी।
1: मैं आपको बताऊं, पूरे फरीदाबाद में आप शायद पता है नहीं, मुझे नहीं पता, डॉग से की 3 बीमारियां जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं, जिसमें 2 बीमारियां, एक तो इंसानों के लिए जानलेवा है जिसको हम रेबीज बोलते हैं
0: जी,
1: जो रेबीज वाले डॉग हैं वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनका सलाइवा से लेकर के। किसी भी संस्था के पास 10x10 के एक कमरे तक नहीं है, क्योंकि रेबीज हुआ तो मरना ही मरना है, लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज ही नहीं है उसका। तो हर संस्था को चाहिए कि एक हम कमरा ऐसा बना के रखें कि कहीं भी रेबीज का डॉग हो, उसको इमीजिएटली उठा करके उसको आइसोलेट किया जाए, ताकि इंसान और कुत्तों के साथ साथ इंसानों को भी हार्म न पहुंचे। दूसरा, कभी भी हम डॉग्स के लिए जाते हैं कहीं किसी भी तरह की हेल्प करने, तो डॉग लवर से मेरी व्यक्तिगत उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने एग्रेशन को कम करके जाएं, सद्बुद्धि का प्रयोग करें, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि गाली का समाधान गाली नहीं हो सकता,
0: ठीक है।
1: और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है जो हेटर की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो ABC प्रोग्राम है, उसमें गवर्नमेंट ने जो टेंडर देता है और जो भी प्राइवेट संस्थाएं लेती हैं
0: जी,
1: वो अपना काम ठीक से नहीं करती। हर 5-3 साल पे टेंडर बदल जाता है, नए लोग आ जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहता है, 500 किया, 5000 बताया, दिखाया। तो उनका भी, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि आपके पास डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है, आपके पास हर वो सुविधाएं हैं, आपके पास CSR है, प्राइवेट बड़े अच्छे अच्छे डोनर्स हैं, आपको अपनी इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए और उसी को दिखाते हुए कम से कम अच्छा काम करना चाहिए, ताकि एक शहर में आप मिसाल बन सकें। ये मेरा उन सभी संस्थाओं से रिक्वेस्ट है जो अभी हैं और जिन्हें आगे भी टेंडर मिलने वाला है, अगर वो आपके माध्यम से ये मेरी बात सुने, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे ये आग्रह करूँगा कि इस प्रोग्राम को आप ईमानदारी से कीजिए। मुझे लगता है 50% पूरे फरीदाबाद की समस्या यहीं पर समाधान है।
0: धीरज जी, वाकई सही कहा आपने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं, और अगर हम सॉल्यूशंस पर काम करें तो डेफिनेटली हम ये अचीव कर सकते हैं कि ये जितनी प्रॉब्लम्स हमको सड़कों पर नजर आती हैं, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद से। धीरज जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं यही आपसे, आपके माध्यम से फरीदाबाद वालों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं भी आप बीमार, घायल, ऐसा कोई जानवर

0: देखते हैं कुत्ता बिल्ली बंदर, कई बार शॉर्ट सर्किट भी लग जाता है बंदरों को।
1: यस।
0: तो मेरे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल बोर्डिंग है
1: जी,
0: आप रेस्क्यू करा सकते हैं। आप अगर अफोर्डेबल है, अपने आपका कोई डॉक्टर है, आप वहाँ ट्रीट करा कर भी हमारे यहाँ फ्री में रखाव है, खाना उनका है, लाना ले जाना है, कोई चार्ज ना आज तक हमने किसी से किया है, ना मांगा है, ना परमात्मा करेगी आगे हम मांगे किसी से
1: जी।
0: मेरी यही सेवा है। और अभी एक हमने नया प्रोग्राम शुरू किया है टेको वेदांता ग्रुप से
1: जी,
0: जो फ्री ऑफ कॉस्ट एस्टरलाइजेशन का, अगर आपके गलियों में आपके सोसाइटीज़ में डॉग हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हेल्प कीजिए उनको रेस्क्यू कराने में, हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टरलाइज कराकर वापस ठीक होने के बाद आपके यहाँ लोकेशन पे छोड़ देंगे।
1: क्या बात है। सो भाई देखिए दोस्तों, अगर आपको आज तक लगता था कि कौन सी ऐसी संस्था है जो आपकी गली के जितने भी डॉग्स हैं उन्हें स्टरलाइज कर देगी समय पर, अगर मान लीजिए कि उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है सो उन्हें ठीक करके वापस आपकी ही लोकेशन पर छोड़ देगी, तो अब आपके पास एक ऐसी संस्था है जो ये सारा काम करती है, और वो है गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद। धीरज जी से आज बहुत सारी बात हुई, तहे दिल से धन्यवाद धीरज जी, आज आप आए और आपने अपनी इतनी बेहतरीन बातें और जानकारी गौ कुटीर सेवा समिति के बारे में हमसे साझा की।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगे आपके साथ, और मानवता की राह पर हम चलेंगे एक और ऐसी ही मानवता भरे काम करने वाली संस्था के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: हाय, मैं हूं गगन नारंग एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानव रचना 107.8।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये जो सुहानी सी शाम होती है ना, ये शाम वक्त होता है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट का। आप सभी को पता है कि लंबे समय से आरजे भावना आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आती है, और इसमें आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती है जो सशक्त हैं, जो सशक्तिकरण फैला रही हैं, और जिन्हें मैं ये कहती हूँ सशक्तिकरण का अथक एग्जाम्पल। आज इस कड़ी में हम जिनसे मिलने वाले हैं वो ना सिर्फ एक सीजन प्रोफेशनल है, लेकिन एक ऐसी महिला है जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि हम आज के जमाने में ऐसे लोग ढूंढते हैं जिन्हें हम कहते हैं बैलेंस्ड, जो पुरानी पीढ़ी को साथ लेकर चल रहे हों और इस पीढ़ी में जीते हुए आने वाली पीढ़ी को गाइडेंस दे रहे हों। तृप्ति सिंह जी इसका अथक एग्जाम्पल है। तृप्ति सिंह जी फाउंडर है गठजोड़ की, साथ के साथ एक बहुत ही जानी मानी टेडेक स्पीकर है, इवेंट क्यूरेटर है, और इनका एक बहुत ही खास ग्रुप है, और मुझे नहीं पता अगर आप इस ग्रुप के अंदर एक हिस्सा रखते हैं या आप इस ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप है फाउंडर ऑफ गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन। भाई ये एक फेसबुक का ग्रुप है लेकिन बहुत ही फेमस ग्रुप है। सो अलग अलग किस्म की चीजें ये करती हैं, लेकिन इनकी एक खास खूबी है कि ये पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में बड़ी खूबसूरती से लेकर चल रही हैं। तृप्ति जी आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
3: थैंक यू सो मच भावना, एंड थैंक यू टू ऑल दी लिसनर्स। एंड भावना आपने मुझे समय दिया आपके इस शो में हिस्सा बनने के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट।
1: तृप्ति जी, इस कार्यक्रम का नाम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, और वी से मेरा हमेशा से मतलब होता है महिलाएं एक साथ आ जाएं एज वी। सो मैं हर महिला से एक सवाल पूछती हूँ, और वो सवाल होता है कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। सो क्या कहेंगे आप?
3: मेरे हिसाब से जब आपके शब्दों को इम्पोर्टेंस मिलती है, सपोज आप एक कमरे में हैं और आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपके शब्दों को सुनने के लिए लोग वेट करें, उसको महत्व दें और उसको वैल्यू करें कि आप बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा, वो वुमेन एम्पावरमेंट है मेरे लिए। देखिए, सब आजकल कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो जरूरी भी है, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के साथ साथ में आप जब बोल रहे हैं तो आपकी उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए, आपके शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए। मेरे लिए वो शब्द अगर वैल्यूबल है तो आप एम्पावर्ड हैं।
1: वाकई देखिए, महिला सशक्तिकरण की जो डेफिनेशन है ना, वो हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। सो शायद जैसे तृप्ति जी ने कहा, किसी के लिए ये पैसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए ये शायद सिर्फ फ्रीडम है, बट बहुत सारे लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन अलग मायने रखती है। सो आप क्या सोचती हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, मुझे जरूर बता सकती हैं 8010781078 पर। फिलहाल वक्त है एक प्यारे से गाने का, आप जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी में। आज हम बात कर रहे हैं तृप्ति सिंह जी से, जो फाउंडर हैं गठजोड़ की, टेडेक्स स्पीकर हैं, इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, अब अगला सवाल, आज के जमाने की मैं अगर बात करूं तो महिलाएं काफी बदल रही हैं, और धीरे धीरे अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति लोगों का माइंडसेट थोड़ा थोड़ा तो बदल रहा है, पर अगर मैं बात करूं इसके कंप्लीट बदलाव की, सो महिलाओं को अगर सशक्तिकरण पाना है समाज में तो उसके लिए क्या एक ऐसी चीज है जो उन्हें बदलने की जरूरत है?
1: देखो, जैसे एक इंग्लिश में कहावत है ना, द चेंज बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हम घर में अपने महिलाओं की वैल्यू करना शुरू करेंगे और घर में अपने घर की बहन बेटियों को, बहुओं को ऐसा मौका देंगे कि एक रोल जो होता है ना, रोल प्ले जैसे करते हैं, उनको वो जिम्मेदारी देंगे और भरोसा रखेंगे कि वो जिम्मेदारी निभा सकती है, वो विश्वास, तो उनको वो कॉन्फिडेंस घर से ही आना शुरू होगा। ठीक है, बाहर आउटर वर्ल्ड में वो तभी चीजें फेस कर पाएंगी जब घर पे हम उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेके और उनको ये महत्व जो है उनकी लाइफ का उनको समझाएं। तो आई एम श्योर whenever they'll face the outer world, they'll position themselves in a manner के वो चीजें कर सकती है, वो confidence है कि वो दुनिया को भी एक अलग तरह से फेस कर सकती है। तो confidence तो घर से देना ही शुरू करना पड़ेगा, और बदलाव जैसे मैंने बोला घर से ही शुरू होता है। चाहे आप अपने आप से शुरू करेंगे तभी आप आसपास के लोगों को बदलाव में लाना शुरू कर सकते हैं।
0: वाकई दोस्तों, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक सशक्त समाज हो, हम चाहते हैं कि सशक्तिकरण हर महिला का अधिकार बने, तो उसके लिए शायद शुरुआत हमारे घर से हो रही है। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं तृप्ति सिंह जी से। तृप्ति जी जो कि फाउंडर हैं गठजोड़ की, एक टेडेक्स स्पीकर हैं, की इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल और वो आपके गठजोड़ से है। आज भी आप अगर देखा जाए तो पूरे समाज को अपने कल्चर्स ट्रेडिशंस की बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश भी कर रही हैं और कुछ ऐसे रिवाज हैं जिन्हें आप संजोने की कोशिश कर रही हैं। सो किस प्रकार कर रही हैं ये काम?
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो रीति रिवाज हमको हमारे पूर्वजों ने दिए, हमारे माँ बाप ने, उनको उनके पेरेंट्स ने दिए, सो वी आर जस्ट द कस्टोडियन ऑफ दोज रिचुअल्स। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमें मिला है उनको एज सेव करके हम नेक्स्ट जनरेशन को दें। अगर हम उसको नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देंगे तो हम अपना रोल ढंग से नहीं प्ले कर रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा रिचुअल हो, चाहे आपके घर का कोई मेंबर घर से बाहर जा रहा हो कोई शुभ काम के लिए, तो उनको गुड़ और दही का एक निवाला देना जाने से पहले, सिंपल सा एग्जांपल है, चाहे वो हो, चाहे कोई बड़ा काम आप शुरू कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करनी हो या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी पूजा करनी हो। और ये हर फैमिली का, हर कम्युनिटी के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो जैसे शादी ब्याह के कोई रिचुअल्स हैं तो हर रिचुअल के पीछे जो कहानी होती है, अगर हम उस कहानी को जान सकें, उसको शेयर कर सकें दूसरी जनरेशन के साथ में, आने वाली पीढ़ी के साथ में, तो उनको समझ में आएगा कि इस रिचुअल का मतलब क्यों है और ये क्यों किया जाता है। ऐसे ही तो कोई रिचुअल नहीं आ गया है, हर रिचुअल के पीछे कहानी है। तो उसको जब तक हम साझा नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ी के साथ में, वो कैसे सीखेंगे? क्योंकि देखिए, टीवी से, डॉक्यूमेंट्री से, वो तो वो अपनी अपना कल्चर सिखा रहे हैं, टीवी डॉक्यूमेंट्री अगर हम बात करें तो, बट आपके खुद के परिवार की जो हिस्ट्री है और हर कम्युनिटी का जो रिचुअल है, जब तक हम नई पीढ़ी को नहीं सिखाएंगे, हम शायद उनको किसी ना किसी चीज से वंचित रख रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बहुत जरूरी है आपको अपना कल्चर अपने बच्चों के साथ में साझा करना।
0: वाकई ये बात तो मैं हमेशा मानती हूँ, इनफैक्ट आई ऑलवेज एंडोर्स ऑल्सो कि ना, अगर हम अपनी सोसाइटी को और हमारे ही रिवाजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाज के जो फ्रेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें तो हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन जो हमारे रिवाज हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको कहीं सिखाने में हम पीछे रह जाते हैं। इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक अहम कारण मुझे ऐसा लगता है, भागती हुई जिंदगी, जहां पर कि किसी के पास भी ठहर कर पलट कर शायद इतना समय ही नहीं है कि वो इन सारी चीजों को महसूस कर सकें और आने वाली पीढ़ी को समझा सकें।
1: आपने पूछा कि आप इसमें कैसे

0: साझा कर रहे हैं
1: जी।
0: तो मैंने छोटे छोटे रिचुअल्स को लिखना शुरू किया
1: जी।
0: अपने अकाउंट पे उसको डिटेल में शेयर करना शुरू किया। लिखने से पहले अब जैसे हर, अगर आप स्टेट की बात करें, हर स्टेट में हम लोगों के, जैसे अगर मैं स्पेशली राजस्थान की बात करूं तो एक कहावत है कि हर 30 कोस में बोली भी बदलती है, रीति रिवाज भी बदलता है और कहीं कहीं पहनावा भी बदलता है। तो रिवाज बदलते हैं हर 30 कोस में। सो बिफोर राइटिंग एनी रिचुअल आई स्पीक टू मल्टीपल लेडीज, ओल्ड लेडीज, टू अंडरस्टैंड कि उनकी जगह में ये रिचुअल है कि नहीं, और अगर है तो इसको कैसे आप थोड़ा सा बदलाव लाके और करते हैं। सो बिफोर राइटिंग आई टेक देयर नोट्स, सबके नोट्स इकट्ठे करके देन आई राइट द बेस्ट इजिएस्ट वे सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। एंड उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमने जब जब उसको साझा किया है, और लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया है। और मुझे खुशी होती है कि ये सिर्फ राजस्थान के लोग नहीं, राजस्थान के बाहर के लोग भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे यहाँ पे भी ये हम फॉलो करते हैं, ऐसा होता है। और बहुत बड़े लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ होता है पर हमें इसके पीछे का मतलब नहीं पता। तो जैसे मैंने बोला, हर रिचुअल के पीछे मतलब छिपा होता है। अगर उस मतलब को हम नहीं साझा करेंगे तो हमारे रिवाज विलुप्त होते जाएंगे।
1: तो भाई, इन विलुप्त होते हुए समाज के रिवाजों को अगर आप संजोना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक नहीं बहुत सारी तृप्ति सिंह की ज़रूरत है, जो समाज में इन रिवाजों को जिंदा रख के आने वाली पीढ़ी को समझाएं। और साथ के साथ हर घर में हमें ज़रूरत है कि हम इन रिवाजों को भूलें नहीं। मॉडर्न और ग्लोबल दोनों ही आउटलुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने रिवाजों का या अपने ट्रेडिशंस का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आऊंगी, करेंगे ढेर सारी बातें। बहुत ही खास आज हमारी गेस्ट है तृप्ति सिंह जी के साथ, बट आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की रिवाजों की, पर चलिए भाई अब तृप्ति सिंह जी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये खुद एक सशक्त महिला है, बट हम सब महिलाएं जिंदगी में कोई ना कोई एक सशक्तिकरण भरा एक ऐसा डिसीजन जरूर लेती हैं। सो तृप्ति जी, अगर मैं आपकी सशक्तिकरण की जर्नी के बारे में बात करूं, सो क्या आप जिंदगी में पलट कर एक बार देखना चाहें और याद करना चाहें कोई एक ऐसा डिसीजन जो आपने लिया, आपको महसूस हुआ दिस वाज एन इम्पार्ट डिसीजन, लेकिन उसके बाद आपने कभी रिग्रेट नहीं किया, उसे लेकर खुशी हुई?
1: भावना, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करती हूँ। आई कम फ्रॉम राजपूत कम्युनिटी और उसको करते हुए मेरे को 1.5 दशक से भी ज्यादा हो गया है। और मैंने बहुत 1.5 दशक में मैंने ऑलमोस्ट 10 years एंड प्लस आई डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर माय वर्क। ठीक है, बहुत दिमाग में जब होता है कि जब आप अपने समय का खुद वैल्यू नहीं करोगे तो लोग आपके समय की वैल्यू नहीं करेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इवन इफ आई चार्ज अ लिटिल पेनी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड टाइम इज मनी एंड टाइम इज वैल्यूबल। ठीक है, जिस दिन मैंने ये शुरू किया मुझे खुद के मन में एक संतुष्टि हुई कि चाहे मैं 5 मिनट अपने काम के लिए किसी के साथ में साझा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप हर 5 मिनट के चार्ज करते हो, बट एक एग्जांपल है कि व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग एंड इफ यू आर चार्जिंग दैट, यू विल नॉट ओनली वैल्यू योर टाइम, द अदर पर्सन विल वैल्यू योर टाइम मोर एंड विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to value your time and prioritize your time, because आप जो काम कर रहे हैं you are making sure कि आपका घर भी आप देख रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, आप अपना बाकी काम को भी संभाल रहे हैं, but इसके साथ साथ में आप अपने आप को उस position पे रख रहे हैं कि nobody takes you for granted, nobody takes your time for granted, and I have no regret the day I started saying that I will charge for my work because I've done enough of social work. That doesn't mean I don't do it for free anymore. I do. But at the same time, I put myself in a position that now if you need my help, you need to pay for my time.
0: Wow. मतलब ये तो वाकई एक बड़ा सशक्तिकरण भरा डिसीजन था, वेयर आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग वेरी सैटिस्फाइड नाउ कि लोग न सिर्फ आपके समय की लेकिन अब हर किसी के समय की वैल्यू करने लग जाएंगे।
1: बिल्कुल, और उसमें क्या गिल्ट भी नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि बहुत बार सामने वाले को गिल्ट होता है कि वी आर टेकिंग योर टाइम एंड हेल्प एंड यू आर नॉट चार्जिंग, एंड आई यूज्ड टू से कि नहीं, आई डोंट वांट टू चार्ज फॉर माय वर्क एंड इट्स ओके, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई सॉ दैट पीपल हैव started misusing my time, so मुझे कहीं ना कहीं guilt होता था कि नहीं I can do better, चाहे वो काम 10 जगहों की जगह सिर्फ 5 जनों के लिए मैं करूं, but they should also feel comfortable taking my time, you know, and if they are paying, they have the excess of my time, जो चाहे limited हो, they have the excess, so it's a win-win situation for both, you know, so I felt happy after deciding that and God has been kind for that.
0: सो भाई ये तो तृप्ति सिंह जी हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे तो लोग और समय दोनों ही आपकी कीमत को नहीं समझेंगे, और मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ा ही सही मैसेज है जो मुझे लगता है आज के समाज में बहुत जरूरी है। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, वापस लौट कर आऊंगी आपके पास। टिल देन फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आई नो ये जो सैटरडे की शाम है ना, ये बड़ी खास होती है। आप लोग अपने चाय कॉफी लेकर रेडी हो जाते हैं कि आज एक सशक्तिकरण की कहानी सुनने को मिलेगी। आई एम श्योर कितने सारे मैसेजेस आप डिराइव करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता होगा कि आप अपनी ही जिंदगी की कहानी सुन रहे हैं। कई बार बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है और कई बार सुकून मिलता है कि हम ना सही, कोई और महिला है जो वो सपने पूरे कर रही है जो शायद आप करना चाहते हैं, है ना। सो अगर आपकी भी ऐसी कहानी है तो मुझे जरूर बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल आज के इस खास एपिसोड में बहुत ही खास गेस्ट है मेरी तृप्ति सिंह जी। ये फाउंडर है गठजोड़ की, टेडेक स्पीकर है, इवेंट क्यूरेटर है, फाउंडर है गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप, पर मैं इन्हें सशक्त महिला कहती हूँ। जिस ढंग से ये अपना जीवन जी रही हैं और आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत सा मैसेज दे रही हैं, वो वाकई मिसाल है, वाकई काबिले तारीफ है। तृप्ति जी, अब एक अहम सवाल, अगर आज के जमाने को मैं कहूँ तो मैं मॉडर्न जमाना कहूंगी, और आप भी जानती हैं कि आज की जो महिला है उसके लिए दो चीजें बड़ी मुश्किल हैं, अपने कल्चर्स और ट्रेडिशंस को जिंदा रखना और अपनी फास्ट और बिजी लाइफ को जीना। अगर आज देखें तो बहुत सारी जगह चीजें बदल रही हैं, और ऐसे में अगर मैं आज की महिलाओं के लिए आपसे चाहूं तो आप कैसे इनकरेज करेंगे उन्हें कि वो अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करें, कल्चर्स को भी फॉलो करें, लेकिन साथ के साथ अपनी वर्किंग जिंदगी है, फास्ट लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको भी बैलेंस करें।
1: सो भावना, जहाँ रिचुअल्स की बात होती है, सिर्फ महिलाएं नहीं घर के बच्चों को, बॉय एंड गर्ल दोनों को जरूरी है अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का एंड ग्रैंड पेरेंट्स का है कि अपने घर के रिचुअल्स घर के लड़का और लड़की दोनों को इक्वली सिखाएं, कि हर त्योहार का, हर ओकेशन का जो रिचुअल है दोनों को इक्वली आना चाहिए और इक्वली समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या मतलब है। क्योंकि जब उनकी शादियाँ होंगी, उनके स्पाउसेस होंगे, तो वो दोनों अपने स्पाउसेस को बता सकेंगे कि हमारी फैमिली में ऐसे होता है और ऐसे हम उसको, अब सपोज किसी का और स्पाउस साथ में जुड़ता है तो वो बता सकता है कि दोनों जने अपने अपने रिचुअल शेयर कर सकते हैं। पर अगर वो नहीं साझा करेंगे हम घर के बेटा और बेटी दोनों को, तो वो रिचुअल आगे कैसे बढ़ेगा। तो मदर एंड फादर बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जब आप रिचुअल कर रहे हैं तो बच्चों को साथ में जोड़ें और उनको रिचुअल कराने का हिस्सा बनाएं। सिंपल लॉजिक है, सिंपल एक्ट है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं उनको भी साथ साथ में पूजा की विधि समझाएं कि ये विधि है, इसको ऐसे करते हैं। उसके अलावा जैसे अगर राखी का आप त्योहार बना रहे हैं तो राखी सिर्फ राखी बांधना नहीं है, राखी बांधने के साथ साथ में वो क्यों बांधी जाती है, उसके पीछे की कहानी क्या है, बहुत सुंदर सी स्टोरीज होती है, उनको साझा करें। और जैसे मैंने बोला कि हर रिचुअल के पीछे बहुत सुंदर कहानियां हैं जो फोक टेल्स हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो फोक टेल्स उनके लिए भी एक कहते ना एक खजाना होगा। जब आप आज अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे उनके लिए एक खजाना होगा आगे अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए कि ये हमने सीखा है, ये हम तुमको आगे दे रहे हैं ताकि इसको तुम संजो के रखो। तो ये जरूरी है कि बच्चों को हर रिचुअल का पार्ट बनाए लड़का लड़की दोनों को, ताकि वो उसको बढ़ा सके रिचुअल को आगे और उसको सेलिब्रेट कर सके एक फेस्टिवल की तरह। फेस्टिवल जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फेस्टिवल के लिए वेट करें, काफी बार रिचुअल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप फेस्टिवल बना के आप एक गेट टुगेदर कर सकते हो, तो वो सिखाना बहुत जरूरी है मुझे ऐसा लगता है।
0: भाई वाकई, चाहे हमारे त्योहार हो या हमारे रिवाज, इन सबको थोड़ा सा समय निकालकर आने वाली पीढ़ी के लिए पहले सीखना और फिर सिखाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं ना बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो ये कहते हैं हमें तो खुद ही नहीं पता है कि हमारे रिवाज क्या हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे। सो इसके लिए जरूरी ये है कि जब आपके घर में रीति रिवाज किए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं, सो हम उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। मोबाइल फोन में घुसकर बाहर की जिंदगी को देखने से ज्यादा जरूरी ये होगा कि हम उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, जिससे हम अपनी संस्कृति पे गर्व कर सकें और हमें ये पता हो कि हमारी संस्कृति ऐसी क्यों है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी और उतनी ही खूबसूरत तृप्ति सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो कि फाउंडर हैं गठजोड की, टेडेक्स स्पीकर हैं, इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, ढेर सारी बातें की आपसे, लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन जाने से पहले क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगी हमारे सभी लिसनर्स को?
1: स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज आपको खुद को नहीं पता है कि आप कितने यूनिक हैं और कितना कुछ आप बदल सकते हैं इस दुनिया में। पर वो बदलाव आपसे आएगा। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप एक मिस एडवेंचर पे जाएं, बट उसका मतलब ये है कि आप जो सीख रही हैं वो आसपास में साझा करें, आसपास में हैप्पीनेस फैलाएं और देखें कितनी खुशियां होती है, ना सिर्फ आपकी लाइफ में बट आसपास में बहुत से सुंदर चेंज आएंगे।
0: तो भाई, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी इस मैसेज को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, इसे अप्लाई करिएगा अपने जीवन में और आप खुद ही देखेंगी कि लाइफ हैज़ चेंज्ड। और ये क्या छोटे छोटे बदलाव ना, एक बहुत बड़े बदलाव, एक बहुत बड़े समाज के बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। बट ये शुरुआत होनी चाहिए हमारे अपने जीवन से और हमारे अपने घरों से। तहे दिल से धन्यवाद तृप्ति जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और हमारे लिसनर्स बहुत ही खुश हैं जो आपने उनसे इतनी बेहतरीन जानकारी साझा की।
1: थैंक यू सो मच भावना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू सच वंडरफुल पीपल।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए मैं आपसे वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मेरी और आपकी होगी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइक।

पुरस्कार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: चलिया।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का और जीवन का जा भी सिखाया था, ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दयाशंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया

बहुत बड़ा है। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठ कर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था, वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओज के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ। कवि सम्मेलन की बात बनी, तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला। बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। 2 दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही थी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन, जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ मैं साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरु जी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें। तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी, और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM Feel Good Feel Life.
1: Well, hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ जो बहुत स्पेशल है. उसकी बहुत सारी वजह भी है कि यहाँ पर ये शो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है. आई मीन हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं. आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं. यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ. बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है, एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं. वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे, दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन. सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस. ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेठिया का. यतिन, स्वागत है हमारे शो में.
2: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ. ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैमिली, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ. और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है. मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ. और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर्स के लिए रील्स बनाता था, मैं उनके शूट करता था. और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ. तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है, और अभी आगे बहुत चलेगी. तो ये है यतिन यार.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है. एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं, 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर. एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो उन्होंने रन किया यहाँ पर. एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी? क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार, मेरे को ये करना चाहिए?
2: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था. तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था. मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की. तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा. मैं तब मजे में कर रहा था, बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया. फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी. तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना. मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा. फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइजेस. और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में. इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने अपनी वॉइस पर बहुत अच्छा काम किया है. तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए. तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है. तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे. फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए. तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा. इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया. और अब अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं. तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है.
1: बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं. डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं। इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करेंगे, डोमेन के बारे में जाना है, आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: Welcome back. I just hope you are loving the vibes of this show. You are loving the vibe of this musical break. And अगर आपके पास कोई feedback है मेरे लिए अतिन के लिए कोई भी चीज़ है जो आपके ज़हन में है और हम तक पहुँचानी है do make sure 8010781078 इस नंबर तक आप पहुँचा चुके हो. फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे. अतिन मेरा next question आपसे रहेगा content creation के बारे में. When you think about a content, a piece of content, तो उसको कैसे आप सोचते हो and what is the process? क्या जाता है उसके पीछे?
1: प्रोसेस ये है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं, मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट भी कुछ शॉट लेना हो तो वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले, सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीवाई है, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियोस कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो, आप अपने आपको

0: देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ। और ये है, सबसे पहले आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा। सबसे मेन चीज है शुरू करना, और शुरू कैसे करना आपको खुद ही, अगर जिद है दिल है तो आप कर सकते हो।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जील, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
0: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉइड के भी कुछ आज के एंड्रॉइड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉइड। तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाता है, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कॉन्टेंट क्रिएशन में। वो जितनी अच्छी होगी लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे। तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें? तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ, और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
1: बहुत सुंदर,
0: कुछ
1: बहुत
0: भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
1: यही दोस्तों, ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा, एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। अब जस्ट नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे ध्यान में जो हम पूछेंगे, बट ये हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: Once again, I'm hoping ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह है, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो एक बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं। लेकिन

0: साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, तो ये तीन प्लेटफॉर्म आपको पे करता है, मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है इन प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी, जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा, बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे वन पे आपके पास पैसा नहीं होगा, उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
0: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं एक साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ, तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे, वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा, आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
1: Alright, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो please feel free.
0: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है किसी चीज का शुरुआत। शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है करना है करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यदिन से बात करी, यदिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यदिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100K से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया कि कॉन्टेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका, थैंक यू सो मच मैन।
0: थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों अब इसी के साथ वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का, आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसी नोट पर चलते हैं अपने शो को यहाँ पर साइन ऑफ करते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही हमारे साथ, मैं हूँ आरजे सागर, शो है ये वॉइस ऑफ यूथ, यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद और शोज हैं, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तो मैं ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र, अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, 3 साल और 7 दिन का, तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तो मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद

तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था। अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही। और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है, यहाँ तख्ती लगी चुंगी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंगी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंगी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ।
पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने तुम जान के क्या करोगे? क्या अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी। तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो। ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा अखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, यह शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी। साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए। इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है? दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो। देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी इच्छा प्रकट की। इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो कि शिष्य की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी।
अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार हैं, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता, जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है, तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है, तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु सांस। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुर्य लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है, प्रमाण नहीं पूछता। तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगी।

सचेत होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाथे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्वभुजे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुक, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चलाने, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब ये है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा आ। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई,

0: श्रद्धा न रही होगी। फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई, तो मुझ पर जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण को तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए, तुम नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं है। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती है और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती है। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ, स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ था, साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे महात्मा है जैसे महात्मा गांधी, दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं, सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है, नानक टूट गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारण का तुम यही सोच रहे होगे, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ, इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पास। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क की जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। अब तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा? अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत ना हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत ना हुआ, मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए, डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, कि तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा, कुछ बातें छोड़नी होगी, कुछ बातें पकड़नी होगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो, जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो, अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो, ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं, तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो, और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उस अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो। अशांत तुम पाओगे, अशांति गई, और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती, तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे, यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात, तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो
1: और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी। और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनसुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनसुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपद वासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण ही नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है। लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए, तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया, कान ने कह दिया और कान पे भरोसा कर लिया, स्वाद ने कह दिया और स्वाद पे भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुके सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है, जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया, तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए। जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते हैं। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इज़राइल इजिप्ट का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे। और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं दे नेवर चेंज, यू नो दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देख कर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर दिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम, वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी मायसेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दे, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे, हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण हैं वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम crime के scene से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. Become a cycle, and then it is how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself. What we don't realize is it's not just for myself. It's for my family also.
4: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. Unawareness में मैं कहाँ तक, कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मेरे लिए जरूरी
5: है. वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका. वो भूल चुके अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट्स सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन. ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. सिस्टर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस. फॉरगिव करना या क्षमा करना, जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो.
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। I can only forgive if I'm filled with love, if I know the truth, if I'm at peace, then I can forgive. अगर मैं disturbed हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो forgiveness कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आई कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँ,
5: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी। तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं। से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा। तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या।
4: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
5: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
4: पेन में हूँ,
5: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें

0: जहाँ बैठे लोगों के साथ अपना, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ. वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड. तो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, आई हैव टू मूव ऑन. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहाँ पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते
1: रहते हैं. लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. इट इज, यू नो, एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस विक्टिमाइज्ड, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते.
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल. Just treat the person as normal. क्योंकि जितनी बार आप sympathy देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप victim हैं. You know? तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार saying बेचारे आप.
1: I think somewhere, you know, why बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, because we also like the sense of power that, you know, we are able to help somebody.
0: True.
1: Because we don't we would like to help somebody,
0: right? But we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega wo theek hai, but by saying that we're saying ki abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शक्ति.
1: ओम शक्ति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवाकर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्त मुनि सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ रत्न मंडित होकर वहां पर पहुंचे, शोभा बढ़ाने के लिए हिमालय के घर में। अब लीना जी, और विवाह की क्या तैयारियां वहाँ चल रही थी। यह तो अद्भुत अलौकिक विवाह था जिसे देखकर देवता तो प्रसन्न होते हैं, हम तो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि हमारा तो जीवन ही सफल हो गया सुनने मात्र से। और लग रहा है कि कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अलौकिक दिव्य दृश्य रहा होगा वो जिन्होंने इसका दृश्य में शामिल हुए, जो विवाह में शामिल हुए। अब आगे किस प्रकार से यह विवाह चला और क्या तैयारियां और हुई, वह सब हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए, हमें भी।
1: बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जीवन ही सफल हो गया
0: जी।
1: तो शिव पुराण ऐसी कथा ही है, ऐसी अद्भुत कथा है जो रामायण की तरह परम पवित्र है। और हर घर में जिस तरह से घर घर में रामायण बांची जाती है, ठीक उसी तरह शिव पुराण पुराणों में महा शिव पुराण है, जिसकी कथा को पंडितगण, जो विज्ञजन है, विद्वान जन है, वो इसकी कथा को बताते हैं। और जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके कर्ण में कुछ ना कुछ तो जाता है, अमृत तो घुलता ही है। अगर हम अमृत की बातें सुनेंगे, अमृत रस पिएंगे, तो हमारा जीवन अमृत में क्यों नहीं बने। और यह अमृत की ही कथा है, क्योंकि भगवान शिव ने क्या किया था, सारे विष को पी लिया था। अमृत पीने के पहले का प्रकरण जो है, उस प्रकरण में यही हुआ था कि पहले समुद्र मंथन में विष निकला था और उस हलाहल को पीने के लिए कोई तैयार नहीं थे, कोई उसके योग्य नहीं थे, कोई उसके पात्र नहीं थे
0: जी।
1: और शिव जी ने उसे पी करके पूरे संसार को बता दिया कि वे हम मनुष्यों के भी मन रूपी विष को पी सकते हैं। और मन के अंदर जो विष पलता है, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन सारे विषों को अगर हम निकालना चाहें तो हमारे अकेले से संभव नहीं होगा। शिव की शरणागति से यह सब संभव है कि हमारे अंदर जो मन है, वह मन एक छोटा सा बच्चा है, वह उत्पाती भी है, वह बंदर की तरह प्रतिक्रिया क्रिया भी करता है। तो हमें अगर अपने मन को सुंदर बनाना है, समस्त दुर्गुणों से दूर करना है अपने मन को, तो भगवान शिव की शरणागति कर ले तो हमारा मन भी सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर शिव, अमृत शिव, अमृतोपम शिव, दिव्योपम शिव, दिव्यादि दिव्य शिव, तो शिव ऐसे हैं, तो उनकी कहानी तो दिव्य होगी ही। और दिव्य कहानी से हमें दिव्यता की अनुभूति होगी ही। अगर हम देवत्व को धारण करेंगे तो हम और अधिक दिव्य होते चले जाएंगे। इस शिव पुराण की महिमा यही है, इस शिव पुराण का महागुणगान यही है कि हम इसे न केवल सुने, न केवल पढ़ें, अपितु इसे आचरण भी में भी उतारें। और आचरण में जैसे जैसे शिव पुराण उतरेगा, वैसे वैसे हम शिवत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और जीवो केवल शिव की अनुभूति भी हमें होगी कि हाँ, जन्म जन्मांतर का परिश्रम हमारा सार्थक हो जाएगा जब शिवत्व की हमें अनुभूति होगी।
0: लीना जी, मैं ये भी देख रही हूँ कि जब से हम लोग ये शिव पुराण की व्याख्या आपने शुरू की है और हमने शुरू की है सुननी और अपने श्रोताओं को भी सुनानी, तो मैं ये देख रही हूँ कि जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान शिव पुराण में ना हो। तो हम क्यों फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ खोज वहाँ खोज, यहाँ पूछ वहाँ पूछ, सीधे शिव की शरण में ही क्यों नहीं आ जाते जहाँ सारी ही समस्याओं का समाधान है? फिर हम परेशान क्यों होते हैं? फिर समाज में लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? तो अब आप ये इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, अगर मन में कीचड़ होगा तो हम शिव तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि शिव कीचड़ रहित है। कीचड़ से लिपायमान हमारा मन है तो हम शिव जैसे दुधिया चंद्रमा को कैसे देख पाएंगे? शिव को अगर देखना है, शिव को अगर समझना है, तो शिवत्व को उतारना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मित्र की मित्रता कब होती है? जब दोनों के गुण समान होते हैं। तो भक्त भगवान की ओर जब अग्रसर होगा, भक्ति उसमें उतरेगी, तो शिव अपने आप उसके मन रूपी दर्पण में दिख जाएंगे। लेकिन मन रूपी दर्पण अभी मैला है, इसलिए वो दिख नहीं रहे।
0: बोलिए। ये आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि मन में जो बैठे हुए हैं हमारे शत्रु, तो उसको तो पशुपतिनाथ ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वही जो पशु बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, तो ये जो इतने सारे पशु बैठे हुए हैं, इनको अगर हमें निकालना है तो हमें भगवान की शिव की शरण ही लेनी होगी, और कोई उपाय नहीं है।
1: क्योंकि शिव को पशुपतिनाथ भी कहा गया।
0: हाँ जी,
1: आपने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार आदि जो है, ये क्या है? ये पशु है,
0: पशु
1: हमारे मन के पशु हैं। हाँ, अब इन सारे पशुओं को नाथने के लिए पशुपतिनाथ को तो आना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे अंतर की आर्त पुकार, करुण पुकार होनी चाहिए कि हे शिव, आप मुझे अपनी शरण में ले लें और हमें अपने जैसा भोला बना दें, अपने जैसा निर्मल बना दें, निष्कलंक बना दें। तो देखिए, भक्ति, भक्त और भगवान से सजी हुई ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी।
0: लीना जी, एक बड़ी प्रचंड जो समस्या आजकल समाज में देखने को मिल रही है, देख उसको सुनकर भी और देखकर भी मन बहुत दुखी होता है कि उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाते। हमारे पास इतने, जिसको कहना चाहिए कि अमूल्य धरोहर ये ग्रंथ हैं, इनमें सब कुछ है, क्यों नहीं इधर की तरफ बढ़ता है हमारा समाज कि आज भाई भाई की हत्या कर रहा है द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण। बाप बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, माँ की हत्या कर रहा है। इतना तो कुंठित समाज हमारा कभी पहले था नहीं, अब क्या हो गया इस समाज को? कैसे हमारे यहाँ से ये हमारे जो विचारों की और जो संस्कारों की ये कहाँ खो गए हैं, हमने कहाँ खो दिया इनको?
1: आपके प्रश्नों में ही समाधान छुपा हुआ है। चूंकि हम लोग भक्ति युक्त शिव पुराण कर रहे हैं, जिस दिन मानव मात्र में भक्ति का सूर्योदय जगेगा, उस दिन सारे अंधकार अपने आप पलायित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दुम दबा करके भाग खड़े होंगे। तो जैसे अंधेरे कमरे में बहुत सालों से कमरा अंधेरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ट्यूबलाइट है, पर उसे जलाना कोई नहीं जानता। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, सालों बाद मान लीजिए आप विदेश से आए हैं और उस अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, तो आपको लगेगा हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, कौन सा सामान कहाँ रखा है ये आपको पता नहीं है। लेकिन ट्यूबलाइट जलाते के साथ आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, कमरे का अंधेरा दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ठीक उसी तरह हमारे मन के अंदर जो इतने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान भक्ति है। आज के युग में, कलयुग में कहा गया है कि सबसे उत्तम अगर कोई चीज है, विधि है, तो वो है भक्ति। भक्ति से मनुष्य झुकना सीख पाता है, भक्ति के कारण मनुष्य कामी नहीं रह पाता, क्रोधी नहीं रह पाता, भक्ति के कारण उसके अंदर लोभ नहीं हो पाता। अगर लोभ है तो सिर्फ भगवान का लोभ है, अगर काम है, रति है, तो सिर्फ भगवान के चरणों से रति है, अगर ये क्रोध है तो सिर्फ उस पर कि जो समाज में विकृतियां छाई हुई हैं उस पर क्रोध है। तो भक्त बनो तो ऐसे कि प्रहलाद बन जाओ।
0: अब लीना जी, जैसे हमारे ऋषि मुनि तो अपने व्याख्यान से, धर्म उपदेश से और अपने प्रवचनों से हमारे समाज को प्रेरित कर ही रहे हैं।

0: अच्छी शिक्षा दे ही रहे हैं, समाज को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो आम आदमी का कर्तव्य है, एक आदमी, सामान्य आदमी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता है अगर कि मैं कुछ ऐसा योगदान दूं, मैं भी लोगों के मन में बसी हुई वो ईर्ष्या द्वेष जो नाश कर रही है परिवारों का, उसको कैसे हटाऊं, तो अब इस विषय में एक आम इंसान अपना कैसे सहयोग दे।
1: मंजू जी, वास्तव में
0: जी
1: उस व्यक्ति को यह नहीं सोचना है कि मैं कैसे हटाऊं, वो हटाने वाला कोई नहीं होता। आप अपने चरित्र को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि मुड़ करके ये दुनिया आपको देखने लगे और आपके अनुकूल आचरण करने लगे। बुद्ध किसी को बुलाने नहीं जाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, लेकिन बुद्ध के पास सारी दुनिया जाती है। महावीर किसी को बुलाने नहीं जाते, लेकिन महावीर के पास सारी दुनिया जाती है। तो आप बुद्ध और महावीर की तरह बन जाइए, आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके आसपास का वातावरण इतना पवित्र हो जाएगा कि हर कोई कह उठेगा, देखो यह है महान आत्मा। तो क्षुद्रता से महानता की यात्रा हर मनुष्य को करनी होगी और इसके लिए ही शिव पुराण है। तो अब आगे चलते हैं इस कहानी की ओर। कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 37वें अध्याय में कि अभी तक हम लोगों ने जो वर्णन किया था उस वर्णन में पर्वत राजों, हिमालय के जो मित्र थे, पर्वत मित्र थे, वो सब आए थे, जिसमें कि उदयाचल, अस्ताचल, मंदराचल, विंध्यगिरी, सुमेरु पर्वत, मलयगिरी पर्वत, देवालय पर्वत आदि बहुत सारे पर्वत आए, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, ये सब आए। अब नदियों की चर्चा की जा रही है, जहाँ पर्वतों की चर्चा की गई है वहाँ नदियों की चर्चा नहीं करेंगे तो ये पर्वत की चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि नदियाँ क्या है, पर्वत पुत्रियाँ हैं। नदियाँ क्या है, पर्वत से ही निकलती हैं जो सागर तक पहुँचती हैं। तो इन नदियों की चर्चा अब की जा रही है इस शिव पुराण में। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए, लेकिन उस समय नदियां भी आईं और उन नदियों का नाम लेते हुए वे कहते हैं, तदा सर्वे समायाता सोनभद्रादय खलु बहु शोभा महाप्रीत्या विवाह शिवयोरिति, नद्य सर्वा समायाता नाना अलंकार संयुता दिव्य रूप धरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, गोदावरी च यमुना ब्रह्म स्त्री वेनिका तथा आययो हिमशैलम वै विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि उस समय सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव शिवा के विवाह में आई, और भी सभी नदियां दिव्य रूप तथा अनेक आभूषणों को धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी, ये सभी शिव शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आई। और आगे वो कहते हैं, गंगा तु सु महाप्रीत्या नाना अलंकार संयुता दिव्य रूपाययो प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा नदी अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। नर्मदा तु महामोदा रुद्र कन्या सरित द्वारा महाप्रीत्या आजगामासु विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि नर्मदा और महामोदा, रुद्र कन्या, सरित द्वारा ये सभी अलंकारों को धारण कर बड़े प्रेम से शीघ्र शिव शिवा के विवाह में आई। चारों ओर से इन निमंत्रित लोगों के आ जाने से सब प्रकार से सुशोभित हिमपुरी भर गई, चारों ओर से उत्साह युक्त वह नगरी जिसमें ध्वजा तोरण लगे हैं, तंबुओं के लग जाने से, सूर्य के प्रभाव के हट जाने से जिसकी शोभा बढ़ गई है, हिमालय ने भी घर में आए हुए उन आमंत्रित अतिथियों का आदर पूर्वक यथोचित सम्मान किया, उन सबके निवास की अलग अलग व्यवस्था की तथा अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। अब देखिए हिमालय क्या थे, पर्वतराज थे। अब पर्वतराज के पास सारे पर्वत, सारी नदियां आ रही हैं, मित्र, कोई मित्र के रूप में आ रहे हैं, कोई हिमपुत्री के रूप में आ रही है, तो बहुत सारी चीजें थी जो हिमालय को व्यवस्था करनी थी, और उन्होंने समुचित व्यवस्था की इन लोगों की जिससे कि कोई असंतुष्ट ना हो, क्योंकि वधु पक्ष क्या करता है, हमेशा यह कोशिश करता है कि जितने भी घराती बराती जो भी आए हैं सभी का यथोचित आदर हो, यथोचित सत्कार हो और उन्हें सम्मान मिल सके, जिससे कि वे निंदा के पात्र न बने। और दूसरी बात कि जो इतनी दूर से कष्ट उठा करके उनके घर आए हैं, उन्हें कोई भी जो है असम्मानित न करे, अनादर न करे, वे खुश हों, प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके यहाँ से विदाई। तो अभी तक पर्वत और नदी की बात की गई है।
0: हाँ।
1: तो अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अध्याय 38वें में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं।
0: हाँ।
1: अब इस 38वें अध्याय में क्या कहा जा रहा है, हम देखते हैं और सुनते हैं। कहते हैं, ब्रह्मोवाच, अथ शैलेश्वर प्रीतो हिमवान मुनि सप्तम स्वपुरम रचयामास विचित्रम परमोत्सवम सिक्त मार्गम संस्कृतम च शोभितम परमर्धिवि द्वारी द्वारी च रंभादि मंगलम द्रव्य संयुतम प्रांगणम रचयामास रंभा तंभसम समन्वितम पट्ट सूत्रय सन्निबद्धम रसाल पल्लवान्वितम मालती माल्य संयुक्तम तोरण सुप्रभम शोभितम मंगल द्रव्य चतुर्दिक्षु स्थितय सुवह। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, उसके बाद गिरिराज हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने नगर में परम उत्सव करवाया। चारों ओर सड़कों पर पानी छिड़कवाया, दोनों ओर सड़कें सजा दी गई, प्रत्येक दरवाजों पर केले आदि के पेड़ों को लगवाकर उन्हें सुशोभित कर दिया गया। देखिए पहले क्या होता था, पहले सजावट होती थी केले के पेड़ से। आजकल केले के पेड़ बहुत कम दिखते हैं। केला क्या है, मंगलकारी है और केले का हर पूजन पाठ में केले का प्रयोग होता है। तो केले के थंभ हर जगह लगाए जाते हैं। पहले भी मैंने देखा था दीपावली के समय में, आप अभी भी छोटे शहरों में जाएंगी, गांव में जाएंगी, तो वहाँ केले के थंभ लगाए जाते हैं और उन पर दीपक लगाया जाता है। बड़ा खूबसूरत लगता है ये दृश्य देखने में। तो आजकल तो लाइट की परंपरा है, जगह जगह लाइट लगा देते
0: हैं। पहले सारा प्राकृतिक सज्जा होती थी,
1: पहले प्राकृतिक सज्जा होती थी, दीपक जलाए जाते थे, क्योंकि दीपक क्या है, वो तेल बाती उसमें जो जलता है वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, तो दीपकों से सजाते थे पहले। तो केले आदि के पेड़ लगाकर उन्हें सुशोभित किया गया मार्गों को, और आंगन में भी केले के खंभे लगाकर उन पर रेशमी वस्त्र लपेट दिए और चारों ओर आम के पत्ते लगा दिए। मालती की मालाओं के सुंदर तोरणों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से चारों ओर सुशोभित कर दिया गया। इस प्रकार पर्वतराज ने सभी आयोजन अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए, मेरी कन्या प्रसन्न हो, क्योंकि वो कन्या साधारण थी नहीं, आदिशक्ति थी, और ऐसा हिमालय को आभास भी हुआ था, पता भी लगा था कि मेरी कन्या जो है साक्षात आदिशक्ति है, और साक्षात आदिशक्ति ने उनके घर में जन्म लिया था। यही तो परम हर्ष का विषय था। सभी जगह आदिशक्ति तो जन्म लेती नहीं है। हाँ, आदिशक्ति का अवतरण अगर कहा जाए तो ये पूरा संसार आदिशक्ति का अवतरण ही है। चाहे वह चींटी से लेकर के मनुष्य हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि अवतारी पुरुष, सब में आदिशक्ति का ही अवतरण है। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते, अपने शरीर को मंदिर मान नहीं पाते। जिस दिन हम अपने शरीर को मान लेंगे कि हमारा शरीर दिव्योपम मंदिर है, ऐसा मंदिर कहीं और मिलेगा ही नहीं, तो हम सच में अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे, ना कि शरीर से गलत कार्य करेंगे, ना कि शरीर को मांस मदिरा प्रदान करेंगे। लेकिन हम मंदिर ऐसे मान नहीं
0: मानते ही नहीं।
1: इस शरीर रूपी मंदिर में जो मूरत है वो है हमारी आत्मा, और उस आत्मा रूपी मूरत में जो हृदय है वो है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का संगम है हमारे शरीर में, ये मूर्ति रूप में हमारे अंदर स्थापित है। इनकी धड़कन हम सुन सकते हैं, इनका स्पंदन हम सुन सकते हैं, लेकिन तब जब हम इन्हें जीवंत माने, जब हम इन्हें यह माने कि हम यही है। कैसे, तत्त्वमसि, जो वह है वही हम है, सो अहम, जो वह है वही हम है।
0: लीना जी, वही कि यहाँ से बात सिद्ध होती है कि हमारा शरीर ही माध्यम है उस तक पहुँचने का, क्योंकि शरीर से मन में उतरने के लिए तो शरीर को भी स्वस्थ रखना होगा
1: जी।
0: तो जब शरीर को स्वस्थ रखना है तो फिर ऐसे तामसिक भोजन को तो दूर ही रखना चाहिए, उसका क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका तो असर फिर तामसिक ही होगा, प्रभाव भी शरीर पर तामसिक होगा, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव तामसिक ही होगा।
1: एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगी मंजू जी, कि ये संसार जो रचा बसा है, जो रचाया है आदिशक्ति ने, वो तीनों गुणों के सन्निवेश से रचाया है। अगर तम गुण नहीं रहेगा तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.009 ना रहे तो सारा वातावरण ही जल जाएगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है, महत्वपूर्ण है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड से नियंत्रित रहता है, जो ज्वलनशील गैस है वो सब नियंत्रित रहते हैं। तो तमोगुण भी आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, अगर निद्रा नहीं हो तो हम सब परेशान हो जाएंगे। तो निद्रा तमोगुण में आता है, लेकिन आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक है जितना हमें चाहिए। लेकिन हम उसी में रचे बसे रहेंगे तो हम तमोगुण ही हो जाएंगे। आते हैं रजोगुण पर। रजोगुण है महत्वाकांक्षा, रजोगुण है क्रिया करने की शक्ति। अगर रजोगुण नहीं रहे तो हम क्रिया ही नहीं कर पाएंगे, हम सोचेंगे ही नहीं उस विषय पर काम करने के लिए, तो इसलिए रजोगुण भी आवश्यक है। अब आते हैं सतोगुण पर। सतोगुण क्यों आवश्यक है? क्योंकि सत्य, सत्य की पूछो, सच्चिदानंद ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं, और तो हमारी गति सतोगुण की ओर होनी चाहिए। यानी कि ये सारी सीढ़ियां हैं, हम सब में ये तीनों गुण है। ऐसा नहीं है कि राम में तमोगुण नहीं है, राम में रजोगुण नहीं है, राम में सतोगुण नहीं है, ये नहीं है। लेकिन नियंत्रित अवस्था में है, और वृद्धि है सतोगुण, और वो तो परमेश्वर है, तो इन तीनों गुणों से परे भी हैं वो लोग। तो अब सोचना ये है हर मनुष्य को कि अगर हमने जन्म लिया है तो तीनों गुण भले हैं, लेकिन हमें, हर व्यक्ति परीक्षा पास करता है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर एम ए बी ए सब करता है। तो जब ये है तो उसी तरह तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ना है उसे, और रजोगुण की ओर बढ़ने के लिए उसे सब कुछ देखना होगा कि कैसे निद्रा कम करें, आलस्य कम करें, प्रमाद कम करें, और उसके बाद महत्वाकांक्षा तो रहती है रजोगुण में, लेकिन क्रिया करने की शक्ति होती है तो वो सब करें। उसके बाद रजोगुण से सतोगुण की ओर हमको बढ़ना है। जब सतोगुण की ओर बढ़ेंगे तो वो प्रकाश का गुण है। प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए ये शिव पुराण है। प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। जैसे परीक्षा पास करने, बीए की परीक्षा पास करने के लिए आप इंटर के सिलेबस पढ़ करके जाएंगे तो क्या बीए की परीक्षा पास करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरह सतोगुण की भी परीक्षा है, रजोगुण की भी परीक्षा है। तो इन सारी परीक्षाओं को पास करने के लिए हमें उसी तरह की योग्यता चाहिए। तो योग्यता हासिल करते चलिए और पर पग रखते चलिए, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। कोई भी गुण खत्म नहीं होगा, लेकिन उनकी संतुलन बना रहेगा, और जिस दिन संतुलन बन जाएगा इन तीनों गुणों से हम परे भी हो जाएंगे। तो यही हमें शिव पुराण सिखाता है जी। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरह से पूरे नगर को हिमालय ने सजाया, केले के थंब से भी सजाया, और उसके बाद कहता है कि उसके बाद महाप्रभावशाली गर्ग जी के सामने पूजा आदि की सामग्री प्रस्तुत की। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर विस्तृत एवं सुंदर मंडप और उसके बीच में वेदी का निर्माण कराया। वेदी का निर्माण भी बहुत आवश्यक है, हैं? और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह वितान 10,000 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों तथा आश्चर्यकारक दृश्यों से युक्त था। वह मंडप, स्थावर, जंगम सबके लिए समान रूप से मनोहर था, चारों ओर से वह सुंदर था। जो मंडप बनाया गया वो चारों ओर से सुंदर था। फिर आगे आगे कह रहे हैं व्यास जी कि जंगमम विजितम तत्र स्थावरेण विशेषतः जंगमेन च तत्रासीत जीतम स्थावरम एव ही पैसा च जिता तत्र स्थल भूमिर न चान्यथा जलम किम ही स्थलम किम ही न विदु के अपि कोविदा क्वचित सिंहा कृत्रिमाश्च क्वचित सारस पंक्तय क्वचित शिखंडिना तत्र कृत्रिमाश्च मनोहरा। देखिए अब ये आगे बता रहे हैं प्रकृति किस तरह हास विलास से युक्त हो जाती है। जब प्रकृति और परमेश्वर की ही शादी हो रही है तो प्रकृति तो अपने ढेरों रंग दिखाएगी, इंद्रधनुषी रंग दिखाएगी। कहते हैं कि वहाँ की स्थावर रचना ने जंगम सृष्टि को और जंगम रचना ने स्थावर सृष्टि के मन को जीत लिया था। जल ने स्थल को जीत लिया था, अर्थात कहाँ जल है कहाँ स्थल है इसका निर्णय भी कोई नहीं कर पा रहे थे। कहीं बनावटी सिंह, कहीं सारसों की कतारें, कहीं मोर दर्शकों के मन को आकर्षित कर रहे थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई बनावटी स्त्रियां भी देखने वालों के मन को मोहित कर रही थीं। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे के पास मनोहर द्वारपाल बने हुए थे। हाथों से धनुषों को उठाए हुए वे बनावटी द्वारपाल वास्तविक जैसे लग रहे थे। दरवाजे पर बनाई हुई महालक्ष्मी सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो साक्षात क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी ही हो। बनावटी हाथी सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ऐसे लग रहे थे मानो स्वाभाविक ही हो। इसी प्रकार घोड़े घुड़सवारों से तथा हाथी हाथी पर सवार होने वालों से सुशोभित हो रही। सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनिजनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। अब बताइए,
2: स्वयं विश्वकर्मा ने ये सब बनाया तो क्यों नहीं होगा आश्चर्यचकित? तो आजकल तो देखिए मनुष्य भी जो बना रहे हैं बहुत ही आश्चर्य करने वाली बातें हैं। पूरे आप देखेंगे कि पूरे गांव के गांव बनाए हुए हैं और लगता है कि सच में अभी बोल पड़ेंगे मूर्तियां बोल पड़ेंगी। तो आज भी वो कलाएं हैं जीवित। और विश्वकर्मा तो देवताओं के जो है शिल्पी ही हैं, शिल्पकार हैं। कहा जाता है जो देवघर है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थित है बैजनाथ धाम, अच्छा, वहाँ वो जो है भगवान विश्वकर्मा जो है स्वयं बनाए उस चीज को। केवल देवघर ही नहीं, बहुत सारे सारे मंदिरों के भी विषय में बताया जाता है कि उन्होंने ही बनाया। तो शिव का ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ नहीं, और केवल शिव ही क्यों, बहुत सारी सारे देवी देवता भी हैं जिनके मंदिर बड़े अद्भुत हैं। अब मीनाक्षी मंदिर को देख लीजिए कितना खूबसूरत है, जो
0: कलाकृति
2: है देख, चोल पल्लव आदि राजाओं ने जो बनाया था मंदिर वो सच में देखने लायक है। मैं तो मीनाक्षी मंदिर को देख करके हतप्रभ रह गई, क्या ऐसा भी बनाया जा सकता है,
0: इतनी कला उसमें है, इतना हाँ। बारीकियां
2: और जीवंत लगते हैं क्योंकि मूर्तियां उनमें स्थापित हैं, जीवंत मूर्तियां लगती हैं। अगर उन्हें देखने जाइए तो ऐसा लगेगा कि जीवंत है, अभी बोल पड़ेंगी। ऐसे ही अभी एक महालक्ष्मी मंदिर बनाया गया है, मैं तिरुपति गई थी, तिरुपति के पास
0: पहले ही पड़ता है
2: हाँ, तो वहाँ पूरे सोने की का मंदिर है और कमल के आकार में जो है चारों तरफ मैदान है। तो सारे को पार करके आप महालक्ष्मी मंदिर तक जाएंगे और लक्ष्मी मंदिर सच में लगता है कि महालक्ष्मी जो है पूर्ण वैभव और विलास के साथ वहाँ स्थित है। तो ये सब बहुत खूबसूरत लगता है। तो मनुष्य कृत भी बहुत सुंदर है और ईश्वर कृत तो सुंदर होंगे ही। तो अब देखिए यहाँ पर जो विश्वकर्मा की बात बताई गई है, तो विश्वकर्मा के लिए कहा जाता है कि इन्होंने कैसे बनावटी चित्र बनाए कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है इसका भी पता नहीं चल रहा, इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहे थे। और कहते हैं आगे कि सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनि जनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। हे मुनि, प्रमुख द्वार पर शुद्ध स्फटिक जैसा बनावटी बनाया हुआ नंदी वास्तविक नंदी जैसा ही लग रहा था। उसके ऊपर अलौकिक रत्न जटित पुष्पक विमान था जो शुभ्र पल्लव तथा चामरों से सुशोभित था। मतलब कि हर चीज इन्होंने जो लिखा है वेदव्यास जी ने, उन्होंने तो अपनी दूरदृष्टि से लिखा है और जो दूरदृष्टि उनकी थी वो कम नहीं थी,
0: कम नहीं थी।
2: जो महाभारत दिखा दिए संजय को, श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में वो दिखा दिया, तो उनके विषय में क्या कहा।
0: अलौकिकता थी, अलौकिकता थी, अलौकिक शक्ति थी
2: जी जी
0: जी। तो लीना जी, बहुत ही सुंदर ये वर्णन चल रहा है शिव पार्वती के विवाह का, लेकिन क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि चार पंक्तियाँ सुनाएं और हमारे भक्तों को शिव में बनाएं।
2: कहते हैं परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम योगी परम मनस्वी, परम योगी परम मनस्वी, परम यशस्वी परम शक्तिशाली और कौन है, केवल शिव, केवल शिव।
0: बहुत बहुत ही महिमा युक्त आपने ये शब्द जो है रचे हैं और सुनाए हैं जो हमारे श्रोताओं को, तो अब सब सोचते ही रहेंगे और शिव में ही बने रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी।
2: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में पुनः हम यहीं पर मिलते हैं आपको रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रांगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हालचाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर

0: 5 सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है एफर्ट्स वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो

0: आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
1: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम, तैव कवता मनीषिण, जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है, तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहाँ पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहाँ पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
2: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
1: जी,
2: आपको बदलना पड़ेगा
1: जी।
2: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
1: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
2: जी बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव 107.8 FM पर। नमस्कार।

Radio Mana Vishnu 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भर कर किया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्म या युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्यवन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए हैं और यक्ष से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों की तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाएं। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। पत्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासे से अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्री का आश्रम को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है तो इसके आगे जाना अनुमति नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया। वो बोला, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे। वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस पर भीमसेन गए थे उस पर आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, हे रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को छोटे करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख कर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर ऊंचा रख कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा रागलेखा दासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रागलेखा दासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी। जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे।
0: हाँ जी।
1: तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने शास्त्र में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 दिन रात-रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि तेरी तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृष्ण था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में उस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी पल्लव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नांगकर केवल परम सिद्ध और देव ऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की परछियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यहीं निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। तब हम एक प्रसंग लेते हैं भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीम से स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीम से धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था तो भी सर्प के चंगुल से में फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देख कर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मानव इंद्रियों को विजय प्राप्त करी।
2: जी,
1: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया, मैंने मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया, इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो, उसे सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो परब्रह्मी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा, दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो ये भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बोलचाल, मैथुन, मित्रवर्ती, जन्म मरण ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो, तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली बातें सुन लिया, अब तुम मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्प उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है, अहिंसा और प्रिय भाषण इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम। सर्प बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है, किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो ये बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यम्भावी फल को कैसे भोगता है। सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम क्रोध लोभ हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही प्रिय योनि में जन्म लेता है। फिर सत्कर्मों का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी प्रिय योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द स्पर्श रूप रस और गन इसका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो, तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि इंद्रिय और मन से युक्त होने को भोक्ता बताया है वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों क्या प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, सर मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। जिष्टे बोले, बुद्धिमानों में शेष तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर ने कहा, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब चेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब स्वर्ग का राजा था दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था, इसमें अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसका तेज छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। इस अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त जब पालकी धो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी और तब एक क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, अरे ओ सर, तू नीचे गिर। तब मेरे राज सिंह लुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर होकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगस्त मुनि से याचना की, भगवान, मैं प्रमाद व विवेक शून्य हो गया था, उससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मैं शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा। इस समय तुम्हें फिर पुण्यों का फल प्राप्त होगा। महाराज, तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया। दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्गलोक में चले गए।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे, वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसपे स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं। लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब भी आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live।

वेलकम बैक रेडियो मैंने विरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हफ्ते के 7 दिन 2 घंटे का हमारा सफ़र जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की। बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें यह होता है कि देखिए जैसे ये जो पानी

है ये, यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है, वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक. रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली. जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का. जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है. इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है. स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो. डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है. कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है. गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है. और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे. और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है. कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़ रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल रखने दो में आपसे बातें मैं कर रही हूँ, और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है, हड्डियों को मजबूती जरूर देगा, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिन्स है, तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफी ज्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. त्वचा को जवा और चमकदार दिखाए रखने में भी काफी काम करता है, जबकि विटामिन और मिनरल्स जो है बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार है, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप, सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो, जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है, जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की। जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया, सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, अगर आपको जीवन जीना है, आपको

लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए जरूरी है कि आप रोजाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग जरूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं, और वो कैसे, वो होता है योग से। जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना और 7.8 FM। Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ। हफ्तों के सातों दिन मैं आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको घटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंग आसन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है, वो है सेतु बंधना आसन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंधना आसन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतु बंधना आसन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाथों आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेती और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन हो जाएगा इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज सुबह, जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिससे मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से

सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा, इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पढ़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पढ़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी ये भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पढ़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था। मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया, तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो,
मुलाने का बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है, किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है? फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्त के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्त के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था, मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी। और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था, मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी। यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे, दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ? फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे। जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है? मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है? हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना? मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे? ये सब तो अपराधी हो गए, ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ, एक धारणा होगी, संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है। उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत? नकल होगा, संत की नकल ढांचों में बैठ जाती है। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे। यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी, साधना पत्र,
और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी। तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी, ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है। तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाए। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है, देखो ये आदमी सबूत है। अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी, पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही, इतना ही अर्थ है कहानी में।
कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब और भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना, ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अल-हिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास गुरु ने कहा कि तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई, जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आई, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार कर रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई आचरण नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है, इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है, इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है, जो तुम्हारे भीतर हो कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके, जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है, ये तो तुम्हारे अंतर्तम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है,
इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया, लेकिन

को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे, कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना, और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है, मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना, संस्कार कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते, छोटा बच्चा कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती, फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले, पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो, रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है, संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी, संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा, और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का, और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो, जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में,

माटी का रंग अभी वैसा ही है, पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है, थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा। एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या। एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो, रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते, दर्पण के भीतर जाकर देखो बासंती देहों को रंगना है कायरता, पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या। एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो, संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुमने, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसने जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है, संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती, यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा देखना सीखा जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है, और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी वहां कुछ प्राण कहां है, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही, कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं, जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है, उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के सींचों का बना दरवाजा है, एक फकीर एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के सींचों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फुले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए,
और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना। क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान होती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की, उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? किताब फेंक दी। किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? कहां महावीर और कहां मोहम्मद? उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया। और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी, ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ज क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां
कामातुर होकर भटकने लगेंगी। और पुरुष तो कामातुर है ही, अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए। ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े। ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है। 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना? मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफा चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती, और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी, एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। 4 स्त्रियों के साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग, उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से। अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और 1-2 मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, 1 दिन के लिए 1 मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे,
उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूँ बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, हजारों साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहाँ घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है। वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता, ये बात सच है। लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है,
तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर

और शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहां तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो, लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है। तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं। तुम लाख उपाय करोगे, तू थक गए आप, तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूं। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं। तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है। लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूं, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूं जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंक जाती, लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हां भी और नहीं भी। हां इस अर्थ में झलक मिलती है,
एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी। क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग ना खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग ना खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा। और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सभ्य स्नान, अभी अभी नहाया हुआ, ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत है। सेल्फ मैनेजमेंट की पूरी श्रृंखला में हमने बहुत कुछ समझा, खुद को समझा और कई बातें ऐसी निकल कर आई जिनके बारे में अभी तक हमने सोचा ही नहीं था, हमारा ध्यान ही नहीं गया था या फिर एक बहुत हैरत से हम इस पूरे एस्पेक्ट को देख पा रहे थे। लेकिन जब तर्क की कसौटी पर उसे कसा और साथ ही अनुभव करके देखा तो लगा कि यही रास्ता सही है। पर बात यहीं तक आती है कि ये बात अभी तक हमें क्यों नहीं समझ आ रही थी। और ऐसे में परमात्मा की मुरली, यानी कि हर बार हम आपसे बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर जो महावाक्य कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। आज भी एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: तो सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हर बार हम ये कहते हैं कि आप तक भी लोगों के बातें आती हैं, लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि इतनी कम उम्र में आप ऐसी बातें कह पाती हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक हम सोच भी नहीं पाते। जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हुई, जिस तरह से रिलेशनशिप्स को हमने देखा, रोल्स को देखा, रिसोर्सेस, आई कुड नेवर इमेजिन कि मेरे जो संस्कार हैं, मेरी जो हैबिट्स हैं वो मेरे लिए एक निधि, एक पूंजी बन जाएंगे। मेरे थॉट्स मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये कैसे संभव है?
2: जैसे कि हम शुरू से ही शेयर करते आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस प्रोग्राम में हम जो कुछ शेयर कर रहे हैं किसी का पर्सनल नहीं है, ये परमात्मा का डायरेक्ट सुप्रीम फादर इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिवा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, वो निराकार परमात्मा जो भी सृष्टि पर आकर डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान एकदम सिंपल होता है और हिट करता है एट द रूट, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर ही आए हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, संसार परिवर्तन के लिए। और परमात्मा कहते संसार परिवर्तन होता संस्कार परिवर्तन से। तो संस्कार परिवर्तन के कार्य के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आए। तो जो ज्ञान उनसे मिलता है वो डायरेक्ट रूट पर हिट करेगा, और संस्कार परिवर्तन जैसे जैसे एक एक आत्मा का होगा तो संसार परिवर्तन तो अपने आप होगा। तो द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज दैट वी शेयर ऑन दिस प्रोग्राम कम्स डायरेक्टली फ्रॉम हिम, एंड बीइंग द सुप्रीम टीचर ही गिव्स डीपेस्ट ऑफ नॉलेज इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। और क्योंकि वो आत्मा की अपनी बातें हैं, इट्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मी, तो उसको अप्लाई करना मुश्किल नहीं होता। तो इस सीरीज में जितनी भी हमने बातें की है सेल्फ मैनेजमेंट की, तो कई बार पूछते कि ये कौन सी बुक से पढ़ा है या ये कहाँ से लिया है, तो इसका सोर्स है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो हम रोज सेंटर पर मुरली के रूप में सुनते। तो वो कोई सारा कुछ एक मुरली में नहीं होता, लेकिन अलग अलग रोज़ रोज़ जब हम मुरली सुनते तो उसमें से ही ये सारा ज्ञान निकलता जो फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई करते। तो ये जो मुरली है इसका टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। स्वराज्य, सेल्फ रूल, सेल्फ सॉवरेनिटी किससे आएगी? रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर। आज बच्चों के स्नेही बाबा, क्योंकि परमात्मा को हम प्यार करते लेकिन परमात्मा भी हमें प्यार करता, तो जो बच्चों के स्नेही हैं वो बाबा हर एक बच्चे को विशेष दो बातों में चेक कर रहे थे। परमात्मा पिता भी है तो स्नेह है, लेकिन टीचर भी है, तो टीचर का कार्य है चेक करना। तो दो बातों में चेक कर रहे थे, हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, सेल्फ रूल सेल्फ कंट्रोल। आज ये देख रहे थे जैसे आत्मा की स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती है, सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो फिजिकल है और 3 ऑर्गन्स हैं जो सटल है, मन बुद्धि संस्कार, ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सटल ऑर्गन्स। एंड ये सब जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको हम कहते हैं स्थूल कर्म इंद्रियां, फिजिकल सेंस ऑर्गन्स। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा की, मैं आत्मा हूँ, रूलर हूँ, और ये सेंस ऑर्गन्स मेरे कार्य करता है, तो ये कार्य करने वाले हैं स्थूल कर्म इंद्रियां, ये स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वहाँ वैसे चला सकते हैं और चलते रहते हैं। आप हाथ से जो कराना चाहो, मुख से, वैसे आजकल ये भी थोड़ा सा अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू द सटल, दिस इज इन माई कंट्रोल। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो परमात्मा हमें कह रहे हैं कि ये भी आपकी शक्तियां हैं।
1: अच्छा, मतलब इट्स नॉट ओनली कि हम बोलते हैं कि आई द सोल हैज थ्री फैकल्टीज, लेकिन ये जो है ये भी तो हमारे हमारे
2: एब्सोल्युटली जो पिक्चर दिखाते हैं सिंबॉलिक, वो होता है रथ, रथ में पांच वो घोड़े और रथवान, राइट? तो पांच घोड़े क्या है? पांच कर्म इंद्रियों का प्रतीक है। रथ जो है वो रथ है इस शरीर का प्रतीक कि दिस इज द चैरियट, और रथवान कौन है? मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा इस पूरे रथ को चलाती हूँ, और इस रथ को चलाने वाले जो पांच घोड़े हैं वो ये पांच कर्म इंद्रियां हैं। अब नॉर्मली वो जो पिक्चर दिखाते हैं उसमें वो पांच घोड़े भाग रहे होते हैं, विच इज ए साइन के ये पांच कर्म इंद्रियां, जिसको हम कहते हैं चंचल हो गई है, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ये पांच कर्म इंद्रियां स्थूल हैं, वैसे मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। स्थूल मतलब कॉर्पोरियल, जो दिखाई देता, और सूक्ष्म सटल, जो दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है। स्थूल कर्म इंद्रियों को जब चाहे जैसा चाहे हाथ पांव चला सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि संस्कार को जब चाहे

0: जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है। तो परमात्मा कहते हर एक बच्चे का मैं ये चेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हम जिस समय जो थॉट चाहे, जितनी देर के लिए वो थॉट क्रिएट करना चाहे, जब क्रिएट करना चाहे, इट शुड बी इन
1: माय कंट्रोल। एंड उसको उस थॉट से मैं क्या डिसीजन लूं, दैट शुड बी इन माय कंट्रोल,
0: फिर एक्शन विल कम इन माय कंट्रोल।
1: इट इज सो वंडरफुल शिवानी कि बिल्कुल एक टीचर की तरह ही चेक कर रहे हैं परमात्मा भी, या अगर हम देखें तो, कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्या हम ये कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक तब भी फिर उन्होंने देखा कि नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है यही होगा, और उसके बाद ही'ल टेल अस द वे।
0: यस, सो ही फर्स्ट शोज अस व्हाट टू चेंज, देन ही'ल शो अस हाउ टू चेंज इट। सी, तो पहले जैसे कि एक्सरे निकाला जाता है, पहले एक्सरे निकाला जाएगा कि यहाँ यहाँ ये चोट है, फिर बताया जाएगा इसका इलाज कैसा है। तो यहाँ एक्सरे किसने निकालना है, हमें खुद निकालना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्टॉप चेक कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर कहाँ तक है। अब हर एक अगर हम चेक करें कि मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिस समय चाहूँ, वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, इज दिस माइंड टोटली इन माई कंट्रोल, तो आंसर यही निकलेगा अभी उतना नहीं। तो इस विशेष तीन शक्तियों पर, मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो, तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। सेल्फ रूल मतलब इन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल। तो ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल शक्तियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है।
1: अच्छा, द मोमेंट आई हैव दिस कंट्रोल इन मन बुद्धि संस्कार पे कंट्रोल हुआ, तो इस पे कंट्रोल करना एक्चुअली
0: तो जो रिसोर्सेज की हमने बात की, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, शरीर, मन, आत्मा, संस्कार। लेकिन संस्कार कंट्रोल में है तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में है, मन कंट्रोल में है तो स्थूल कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल। इसलिए हम कहेंगे बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म नहीं करना, आउटर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, अंदर हो गया आउटर अपने आप हो जाएगा। फिर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ऐसा बोलना है या ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ऐसा क्या सोचना है, और उसके लिए डीपेस्ट लेवल क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या संस्कार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है, जिसको स्वयं को चलाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है। अभी हम कहते हैं औरों को चलाना, औरों से काम करवाना, कहते हैं औरों से काम करवाने के लिए चाहिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। औरों का मैनेजमेंट और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब करना है, सेल्फ मैनेजमेंट। तो जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। हमें बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है, टाइम को, धन को, रिसोर्सेज को हैंडल करना है, लेकिन जो स्वयं को कर सकेगा वो औरों को ऑटोमेटिकली करेगा। सिर्फ दूसरे को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए हैंडलिंग पावर बन जाते हैं। स्व के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सब के लिए हैंडलिंग पावर बन जाते हैं।
1: इनफैक्ट सीरीज में भी अगर हम देखें, हमने बात की कि सबसे पहला रिश्ता अपने आप से, सबसे पहली जिम्मेदारी जो रिलेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने प्रति। तो जहाँ अपने को हमने संयम करना या अपने को नियंत्रण करना अगर हमने सीख लिया, तो बाकी हमें फिर करने की।
0: एंड नॉर्मली भी आप देखोगे सारा दिन में, जहाँ आप अपने थॉट्स में अवेयरनेस आ गई कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है, ये सोच से ये एक्शन आता है, जहाँ ये पूरा एक आपने एक्सरे कर लिया एंड यू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स, तो जब आपको अपना सिस्टम समझ में आता है,
1: दूसरे का भी आ जाता है एक्चुअली।
0: सो नाउ व्हाट विल हैपन कि व्हेन आई एम विद यू आई विल अंडरस्टैंड यू वेरी वेल
1: एंड यू नो आई विल बी एबल टू मेक इट आउट कि आप जो ये रिएक्ट कर रहे हो या आप ये बोल रहे हो उसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है।
0: और आप किस से गुजर रहे हो। कई बार हम देखते हैं कि कोई गुस्सा कर रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब पहले क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो हमें कहते हैं ये गुस्सा कर रहा है। अब हमें पता चलता है कहीं हर्ट है, कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स है, कौन सा क्या हर्ट हुआ होगा जिस वजह से ये इस तरह से लिया। तो उनकी भी पूरी प्रोसेस समझ में आ जाती है, और जब उनकी प्रोसेस भी समझ में आ जाती है तो फिर गुस्सा नहीं आता। उनके साथ एम्पथाइज करना बहुत ईजी हो जाता है, और खुद स्टेबल है ना, तो जहाँ अपना स्टेबिलिटी हुआ, अपने को समझ पाए, औरों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा।
1: इनफैक्ट उसको उनको हम हेल्प कर पाते हैं, उनको सोल्यूशन बता पाते हैं, यू नो, सडनली वी आर एबल टू पिन पॉइंट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद
0: देम,
1: एंड दे आर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट।
0: So like we were not aware of it. जैसे हमें अपने reactions का कारण पता नहीं था पहले, वैसे उनको भी नहीं पता है। लेकिन क्योंकि आत्मा तो है ना, सभी का functioning process तो सेम ही है, तो जब अपना समझ में आ गया तो सबका समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर स्व के ऊपर controlling power, ruling power आ गई तो handling power आ जाएगी। बाबा का बच्चों से प्यार है। God always keeps reminding me ki God loves you because this is very empowering. Now I'm not too dependent on other people. To baba ka bachchon se pyar hai. Jisse pyar hota hai uska kuch shiksha ka ishara milna bhi pyar lagta hai. Koi aur hame kuch kahe ki aapke andar ye nahi hai ya ye nahi hai to hame shayad thoda sa bura lage, lekin jo hame bahut pyar karta hai उसका कोई इशारा देना इस तरह से वो हर्ट नहीं करता, गुस्सा नहीं दिलाता, वो इशारा भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि ये जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा। सी, जो आज दिन तक हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे बड़ा करें, उनका हित तो वो पेरेंट ही सोचेगा ना, तो परमात्मा से हम ये सीखते कि एक पेरेंट एक बच्चे को कैसे बड़ा करे। आज जब पेरेंट बच्चे को कुछ कहता है तो बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है, क्यों? क्योंकि पेरेंट ने बात तो अच्छी की है, उसके फायदे के लिए की है, लेकिन एनर्जी कौन सी क्रिएट की है, एंगर की या इनसिक्योरिटी की या फियर की या हर्ट की, तो वो एनर्जी पहले पहुंचेगी, वर्ड्स बाद में पहुंचेंगे। तो जब एनर्जी नेगेटिव है तो वो वर्ड्स पसंद नहीं आते। परमात्मा भी पिता है, टीचर है, वो भी हमें बता रहा है रोज कि आपके अंदर ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, आपको ये चेंज। सो इजंट ही आल्सो ट्राइंग टू डिसिप्लिन अस, इजंट ही आल्सो ट्राइंग टू टीच अस व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर मी। लेकिन उनकी कही हुई बात बुरी क्यों नहीं लगती है?
1: क्योंकि एक तो वन, वी हैव दिस कंप्लीट फेथ दैट यू नो व्हाट ही इज सेइंग इज राइट।
0: सो वुडंट हैव अ चाइल्ड हैव अ कंप्लीट फेथ इन हिज पेरेंट्स? लुक एट अस एज चिल्ड्रन विद पेरेंट्स, क्या हमें कंप्लीट फेथ नहीं है? लेकिन वो एनर्जी जो मिल रही है ना, उससे वो फेथ कहीं ना कहीं
1: हमें वो लेबल नहीं कर रहे हैं, हम जजमेंट
0: एक्सेप्ट करते हैं। ही इज द ओशन ऑफ लव, वो प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर मतलब जिसके अंदर नेगेटिविटी का ट्रेस नहीं हो सकता। अब प्यार का सागर अगर ये भी कहे ना कि आप बहुत खराब हो तो भी वो खराब नहीं लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन कौन सी आई है, प्यार की आई।
1: और उनका अपना स्ट्रेस नहीं है ना, अपनी कोई नेगेटिविटी नहीं है, इनफैक्ट उनकी कोई नेगेटिविटी हम तक नहीं आ रही।
0: तो इससे हमें ये सीखने को मिलता कि अगर हम बच्चों को या किसी को भी कोई शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो प्यार की शक्ति के साथ दी जाएगी तो वो शिक्षा उनको अच्छी लगेगी और उनका करने को वो मन करेगा। लेकिन जब वो दूसरी प्रकार की एनर्जी से दी जाती, देन इट डजंट क्रिएट द रिजल्ट। तो जिससे प्यार होता है उसका कुछ इशारा भी मिलना ये प्यार लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। हमारी जो भावना है, हमारी जो इंटेंशन है, वो उनके प्रति बहुत क्लियर है कि ये जो भी कहेंगे मेरे फायदे के लिए कहेंगे। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। तो बाबा कहता है कि जैसे परमात्मा और आप, ये जो रिश्ता है कि वो कुछ भी आपको कहे, आपकी श्रेष्ठ भावना है कि ये मेरे फायदे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है जो हमें प्यार से शिक्षा देता है। तो हमारी भी उनके प्रति, सी वेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग अ डायरेक्शन एंड क्रिटिसाइजिंग। बात वही होती है लेकिन इंटेंशन पता चल जाती है, या तो इंटेंशन आपको नीचे खींचने की है या इंटेंशन आपको एम्पावर करने की है। जैसे ही हमने नेगेटिव एनर्जी के साथ दिया, इंटेंशन नीचे करने की है, लेकिन एलिवेटेड एनर्जी के साथ दिया तो इंटेंशन, तो वो वाइब्रेशन हर एक कैच कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा है या इट इज़ द एडल्ट्स, दे कैन मेक आउट कि जो बात कही जा रही है वो कौन सी इंटेंशन के साथ कही जा रही है, वो बात मेरे फायदे के लिए कही जा रही है या वो बात मुझे
1: नीचे
0: दिखाने के लिए, या वो बात सामने वाला अपने आप को
1: ऊपर
0: नहीं, सो इंटेंशन सारी पहुंच जाएगी। तो क्योंकि उनके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है, तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। अगर हमारी दिल से श्रेष्ठ भावना होगी तो उसी का रिटर्न उनके दिल से भी वही निकलेगा। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौट कर वापस आता है। सो हियर इज द लॉ ऑफ एनर्जी, इट इज एन एको, कि जो एनर्जी आप भेजेंगे, जैसे एको किया, वही का वही वर्ड आपको सुनाई देगा,
1: पूरा शब्द सुनाई,
0: वही का वही, there will be no change। तो जो सुनाई दे रहा है वर्ड वो नहीं चेंज करना है, अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो जो खुद बोल रहे हो वो चेंज करना है। सिमिलरली जो एनर्जी औरों से मिल रही है, अब कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आई कांट चेंज देम, सो आई जस्ट चेंज
1: माय वर्ड,
0: द एनर्जी दैट आई हैव टू सेंड, क्योंकि इट्स एन एको, तो द एनर्जी व्हिच आई सेंड सेम एनर्जी विल कम बैक। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। अगर मुझे आपके चलन में, आपके व्यवहार में, आपके संस्कार में कोई चीज पसंद नहीं आती तो मेरी प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है।
1: वेरी ट्रू, यू नो कि आपका मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप ही अच्छे नहीं लग रहे हो मुझे।
0: तो जहाँ वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स की हमने बात की थी कि कोई चीज़ डिसलाइक करते हैं तो जजमेंटल हो जाते हैं कि आप ही अच्छे नहीं हो, तो फिर प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि जब हम अक्वायर्ड संस्कार को देखते हैं तो किसी के अंदर हमें कोई बात नहीं भी पसंद आती, लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। सोल कॉन्शियस में परसेंटेज नहीं होगी फिर, बिकॉज मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप, आई एम एन एम्बोडीमेंट ऑफ लव, तो उसमें देर इज नो परसेंटेज, इट इज जस्ट लव, देर विल बी नो मिक्सचरिटी। कैसा भी संस्कार हो, कैसे भी चलन हो, लेकिन अगर आप सोल कॉन्शियस हैं तो आपके एनर्जी कौन सी जाएगी?
1: यस, यू नो लाइक आपका कोई भी बिहेवियर, वही बात है कि बिहेवियर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, आई डोंट लाइक दिस थिंग, आपका कोई लिबास या आपके कोई भी कोई नेचर या आपका किसी से बात जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ही पसंद नहीं।
0: लेकिन इसी को वन स्टेप और आगे लेंगे, आपके अंदर कोई ना कोई सपोज स्वभाव संस्कार है जो नहीं ठीक है या नहीं अच्छा है, लेकिन इफ आई एम सोल कॉन्शियस, तो सोल कॉन्शियस के ऊपर इस चीज का कोई भी प्रभाव, हाँ जिस टाइम मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ, मैं अपने ईगो में हूँ, तो उस समय आपका स्वभाव संस्कार मुझ पर इफेक्ट डालेगा।
1: ओके, तो अगर आप क्रोध में भी हैं और मेरा कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा का है,
0: क्योंकि हमने देखा रिलेशनशिप्स में कि रिलेशनशिप स्टार्ट कहाँ होता है, यहाँ आई क्रिएट एन इमेज ऑफ यू इन माई कॉन्शियसनेस, एंड वो जो इमेज मैं आपकी अपनी कॉन्शियसनेस में बनाती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन माई ओन कॉन्शियसनेस, माई ओन बिलीव्स। तो जब आई एम इन ईगो बॉडी कॉन्शियस, तो मैं आपकी भी कमजोरियाँ ही देखूंगी और उसी तरह की इमेज बनाऊंगी, बट वेन आई एम सोल कॉन्शियस तो मैं आपकी क्या इमेज बनाऊंगी? अगर मुझे ये स्मृति है कि आई एम अ लवफुल बींग, तो मुझे आप भी कैसे दिखाई देंगे? अनदर लवफुल बींग, तो उसमें फिर आपके संस्कार स्वभाव वो दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा अभिमानी होंगे, सोल कॉन्शियस होंगे, तो प्यार में परसेंटेज नहीं होगी, आई विल सी यू ओनली एज अ प्योर बींग। किसी भी आत्मा की कोई भी बात आपको पसंद नहीं आती तो प्यार में अंतर आ जाता है। तो परमात्मा कहते जैसे हर एक में 36 गुण होते हैं, तो कहा अगर 35 अवगुण भी हैं तो भी हर एक के अंदर एक गुण तो जरूर है, तो हर एक को किसको देखो, उस एक गुण को।

0: आत्मा कहते कि जब हम औरों के साथ कार्य व्यवहार में आते तो ये संकल्प नहीं करना है, जैसे किसी का मुझे स्वभाव संस्कार नहीं पसंद आया तो आई विल से हम इसके साथ नहीं चल सकते, इसके साथ हमारे से काम नहीं होगा, इनके स्थान पर हम रहेंगे तो हमारी अपनी प्रोग्रेस नहीं होगी, हमें दूसरे स्थान पर जाना है, मतलब किनारा करने की बातें। तो कोई रिलेशनशिप में अगर वर्क नहीं हो रहा तो हम विड्रॉ करने की बात करते। तो परमात्मा कहते अगर एक बार आपने ये आदत अपने आप में डाली तो ये आपकी आदत बन जाएगी और ये आपको कहीं भी टिकने नहीं देगी। तो डोंट विड्रॉ फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप, पुट इन योर बेस्ट टू मेक इट वर्क, इट विल वर्क, बिकॉज चेंज अब कहाँ लाना है, अब क्या लाना है। सो कीप ऑन चेंजिंग ऑन योरसेल्फ, कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएगा। अब जब हम विड्रॉ कर लेते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए अगर हम किनारा कर लेंगे तो हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट में आओ तब तो मैं अपने ऊपर कुछ काम करूं,
1: वो चैलेंज होगा मेरे लिए।
0: सो इट्स बेसिकली मैच खेलने से पहले ही
1: हार मान
0: विड्रॉ कर लिया। तो ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहीं टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र नहीं रहने देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ जाएगी, ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो,
1: खुद से खुद के ऊपर जो काम करते हो एक्सपेक्टेशंस रखो।
0: औरों से तो एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी है, लेकिन अब खुद से एक्सपेक्टेशंस रखो और खुद को मोटिवेट करते रहो, डीमोटिवेट नहीं होना है। तो परमात्मा ने बहुत एम्पावरिंग बातें जैसे हमें बताई, तो बाबा ने कहा कि रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हमें अपनी अपनी चेक करनी है, कि ये जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां इनको हम जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ चला सकते हैं, एंड अगर ये सटल ऑर्गन्स मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में रहेंगे तो ये फिजिकल सेंस ऑर्गन्स ये भी कंट्रोल में रहेंगे, और खुद संयम में चलेंगे तो और लोगों को भी हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा, और अपनी शुभ भावना की दृष्टि होगी तो रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओम शांति।
1: ऐसे शिवानी, जिस तरह से जो बातें हमने आज इस मुरली में सुनी, कहीं ना कहीं जिस श्रृंखला से हम गुजरे हैं उसमें सामने क्लियर एक एक बात ऐसे लगता है कि परमात्मा स्वयं जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर जिस तरह से स्वयं आकर रोज़ इस तरह से अपने महावाक्यों से हमें प्रेरित करते हैं, हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने मुरली के माध्यम से वो महावाक्य लोगों तक पहुँचे।
0: ओम शांति।